सुप्रभात। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन गुरुवार है, शक संवत 1948 के भाद्र मास की तेरहवीं तिथि। तदनुसार 3 सितंबर 2026 इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में सुबह 7 बजे हैं। अब हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

एक बार एक व्यक्ति को टहलते हुए अपने बाग में किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखा। अब हर रोज वो व्यक्ति उसे देखने लगा और एक दिन उसने देखा कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से निकल नहीं पाई। और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो कि उसने हार मान ली हो। उस व्यक्ति ने उस तितली की मदद करने के उद्देश्य से कोकून के सुराख को इतना बड़ा कर दिया कि तितली सरलता पूर्वक बाहर निकल सके। हुआ भी यही, तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर आ गई। लेकिन उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वो व्यक्ति ये सोचकर तितली को देखता रहा कि तितली किसी भी समय पंख फैलाकर उड़ेगी, पर बेचारी तितली कभी उड़ नहीं पाई और इधर उधर घिसटते हुए घूमने लगी। दरअसल वो व्यक्ति अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन बनाया ही इसीलिए है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल पदार्थ उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलने के लिए ताकतवर बन सके, उड़ सके। वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वो चीज होती है जो हमें मजबूत बनाती है। यदि हम बिना संघर्ष के सब कुछ पा लेंगे तो अपंग हो जाएंगे, हमारी शक्तियों का विकास थम जाएगा।

0: जीवन सौरभ।
1: अभी आपने सुना जीवन सौरभ। अब आपको बताते हैं आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से ठीक बात सुनिएगा कार्यक्रम अक्षनिधि सूक्त 11 और उसके बाद आनंद लीजिए भक्ति संगीत का। भक्ति संगीत में आज हम आपको सुनाएंगे, क्या वाकई ये बताने की जरूरत है कि हम आज आपको क्या भजन सुनाने वाले हैं। अभी राखी का त्यौहार मनाया, कल हर छठी और कल यानी आने वाला कल यानी शुक्रवार को 4 सितंबर को जन्माष्टमी है। भगवान कृष्ण के भक्त पूरी दुनिया में हैं और यूं तो 12 महीने 24 घंटे 365 दिन लोग भगवान कृष्ण की महिमा में, गुणगान में, उनकी भक्ति में लगे रहते हैं। कल उनका जन्मोत्सव है तो आज आपको भगवान कृष्ण के भजन सुनाएंगे। रोजाना की तरह सुबह 8 बजे का समय होगा कार्यक्रम वतन की राग का। दादा भाई नौरोजी की जयंती पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। सुबह 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम बाल सभा, नशे के साथ जिंदगी का नाश। कार्यक्रम में स्वर होगा परिकल्पक मनीषा चतुर्वेदी और साथ में है बाल कलाकार

हमारी सेना हमारा गर्व, यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 9 बजे। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भाभा से मामा से अदिति गौड़ की चर्चा इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। हमारा विशेष कार्यक्रम सुनिए सुबह 9:30 पर, कविता कृष्णमूर्ति कार्यक्रम पर आधारित। रिकॉर्डिंग की है फराज फैयाज ने। देश के संस्थान, ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 10 बजे। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी अड्डा ADA। कार्यक्रम में स्वर होगा दीपक नेमा और भगवती सक्सेना का। आजाद हिंद कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर, मृगेंद्र नाथ दत्त की शहादत पर आधारित होगा आज का यह कार्यक्रम। और रेडियो रिपोर्ट आज हम आपको सुनाएंगे 11 बजे। और रेडियो रिपोर्ट के ठीक बाद सुनिए आज की परिक्रमा। युग प्रवर्तक विवेकानंद, ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 11:30 पर। तो अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक बने रहिए मेरे यानी रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए इन विभिन्न कार्यक्रमों का। और आइए अब सुनते हैं अक्षय निधि एक विराम के बाद।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 11वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव शौनक। देवता हैं इंद्र, छंद है विराट स्थाना और त्रिष्टुप।
2: नी पर्वतः साध्य प्रयुच्छंस्तम मात्रिभिर् वावशानो अक्रान् दूरे पारे वाणीं वर्धयन्त इन्द्रेशितां धमनिं पप्रथन्नि जलयुक्त अप्रमादी मेघ आकाश में गर्जना करते हुए विचरण कर रहे थे। तब स्तोताओं की वाणी रूपी स्तुतियों से इंद्रदेव की प्रेरणा प्राप्त कर मेघ बहुत दूर दूर तक निरंतर विस्तृत हुए। इंद्रो महाम सिंधु माशयानम मायाविन्नम वृत्रमस्फुरन्निहि अरे जेताम रोदसी भियाने कनिक्रदतो वृष्णो अस्य वज्रात। अंतरिक्ष में जल का मार्ग रोकने वाले बहुत बड़े मायावी राक्षस वृत्र का इंद्रदेव ने हनन किया। उस समय बलशाली इंद्रदेव के सिंह गर्जना करने वाले वज्र के भय से दोनों लोक कांपने लगे। अरो रवीद वृष्णो अस्य वज्रो मानुषम

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम और त्रिष्टुप।
1: इंद्रेशिताम धमनिम पप्रथन्नी जलयुक्त अप्रमादी मेघ आकाश में गर्जना करते हुए विचरण कर रहे थे। तब स्तोताओं की वाणी रूपी स्तुतियों से इंद्रदेव की प्रेरणा प्राप्त कर मेघ बहुत दूर दूर तक निरंतर विस्तृत हुए। इंद्रो महाम सिंधु माशयानम माया विन्नम वृत्रमस्फुरन्निहि अरे जेताम रोदसी भियाने कनिक्रदतो वृष्णो अस्य वज्रात। अंतरिक्ष में जल का मार्ग रोकने वाले बहुत बड़े मायावी राक्षस वृत्र का इंद्रदेव ने हनन किया। उस समय बलशाली इंद्रदेव के सिंह गर्जना करने वाले वज्र के भय से दोनों लोक कांपने लगे। अरो रवीद वृष्णो अस्य वज्रो मानुषम यन्मानुषो निजूर्वात नीमाइनो दानवस्य माया अपादयत् पविपान सुतस्य। मनुष्यों का अहित करने वाले वृत्र राक्षस को जब मनुष्यों का हित करने वाले इंद्रदेव ने मारा तब बलशाली इंद्रदेव के वज्र ने बार बार गर्जना की। तभी सोमपाई इंद्रदेव ने इस मायावी राक्षस की माया को नष्ट कर दिया। पिबा पिबेदिंद्र शूर सोमम मंदन्तु त्वा मंदिनः सुतासः प्रणन्तस्ते कुक्षी वर्धयन्त्विस्था सुतः पौर इंद्रमाव। हे वीर इंद्रदेव इस सोम रस का पान अवश्य करें। यह शोधित आनंददायक सोमरस आपको हर्षित करे। यह आपके पेट में जाकर आपकी शक्ति को बढ़ाए। इस प्रकार यह आपके माध्यम से समस्त प्रजा की रक्षा करे। त्वे इंद्राप्य भूम विप्राधियम वनेम ऋतया सपन्तः अवश्यवो धीमहि प्रशस्तिम सद्यस्ते रायो दावने स्यामो। हे इंद्रदेव हम ज्ञानी जन यज्ञीय कर्म की कामना से आपका आश्रय प्राप्त करते हुए आपसे संबद्ध हों। आपकी बुद्धि प्राप्त करें। आपकी स्तुतियां करते हुए हम लोग संरक्षण की कामना करते हैं। आपके दान से हमें धन प्राप्त हो। स्याम ते त इंद्र ये त ऊति अवश्यव ऊर्जम वर्धयन्तः शुष्मिन्तमं यम चाकनाम देवास्मे रईम रासी वीरवंतम। हे इंद्रदेव हम रक्षा की कामना से आपको तेजस्वी बनाते हैं। अतः सदैव हम आपके संरक्षण में रहें। हमारी कामना के अनुरूप वीरों पुत्रों से युक्त धन हमें प्रदान करें। राशि क्षयम राशि मित्रमस्मे राशि शर्ध इंद्र मारुतम नह सजोषसो ये च मंदसानाह प्रवायवः पान्त्यग्रणीतिम्। हेन्द्रदेव समान रूप से परस्पर प्रेम रखने वाले हर्षदायक, जो मरुदगण अग्रणी होकर नेतृत्व प्रदान करने वालों की रक्षा करते हैं, उन मरुतों का मित्रवत शक्तियुक्त आश्रय हमें प्रदान करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 11वें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।
2: दो दो दो दो दो दो दो दो।

0: मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।
1: नमस्कार, आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो के निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भारत भूमि में ऐसी पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा और देशहित के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे ही भारत के एक महापुरुष थे जिन्हें हम सभी आदर और सम्मान से दादा भाई के नाम से जानते हैं, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। वो थे दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजी शासनकालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी और भारत के आरंभिक राजनेताओं के अग्रज और सामाजिक नेता थे दादा भाई। 4 सितंबर सन 1825 को दादा भाई का जन्म मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि दादा भाई के पूर्वज बड़ौदा के पास नवसारी के रहने वाले थे, जो सुगंधित फूलों और इत्र की खुशबू के लिए प्रसिद्ध था। उनके पुरखे चांदजी कामदिन बेहद खुशबूदार लाजवाब इत्र तैयार करने की कला में माहिर थे, जिनकी प्रसिद्धि नूरजहां बेगम के कानों तक पहुंची और उन्हें इनाम के बतौर जागीर दी गई। 4 साल की छोटी सी बाल्यावस्था में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन उनकी मां ने बेहद समझदारी से दादा भाई का पालन पोषण किया, साथ ही उन्हें शिक्षित करने में भी पूरा सहयोग दिया। दादा भाई हमेशा कहते थे कि वो जीवन में जो भी बन सके सिर्फ अपनी माँ की वजह से। देशभक्ति की भावना और चरित्र निर्माण में सदैव अपनी जननी और मातृभूमि के लिए वो ऋणी रहे।

दादा भाई नौरोजी के समय सौभाग्य से उन दिनों शिक्षा बिल्कुल मुफ्त हुआ करती थी, जिसका फायदा उन्हें ये मिला कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए। इस बात का बेहद गहरा प्रभाव उनके जीवन पर और उनके विचारों पर भी पड़ा और वो जीवन पर्यंत मुफ्त शिक्षा के ऋणी रहे। उनका विचार था कि हर बच्चे को, चाहे वो गरीब हो या अमीर, उसे शिक्षा प्राप्त करने की सहूलियत मिले। दादा भाई बचपन से ही होशियार और मृदुभाषी थे। दादा भाई नौरोजी ने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के पहले दौर में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में शिक्षा पाई और एक मेधावी छात्र के तौर पर अपना स्थान सुरक्षित किया था। उसी संस्था में शिक्षक के रूप में जीवन का आरंभ किया और वहीं गणित के प्रोफेसर भी बन गए। भारतीयों के लिए तो उन दिनों किसी शैक्षणिक संस्थाओं में ये सर्वोच्च पद था जो उन्होंने हासिल करके दिखाया था। लेकिन अचानक से जीवन में एक नया मोड़ आया। कपास के प्रसिद्ध व्यापारी बंधु कैमास ने दादा भाई को अपने व्यापार में साझेदारी का न्योता दिया। लंदन के लिवरपूल में उनका कार्यालय बनवाने के लिए वो इंग्लैंड चले गए, लेकिन फर्म में अफीम और मदिरा का व्यापार भी होने लगा। दादा भाई को ये पसंद नहीं आया, वो फर्म छोड़कर वापस भारत लौट आए। इंग्लैंड में रहने से उन्हें इंग्लैंड और भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालतों की तुलना करने का अवसर मिला और भारत की दुर्दशा देखकर पहले से भी ज्यादा बेचैन हो उठे। दादा भाई नौरोजी ने सन 1859 में इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी एंड कंपनी नाम से खुद की एक फर्म शुरू की, जो मुख्य रूप से कपास का व्यापार करती थी। इंग्लैंड में शिक्षा पाने वाले भारतीय विद्यार्थी धीरे धीरे दादा भाई से प्रभावित हुए बिना न रह सके और इस अवसर का लाभ उन्होंने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों की भलाई के लिए लगा दिया। एक और उद्देश्य था जो दादा भाई साधना चाहते थे, वो ये था कि सरकारी प्रशासकीय संस्थाओं का अधिक से अधिक भारतीकरण करने का आंदोलन तीव्र हो। उनके प्रयास कुछ हद तक सार्थक भी रहे और जो विद्यार्थी उनके संपर्क में आए उनके विचारों के समर्थक हो गए। उनमें सुप्रसिद्ध मोहनदास करमचंद गांधी और फिरोज शाह मेहता जैसे नाम प्रमुख हैं।

लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना अंग्रेजों और भारतीयों के संबंध के सुधार के लिए हुई। दादा भाई की लिखी पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पढ़कर कितने ही अंग्रेज भारत से सहानुभूति रखने लगे और भारतीयों की स्थिति से अवगत हुए। सन 1886 में दाता भाई नौरोजी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। लगभग 6 सालों बाद वो ब्रिटेन की लोकसभा के सदस्य चुने गए। उनकी दलीलों का परिणाम सकारात्मक हुआ और भारत के सैनिक और असैनिक आए। साथ ही व्यय की जांच के लिए वेल्बी कमीशन बैठाया गया। वो ब्रिटेन की सभा से भारत के प्रति अपना पक्ष हमेशा रखते रहे। उनका कहना था कि अंग्रेजी राज की खराबियां तभी दूर हो सकती हैं जब अंग्रेज

के अधिकारों के लिए कभी समझौता नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों के बीच एक अहम स्थान भी बना लिया। 30 जून सन 1917 को भारत के पितामह अपने समस्त भारतीय परिवार को छोड़कर इस संसार सागर से विदा हो गए। ये दादा भाई के कार्यों का प्रभाव था। जो पुण्य काम उन्होंने प्रारंभ किया उसे गांधी जी जैसे उत्तराधिकारी मिले। कोटि कोटि नमन हमारे ऐसे पितामह दादा भाई नौरोजी को।

0: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
1: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
0: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
1: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
0: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी और आज हम एक बहुत ही संजीदा से विषय पर बात करने जा रहे हैं। बाल सभा में मैं हर बार आपके लिए कुछ ऐसे विषय लाती हूँ जब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ये विषय बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन आज एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है लेकिन जिसे लेकर अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते, और आज की बाल सभा का विषय है नशे का साथ और जिंदगी का नाश। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन सच में जब हम नशे का साथ करते हैं, नशे के साथ चलते हैं, तब कहीं ना कहीं जिंदगी हर दिन हर पल मरने से भी बदतर हो जाती है। अब बच्चों, ये तो आपको लगता ही होगा कि हर बच्चा बहुत सारे सपने लेकर पैदा होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है और कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हैं बच्चों जो इन सपनों को बीच रास्ते में तोड़ देती हैं, और नशा उनमें से एक है। अब अक्सर हम सोचते हैं कि नशा तो केवल बड़े लोग करते होंगे, है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि आज बहुत से छोटे बच्चे और किशोर इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोई जिज्ञासा में, कोई दोस्तों के दबाव में, कोई तनाव में, तो कोई केवल ये सोचकर कि एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है, किक मिलती है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं नशे के रास्ते पर चलने के लिए, और बस यही होता है आपकी जिंदगी की घड़ी का अलार्म। बजता है माँ बाप की आवाज के रूप में, टोकते हैं वो आपको, समझते हैं कि आप गलत रास्ते पर हो। खतरा यहीं से शुरू होता है, लेकिन वो जो आपको बुराई के रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो आपको एक और समझ, एक और सोच पैदा करते हैं कि किसी की मत सुनना। वो ये भी बताते हैं कि माँ बाप से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने अपने माता पिता की बात मान ली तो आप उनका रास्ता छोड़ देंगे और सतमार्ग पर चलने लगेंगे, और यहीं से नशे की हार शुरू हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेंगे, सोचिए। वो तो चाहते हैं कि आपके सपने टूटें, वो चाहते हैं कि आप एक बुरे नागरिक के रूप में बड़े हों, क्योंकि नशा कभी भी सीधे और बड़े रूप में नहीं आता, वो दोस्ती का मुखौटा पहनकर आता है। कोई कहता है बस एक बार ट्राई कर लो, कोई कहता है इससे मज़ा आएगा, और कोई कहता है डरते हो क्या। लेकिन जो चीज़ एक बार मजाक लगती है, वो धीरे धीरे आदत और आदत में धीरे धीरे लत बन के आपके जीवन में उतरती है। बच्चों, नशे का कारोबार करने वाले लोग बेहद चालाक होते हैं, उन्हें पैडलर भी कहा जाता है। वो जानते हैं कि बच्चों को कैसे फंसाया जाए। कभी आपको मुफ्त में कोई चीज़ें देते हैं, कभी आपसे दोस्ती करते हैं, कभी सहानुभूति दिखाते हैं, और उनका उद्देश्य किसी की मदद करना नहीं होता बच्चों, बल्कि नए ग्राहक ढूंढना होता है, नए ग्राहक तलाशना होता है, आप जैसे अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों में से अपने पैडलर की तलाश करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये सब बातें मैं आपको बाल सभा में डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए कर रही हूँ। और सबसे दुखद बात यह है बच्चों कि कई बार जो बच्चा शिकार बनता है, वही आगे चलकर दूसरे बच्चों को फंसाने लगता है और एक बुरे चक्र की शुरुआत हो जाती है। और आप जानते हैं, नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये पढ़ाई, परिवार, दोस्ती, आत्मविश्वास, भविष्य, सब कुछ प्रभावित करता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने सपनों से दूर होते जाते हैं। लेकिन आज हमारी बाल सभा केवल खतरे की बात नहीं करेगी, आज हम उम्मीद की भी बात करेंगे, क्योंकि तमाम खतरों के बीच में एक रोशनी जरूर होती है जो आपको वापस आपके घर का रास्ता दिखाती है। और आज ऐसी ही रोशनी के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे दो युवा साथी मौजूद हैं, जिनमें से एक दोस्त ने हमारे नशे की कठिन दुनिया को बहुत करीब से देखा है, वो उस रास्ते पर गए हैं, संघर्ष किया है और फिर साहस के साथ उस रास्ते से बाहर निकलकर आज एक नया जीवन जी रहे हैं। उनकी कहानी हमें ये बताएगी कि गलती होने के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता, सही निर्णय, परिवार का साथ, मित्रों का सहयोग और आपकी खुद की इच्छा शक्ति इंसान को वापस लाकर खड़ा कर सकती है। तो सबसे पहले हम अपने पहले साथी से बात करेंगे, क्योंकि वो बहादुरी से इस रास्ते से बाहर निकले हैं। नमस्ते।
3: नमस्ते मैम।
1: आपका परिचय पूछ सकती हूँ अगर आपकी इच्छा हो हमारे और साथियों को बताने की? आपका नाम क्या है?
3: मैम, मैं अपना परिचय कुछ अलग तरीके से दे सकता हूँ, अपना नाम बिना बताए?
1: बिल्कुल, ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है। हम आपके काम को जानना चाहते हैं और कई बार हमारा काम हमारे नाम से ऊपर होता है, तो आप बताइए कि आप अगर खुद का नाम रखते, जो आपका नाम है वो बिल्कुल मत बताइए, आप अगर खुद का नाम रखने का आपको मौका मिलता तो क्या रखते और आज हम आपको उसी नए नाम से बुलाएंगे?
3: तो मैं जो अपना नाम रखता, नया नाम रखता जो मुझे पसंद भी है कई, तो मैं अपना नाम एलेक्स रखता, क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद है।
1: ठीक है, तो आज इस पूरे बाल सभा के दौरान हम आपसे जब भी बात करेंगे तो एलेक्स आपको पुकारेंगे।
3: जी,
1: तो आज आपके पसंदीदा नाम की शुरुआत हो चुकी है। एलेक्स, आपका बचपन का थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसा था?
3: जी, बचपन हमारा ऐसा था कि हम नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मतलब घर वाले काम करते थे और बाहर हम घूम रहे बच्चे, हम जैसे छोटे बच्चे घूमते थे हम वैसे ही बाहर घूमना फिरना करते थे। और इसी दौरान जो हुआ कि हमारे साथ जो हम भैया लोगों में बैठे, बड़े बच्चों में, तो उनको हमने देखा कि वो क्या करते हैं, वो कैसे जीते हैं, तो हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे वो जो नशा करते हैं, वो चीज़ देख के हमें अच्छा लगने लगा था पहले कि यार भैया लोग करते हैं, ये क्या चीज़ करते हैं, जो नशा करते हैं वो ऐसे करते हैं, जिससे हमें लगता था कि यार हमें भी बड़े होके करना है एक बार।
1: तो आप देख रहे थे अपने से बड़े लोगों को?
3: जी।
1: और आपको लग रहा था कि ये जो जिंदगी जी रहे हैं ये हमारी जिंदगी से थोड़ी बेहतर है, इस जिंदगी में मजे हैं।
3: जी,
1: है ना। तो आपको भी मजा करने का ख्याल बचपन में ही आया।
3: जी,
1: ठीक है। पहली बार आपकी नशे से मुलाकात कब हुई?
3: जी, पहली बार हमारी नशे से मुलाकात जब हुई थी, जब हमारी जो घर की सदस्य हैं, जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी हैं, दादी जी,
1: जी,
3: तो उनकी तबीयत खराब थी, तो सब उनकी तबीयत के पीछे लगे हुए थे, तो हम क्या करते थे, हमें टाइम मिल जाता था और भैया लोग के साथ आना जाना हॉस्पिटल में लगा ही रहता था हमारा भी, तो उनके साथ जब वो नशा करते थे तो हम भी उनके साथ ही उस समय होते थे, हमें देख के खुशी होती थी कि यार हम इनके साथ खड़े हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, उससे हमें लगता था कि हमारी एक नई पहचान बनेगी। फिर उसके बाद कभी भैया ने हमसे पूछा कि ट्राई करोगे, तो हमने पहले तो मना किया, फिर उन्होंने ये कहा कि भाई देखो तुम लड़के हो, तुम्हें ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा, तो हमने ये चीज फिर ट्राई की और ये शुरुआत हमारी जब से हुई।
1: तो एलेक्स, आपकी बातों में जो दो बातें मुझे अपने सुनने वाले जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, इनफैक्ट अगर मुझे बड़े भी सुन रहे हैं, तो एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं कि घर में यदि कोई ऐसा कोई घटना या ऐसा कोई स्थिति आ जाती है जब घर के लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं,
3: जी,
1: तो अपने बच्चों का ध्यान रखना ना भूलें ऐसे वक्त पर जब आप पूरी तरह से किसी काम में लगे हुए हैं, घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ये जरूर देखें कि उस वक्त आपके बच्चे आपकी उस व्यस्तता का फायदा उठाकर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। पहली चीज जो एलेक्स मुझे तुम्हारी बातों से नजर आई है। दूसरी चीज, तुम लड़के हो,
3: जी,
1: यही कहा था आपसे,
3: जी,
1: आप याद रखिए लड़का होने का मतलब गलत रास्ते पर चलना बिल्कुल नहीं है। मैं अगर बहुत खुलकर कहूँ तो लड़के होने की पहचान को जो इस तरीके से किया जाता है कि आप नशा कर सकते हैं, आप रो नहीं सकते हैं, आप इमोशनल नहीं हो सकते हैं, नहीं, ये गलत बातें हैं और इन्हें आज ही स्वीकार करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी?
3: उस वक्त मेरी उम्र थी 13 या 14 साल।
1: कभी नशा करके जब पहली दूसरी बार आए थे तो खुद को ऐसा महसूस कर रहे थे कि घर वालों से क्या कहोगे या क्या हुआ था?
3: जब पहली बार नशा किया तो धूम्रपान किया था, जिससे बहुत उत्साह से भर गया था मैं। और मैंने अपने दोस्तों जो मेरे साथी थे उनको ये बताई चीज़ कि यार मैं आज ये करके आया हूँ, भैया ने मुझे कराया। और उन लोगों ने फिर वो बोलने लगे, भाई तू तो अब बड़ा हो गया, तू ये करने लगा। तो उनके बीच एक अच्छी, ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी इमेज बन रही है।
1: ओहो, यहाँ पे भी बच्चों आप सुनते चलिए, बहुत बारीकी से ध्यान लगाकर, कान लगाकर आज की बाल सभा सुनिए और समझिए कि जब एलेक्स कोई गलत काम करके आया तो उसे गलत काम की अच्छी इमेज बन रही है। ये एक भ्रांति हो रही थी कि कुछ गलत काम करके आया तो मतलब उसके कॉलर और ऊंचे हो गए हैं। तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो हमें अपनी इमेज बिल्डिंग की चिंता है ना, और वो भी गलत इमेज बिल्डिंग की, ये बहुत मायने रखती है। कब आपके घर वालों ने पहली बार आपको पकड़ा?
3: जी, ऐसा हो गया था कि हम भैया लोगों के साथ धूम्रपान कर रहे थे और जो हमारे मोहल्ले के पड़ोसी हैं उन्होंने हमें देख लिया और उन्होंने इस चीज़ की फोटो खींच के हमारे घर वालों को भेज दी थी।
1: क्या हुआ फिर?
3: फिर घर वालों ने हमें मारा भी था और ये चीज़ हमें उस समय समझाई थी कि ये चीज तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, ये चीज गलत है।
1: तो उस मार का और उस डांट का आप पे क्या असर पड़ा था?
3: उस समय ऐसा लग रहा था कि सब तो करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जहाँ पिताजी भी हैं वो भी ये सब चीजें करते हैं, तो हमें ये लग रहा था मन में कि हम भी कर सकते हैं, जब आप कर सकते हैं तो हम भी करेंगे और हमें भी करना है
1: जी।
3: फिर उसके बाद जब ये मार पड़ी तो फिर दो चार दिन बाद जब मैं उन भैया लोगों के पास वापस गया, फिर उन्होंने पूछा कि दो चार दिन से कहाँ थे, दिखे नहीं। फिर जब मैंने ये चीज़ बताई तो उन्होंने ये चीज़ भी कही कि देखो, जब तुम्हारे पिताजी कर सकते हैं तो तुम भी कर सकती हो ये चीज़, वो तुम्हें गलत बता रहे हैं, ये चीज़ ऐसी है कि इससे टेंशन दूर होता है, तुम्हें भी पढ़ाई का टेंशन है, दुनियादारी का टेंशन है, वो ये चीज़ बताने लगे कि ये चीज़ अच्छी है।
1: एलेक्स रुकते हैं, फिर से बच्चों से बात करते हैं क्योंकि ये विषय ही इतना, बच्चों क्या कहूँ, मतलब बहुत तकलीफ दे विषय है। कहते हैं ना कि यहाँ पर माता पिता को कान लगाने की शायद ज़रूरत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, है ना। बच्चों को कभी भी आप जब उपदेश देते हैं तो मुझे लगता है शायद उन्हें इतना समझ में नहीं आता जितना वो आपके व्यवहार से सीखते हैं। तो यहाँ पर आप एलेक्स की बात सुनकर ये समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि हम बच्चों से ये कहते रहें कि ये गलत काम है और उनके सामने हम खुद करते रहें तो ये एक गलत नज़ीर पेश करता है, और आपको शायद यहाँ पर रुक जाना चाहिए और थम जाना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी गलत काम जो बच्चों के लिए गलत है वो इक्वली आपके लिए भी गलत है, और अगर आप वो बच्चों के सामने कर रहे हैं तो कल आप बच्चों को उसे करने से मना करते वक्त रुक नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए तो ऑलरेडी माहौल में ऐसे लोग हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि भाई तेरे पिता करते हैं, तू क्यों नहीं। एलेक्स आगे की कहानी।
3: फिर उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया तो फिर हम पहले जो हम करते थे कि हम कभी कभी धूम्रपान करते थे, फिर उसके बाद हमें आदत लगी कि हम डेली करने लगे
1: जी।
3: और धूम्रपान करने के बाद हमें शुरुआत में ऐसा होता था कि हमारा माइंड जो था काम करना बंद कर देता है, क्योंकि नशा होता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता था कि अब हाँ, अब हम टेंशन फ्री हो गए हैं, और फिर ये लाइफ अच्छी लगती थी भैया लोग की कि धूम्रपान कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं, और उनकी ये, हमें ऐसा लगता था कि ये उनकी आज़ादी है और ऐसी आज़ादी हमें भी चाहिए।
1: तो बच्चों आप सुन ही रहे होंगे कि ये आज़ादी आपको कौन से गर्त में ले जा रही है ना। और एलेक्स से हम कुछ और जानेंगे, लेकिन एक और हमारी साथी हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो खुद तो इस राह पर नहीं गई, लेकिन वही बात कि जब उसने बचपन से देखा कि घर के लोग नशे के आदि हैं तो उसकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। नमस्ते।
4: नमस्ते,
1: क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम प्रीति है।
1: प्रीति, आपकी नशे से पहली मुलाकात इनडायरेक्टली कब हुई, क्योंकि आप तो इस मार्ग पे नहीं है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपकी मुलाकात कब हुई?
4: देखा जाए तो पहली मुलाकात, पहले तो जब छोटे छोटे थे तो किसको लगता है कि क्या हो रहा है आसपास, ज़्यादा पता नहीं था। जब थोड़े बड़े हुए, स्कूल वगैरह जाना शुरू किया और स्कूल में बताया जाने लगा कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जब हम घर आते थे और घर पर देखा कि घर पर तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर स्कूल में टीचर क्यों ऐसा बोल रही कि ये गलत है, तो इतना छोटे बच्चे के मन में सवाल बहुत आते हैं, सवाल, और मुझे तो सवाल करना बहुत पसंद है। तो फिर एक दिन मैंने अपनी टीचर से पूछा कि मैम नशे से क्या होता है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि अगर कोई नशा कर रहा है तो इससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। आप जो नशे की चीज़ें मिलती है अगर आप उससे भी देखोगे तो उसके पीछे भी लिखा होता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं घर गई, अब यूँ था छोटे बच्चों को मम्मी पापा को दुकान भेजना रहा, तो उस टाइम पे मेरे घर पे तो सबसे बड़ी मैं ही थी लेकिन छोटी थी, तो मम्मी बोलती है दुकान चले जाओ, अपने लिए भी कुछ ले लेना और हमारे लिए भी ये ले आना। चली तो मैं गई, लेकिन जब वापस लेकर आ रही थी तो मुझे टीचर की बात याद आई कि इस पर लिखा होता है, और जब मैंने उसको पढ़ा और मैंने अपने अपनी मम्मी से पूछा कि ये तो गलत है ना, तो मुझे एक सीधा और सरल जवाब मिल गया, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम इस इन सारी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे सवाल नहीं करते, टीचर तो पागल है। तो ऐसा कह दिया गया, तो मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा बोलूँगी तो हो सकता है कि मुझे ही डांट पड़ जाए, तो मैं चुप हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद वापस यही हुआ कि शाम का टाइम था, स्कूल से हम लोग आ गए, खेल वेल कर भी आ गए, अब घर पर काम करना था, लेकिन पापा उसी टाइम पर पापा आए और पापा शायद मदिरा पान कर कर आए थे, तो ये था ना कि थोड़ी थोड़ी सी रेड आइज हो जाना, चिड़चिड़ापन करना, गुस्सा करना, तो वो आए तो गुस्सा करने लगे। अब हम यही सोच रहे बैठकर कि आखिर हुआ क्या है, कुछ तो हुआ होगा। फिर मम्मी ने कहा कि पापा को पानी दे दो, हम पापा के पास गए, हमने बोला पापा पानी चाहिए आपको, तो उन्होंने बोला अपने काम से काम रखो। तो अब उस दिन से सवाल आया कि ये क्या है, फिर इसमें जानने की इच्छा हुई कि और क्या है, क्या हम ये नहीं कर सकते, या फिर पापा ऐसे क्यों थे, या फिर मम्मी जो मंगाती वो क्या है, क्योंकि नशे कई प्रकार के होते हैं। तो अभी आता ना ये क्यों है, कैसा है, बहुत सारे सवाल आए। उस दिन से हमने जानना शुरू किया, वो आई थिंक पहला दिन था हमारा कि हमने जाना कि ये सवाल उठा, मतलब कि हमने उसको जाना कि वो क्या है।
1: प्रीति एक बात बोलूं, जब आप बात कर रहे हो ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उन सब बच्चों के लिए बहुत दर्द पैदा हो रहा है जो अपने घर वालों से कितनी उम्मीद करते हैं ना कि मतलब यही है मेरे सबसे करीब, इन्हीं से मैं पूछ सकती हूँ कि सही क्या है गलत क्या है, और वही हमें अपनी बातों से अपनी आदतों के कारण खुद से दूर कर रहे हैं कि जाओ तुम्हारे काम की चीज़ नहीं। और मैंने बहुत घरों में देखा है कि ठीक है आपने जो स्थितियाँ बताई हैं, मैंने बहुत ऐसे ऐसे घरों में देखा है जहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन बड़ी आसानी से बच्चों से कहते हैं कि बेटा अभी कुछ देर तक कमरे में मत आना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कमरे से बच्चे को भगा रहे हैं तो उसकी बाल मन पर क्या असर पड़ रहा है? आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, यकीन कीजिए आपकी पार्टी में जब आप बच्चों से कहते हैं कि थोड़ी देर आंटी अंकल को अपना काम करने दो, देखो आप लोग भी तो मजे करते हो, अभी हम लोग मजे कर रहे हैं, तो नशा मजे की चीज हो सकता होगा आप लोगों के लिए, लेकिन बच्चों के बाल मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये प्रीति की बात सुनकर हमेशा के लिए याद रखिएगा। प्रीति आगे की कहानी,
4: उसके बाद सवाल जानने की इच्छा, आगे आगे जानते रहे, थोड़े थोड़े और बड़े हुए तो हमारा स्कूल सरकारी, तो उसमें ये लड़का लड़की दोनों साथ में ही पढ़ते हैं
1: जी।
4: तो जब हमने साथ में देखा दुकान, हम भी भाई लंच हुआ है और जाना है हमको चॉकलेट लेने, तो हम दुकान पहुंच जाते हैं, जब हम देखते कि हमारे ही साथ के कुछ बच्चे नशे की चीज़ें ले रहे हैं, तो अब जब हमने उनसे बातचीत करी, हमने बोला टीचर तो कल बोल रही थी कि नहीं लेना है, तुम तो ले रहे हो, तो बोले अरे यार तुम्हें नहीं पता, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो बड़े हो गए। मैंने बोला ऐसे कैसे बड़े हो गए, तो बोले तुम है ना एक बार अपने भाई से या तो किसी अच्छे दोस्त से पूछ के जाके, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है उसे जाके पूछो। तो मैंने बोला यार मैं एक बार वापस टीचर से पूछूंगी कि क्यों ऐसा, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों। ये सवाल आएगा ना कि सिर्फ लड़कों के लिए क्यों, क्योंकि स्कूल में तो कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं, क्या सिर्फ ये लड़के ही कर सकते हैं। तो जब इस बारे में मैंने अपने दोस्त से बात किया तो बोले ये ऐसा थोड़ी ना होता है, फिर उसने बताया कि वो भी एक नशा करती है।
1: अच्छा, आपकी दोस्त ने बताया कि वो खुद भी नशा करती है, तो मतलब तहें खुलती जा रही हैं। अभी हमको लग रहा था कि हमारे माता पिता ही हमसे नशे का सामान मंगा रहे हैं, जो कि उन्हें कभी नहीं मंगाना चाहिए। अपने बच्चों को आप गलत रास्ते का परिचय स्वयं दे रहे हैं कि बेटा इस तरीके से इस रास्ते से होकर 2 रुपए में ये आ जाता है, 20 रुपए में वो आ जाता है ना। तो धीरे से बच्चे फिर घर से पैसे भी चुराने लगते हैं, है ना। ऐसे भी बच्चे आपको रास्ते में मिले होंगे, ये जो सफ़र है ये इतना आसान नहीं है, बहुत अंधेरा है इस रास्ते पर, और पर जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बात की कि आज की बाल सभा सिर्फ खतरे की बात नहीं करती बल्कि उम्मीद की रोशनी भी बिखेरती है। यहाँ तक तो ठीक है कि नशे से परिचय हो गया, माता पिता को समझ में आ गया, और आपको भी अपने माता पिता साफ साफ समझ में आ गए, है ना, क्योंकि कई बार आप उम्र में बड़े होने से बड़े नहीं हो जाते दोस्तों। कई बार आप बड़े होकर बच्चों के सामने बहुत गलत उदाहरण पेश कर जाते हैं और उस वक्त आप बच्चों से कुछ कहने लायक नहीं बचते। आप लोगों को, दोनों से मेरा सवाल है, आप खुद नशे से बहुत बुरी तरीके से लड़कर इस रास्ते पर आए हो कि आज लोगों को नशे की लत से बाहर निकालने का काम कर रहे हो, है ना एलेक्स? आप भी तो, आपके लिए तो मैं चाहूंगी कि हमें, हमारे जो साथी हमें सुन रहे हैं आज बाल सभा में, वो अपने घर पर खड़े होकर सिर्फ आपके रिस्पेक्ट में एक बार खड़े हों, क्योंकि नशे की लत से बाहर निकल कर दूसरों को नशे से बचाना बहुत हिम्मत का काम है दोस्तों। तो एक सेकंड के लिए खड़े होइए, फिर अपनी जगह पर बैठ जाएगा, और एलेक्स के लिए खुश होइए और अपनी सारी शाबाशियां भेजिए इसको कि इस लड़के ने उस रास्ते से बाहर निकलकर और बच्चों को बाहर निकालने के लिए तय किया है। एलेक्स बहुत बधाई तुमको, तुम बहुत तारीफों के लायक हो, बहुत हिम्मत दिखाई है आपने। कैसे आए इस रास्ते पर कि आप अब दूसरों को नशे से बचाओगे?
3: मैं जब नशा करता था तो उस समय हमारे स्कूल में हमारे संस्था की दीदी आई और पुलिस वाली मैम आई और उन्होंने ये कहा कि पास ही में एक कॉलेज है और उसमें हम कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाएंगे और भी चीज़ें सिखाएंगे। तो हमें लगा कि यार चलो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो रास्ते में जाते जाते नशा करने को मिल जाएगा, क्योंकि रास्ता तो दूर है तो खाली है, तो वहाँ पे कहीं कई जगह होती है ना अंधेरी सड़कें या कोई पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है उस पे उसके अंदर बैठ के ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था। तो पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, वहाँ जाना फिर आदत में बन गया और अच्छा लगने लगा वहाँ जाके भी। और जब हमने हमारी निहारिका दीदी को देखा तो उनसे बात करने में भी अच्छा लगने लगा और उन्होंने हमें एक सेशन के दौरान बताया कि अगर आपको कुछ भी बात करनी हो जो आप किसी से नहीं कर पाते तो वो आप आके मुझसे कर सकते हो, मैं उस बात को गोपनीय भी रखूंगी और आपको उसके लिए अगर सजेशन चाहिए होगा तो वो भी देंगे। तो फिर हमें लगा कि यार, पहले तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही बात करेंगे, हम तो अपना नशे में ही ठीक है, कुछ भी हो, दुख दर्द हो, नशा करो, सब टेंशन फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद ऐसा धीरे धीरे लगने लगा क्योंकि नशा की जो आदत थी वो हो गई थी। और जो ये पहले हम मदिरा पान धूम्रपान करते थे, फिर ये ऐसा हुआ कि ये बड़े नशों
1: में तब्दील हो गई,
3: बड़े नशों में तब्दील हो गई और दोस्ती यारी भी ऐसी हो गई थी कि जो बड़ा नशा करते थे और उनको देख के नशा करने की, बड़े नशे करने की आदत हमें भी हो गई थी। फिर जब एक बार पापा जी ने भले ही नशे में हमसे कहा, लेकिन ये कहा कि तुम घर के बड़े लड़के हो और अब हमारे बाद, मतलब हमारी दादी का देहांत हो गया था उस समय और हमारे बाद अब तुम्हें देखना है, तो इसलिए अभी से ही कुछ ऐसा करना लग जाओ जिससे हमें आगे चल के कोई परेशानी ना हो तुमसे, क्योंकि हमारा कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े घर के बड़े, मतलब घर के बड़े लड़के हो तो जिम्मेदारियां उठाओ, घर का सामान लाना ले जाना करो, कुछ कुछ काम ऐसे जो घर के बड़े करते हैं अब वो तुम करो। तो ऐसा हुआ, फिर रियलाइज हुआ कि यार नहीं, अब ऐसा करना है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी है, तो शरीर आदी होने के बाद ऐसा लगता था कि अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो हेलुसिनेशन जो होता है वो होने लगता था कि हमारे आसपास कोई है, या हमारे सर में दर्द हो रहा है, सर गर्म होना, शरीर गर्म होना, अचानक से ठंडी लगना, ऐसा बहुत बार होने लगा। तो उन सब चीज़ों को देख के ये समझ आ गया था कि अब अगर ये चीज़ आगे तक की तो या तो शरीर नहीं बचेगा या फिर ऐसा होगा कि इसके आदि होके, इसमें ऐसा था कि ख़त्म दोनों तरफ ही होना था हमें, क्योंकि इसकी आदत ऐसी हो गई थी कि मैंने जब एक बार हिसाब लगाया तो, मतलब दिन का 300-400 रुपए का ये चीज़, तो मैंने एक बार हिसाब लगाया तो मैंने एक साल में ही कम से कम 1,00,000 रुपए से ज़्यादा का ये सब नशा कर लिया। फिर मन में आया कि यार अगर मैं वो 1,00,000 रुपए बचाए होते तो आज, मतलब कहीं ना कहीं मेरे काम आते, क्योंकि कई बार फिर उस टाइम लॉकडाउन भी लगा था तो ऐसा लग रहा था कि यार अगर पैसा होता तो काम आता, घर वालों को भी दे सकते थे ऐसा। फिर दीदी मिली और उनसे बात भी की और उनको ये चीज़ें हमने बताई कि दीदी हमारे साथ ऐसा ऐसा है, तो दीदी ने फिर हमारी काउंसलिंग भी करवाई, हमें ये चीज़ें समझाई कि ये चीज़ें गलत है, तो फिर हमने ये चीज़ें छोड़ने की कोशिश करना शुरू की। और मैं बस अपने जो भी साथी हमें सुन रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको, इसलिए आप इन सब चीज़ों में जाने ही मत।
1: लंबा रास्ता कठिन रास्ता
3: जी,
1: और बिल्कुल रोशनी नहीं है
3: जी,
1: सब तरफ अंधेरा है। दिमाग यहाँ तक भ्रामक स्थिति में आ जाता है, जो आपने हेल्यूसिनेशन की बात की, दिमाग उस स्थिति में पहुंच जाता है जब आपको लगने लगता है कि भ्रांतियां होने लगती हैं कि आपके आसपास कोई है, आपको ये लगने लगता है किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको लगता है कुछ काम करोगे तो गिर पड़ोगे, ढीला पड़ जाता है शरीर पूरी तरह से, और आप जल्दी जल्दी थकने लगते हो, है ना। एक और बात कही थी एलेक्स ने कि मरना दोनों तरफ था, क्योंकि नशे के आदतन व्यक्ति हो जाते हो तब लौटना उतना आसान नहीं लगता जितना आसानी से आज हम बात कर रहे हैं बच्चों बाल सभा में। हमें बहुत सारे किशोर बच्चे सुन रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि उनके माता पिता भी इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और ये बात समझेंगे कि हर संभव प्रयास कीजिए अपने बच्चों को गलत रास्ते पर बचा लीजिए जाने से, क्योंकि उसने कहा ना कि जहाँ से लौटना मुश्किल हो वहाँ जाने से पहले कई कई बार सोचिए, क्योंकि अगर आपको तैरना नहीं आता तो नदी में कूद कर अगर किसी ने रस्सी नहीं फेंकी, निहारिका दीदी जैसी कोई दीदी आपको नहीं मिली जो आपको इस काले अंधकार में से निकाल लें, तो आपका जीवन सच मानिए जीने से बदतर हो जाता है ना। आप बात की गंभीरता को समझेंगे और एलेक्स जैसे लोगों से प्रेरणा लेंगे, उसको दीदी मिली, उन्होंने काउंसलिंग कराई, कैसे कैसे वो निकला है। लेकिन 1% ये भी तो हो सकता था कि कोई दीदी ना मिलती
3: जी,
1: तब ये जीवन नहीं होता ना। आज आप स्टूडियो में बैठे हो, आज आप बैठे नहीं होते ना
3: जी, बिल्कुल
1: किसी अंधेरी गाड़ी की तलाश कर रहे होते
3: जी,
1: है ना, कोई अंधेरा रास्ता देख रहे होते, किसी भैया को ढूंढ रहे होते जो नशे कर रहे, उससे ज्यादा नशे की आदत हो रही होती, और फिर क्या हो रहा होता, कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन आज ये रास्ता कितना अच्छा है, आज इस स्टूडियो में कितनी रोशनी है, और सबसे बड़ी बात आप दोनों बच्चों के दिलों में कितनी रोशनी है। प्रीति, लौटें तुम्हारी तरफ, कभी पापा को मना किया नशे के लिए?
4: हाँ, पापा को मना किया मैंने। एक बार तो ऐसा हुआ था जब थोड़े बड़े हो गए तो ये होने लगा ना, समझ में आने लगा, और इसके बाद बोलना, बोलते ना बोलना बहुत मुश्किल होता है, मैं भी कुछ टाइम तक बोले जाए तो नहीं बोल पाई, बहुत समथिंग 13 साल की हो गई हूँ, दिख रहा है, पता है कि गलत है, लेकिन बोलने की वो थोड़ी सी मन में बहुत सवाल है, लेकिन ये था कि कहाँ बोलूँ। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि मेरे को भी एक प्लेटफॉर्म मिला, एक मौका मिला, जो हमारी रवीना दीदी हैं, निहारिका दीदी हैं, ये लोग जब हमारे एरिया में आए और कहा कि एक मीटिंग है, इसमें आना है, मेरी जो दोस्त थी उन्होंने बोला कि चलना है, तो मैंने बोला हाँ चलते हैं। पहले दिन मैं गई, उस दिन ठीक था, घर पे कुछ नहीं हुआ, फिर एक दूसरी बार मीटिंग हुई तो घर वाले भी बोलने लगे कि कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास, फालतू बस एक
1: बैठ जाते हो,
4: फालतू जाकर बैठ जाते हो। तो मैंने कहा, सोचा उनकी बात पे, लेकिन मैंने बोला जब ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे तो मुझे कहीं तो बोलने का मौका मिलेगा। जब मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया तो सबसे अच्छी बात ये हुई ना कि वहाँ पे ऐसा होता है कि आप बोलो, है ना, तो अब लगने लगा कि भाई कोई मौका दे रहा है। और जब दीदी ने कहा कि आप बात हमें कह सकते हो, हम किसी को नहीं बताएंगे, अब मैं तो मौका ढूंढ रही थी कि मेरे मन में सवाल है, कोई तो जवाब दे,
1: कोई तो सुने, पहली बात
4: कोई तो
1: बात
4: सुने,
1: सुने।
4: बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि सबसे सेफ स्पेस घर माना जाता है, माता पिता माने जाते हैं, और अगर वो ही ना सुने, वो ही तुम्हें कह दे कि तुम छोटे हो, तुम जो बोलोगे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बात काम की है, तो अब इसके बाद हमने बोला कोई तो सुन रहा है हमें, हम तो बोलेंगे। अब उसके बाद से तो लगता है कि बोलेंगे, जब वहाँ पे हमने बताया कि दीदी पापा से जब हमने पूछा था तो पापा बोलने लगे कि तुम्हारी काम की चीज़ नहीं है, मम्मी बोलती कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें 5-10 रुपये मिल रहा है ना, बस ये काफ़ी है। तो मैंने कहा, घर वाले भी बोल रहे थे दीदी 5-10 रुपये मिल रहे वो तो ठीक है, तो अब क्या बताओ मैं घर पे बोलूँ कि नहीं बोलूँ। तो बोले कि ये तो इस चीज़ तो गलत है, तुम पता है इससे तुम्हें भी नुकसान हो रहा है। मैंने बोला दी मैं तो नशा करती नहीं हूँ, मुझे कैसे नुकसान होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम्हारे पापा धूम्रपान करते होंगे तो उसका जो धुआं होता है वो भी तुम्हारे लिए भी खतरनाक है, और मदिरा पान कर आते हो तो इसमें घर में झगड़े कितने होते हैं, अगर हम अपने आसपास ही देख ले तो कितने झगड़े होते हैं। और अधिकतर ऐसा होता है ना कि मान लो कि बगल वाले के घर में भी झगड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी आएगी कि पूरे मोहल्ले में आवाज़ गूंज रही है, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाले घर में झगड़ा हो रहा है, हम तो मूवी देख रहे हैं, लेकिन कई लोग बहुत जिसके घर में हो रहा है वो कितना परेशान होता है, बच्चा है तो उसके माता पिता सुन नहीं रहे हैं, वो बीच में जाएगा तो उसको डांट देंगे, तो फिर बच्चे के मन में आता ना कि इसमें हमारी क्या गलती है। एक चीज़ बहुत आ जाती है कि हमारी क्या गलती है, हमने थोड़ी ना कुछ कहा है किसी को, ना कोई हमारी बात सुन रहा है और ना ही कोई हमें जवाब दे रहा है, ऐसे जैसे कि हम हैं लेकिन हैं ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए। और लड़कियों का तो ये मान लिया जाता है कि लड़कियों की बात कौन ही सुनता है, लेकिन इसका मैंने बोलना इसलिए चालू किया क्योंकि मुझसे जो छोटे भाई बहन हैं, अब इसका असर उन पर
1: ना जाए।
4: हाँ, अब इसका असर उन लोगों पर जाना शुरू हो गया। जैसे कि मैं तो नशे से दूर हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है, लेकिन मुझसे जो छोटा भाई है वो इन चीज़ों में चला गया क्योंकि बीच में अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर चली गई थी, हॉस्टल चली गई थी। तो जब वहाँ से वापस आई तो मुझे पता चला, मेरे घर वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। मैंने बोला हैं ये कैसे हो गया, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मम्मी पापा इतना ध्यान रखते हैं, मैं दूर रही हूँ तो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब आसपास वालों ने बोला कि, और मैंने जब खुद अपने भाई को देखा मुझसे कितना छोटा है, मैंने बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर मैंने अपने पापा से सवाल करना चालू किया। वो मेरा पहला था कि मैंने बोला क्यों कर रहे हैं आप, तो बोलने लगे कि मैं कमा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा आता ना कि अगर हम अपने घर
1: मेरा पैसा मैं कुछ भी करूं,
4: मेरा पैसा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मेरा पैसा कुछ भी कर सकता हूँ। मैं 10th या 9th में थी, मैंने उनसे सवाल किया कि पापा ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करोगे। इस बात पे झगड़ा होने लगा उनका, तो मैंने बोला अगर आपको ऐसे झगड़ा करना है तो हम नहीं रह रहे आपके साथ। मैंने बोला मैं भी हॉस्टल में रहूंगी, मेरे भाई बहन भी हॉस्टल में रहेंगे। तो बोलने लगे तू इतनी बड़ी हो गई है, खुद से फैसला लेने लगी है ज्यादा। और ये होता ना कि ज्यादा बोलने लगे तो जुबान चलाने लग गई है,
1: हद में रहो
4: अपनी हद में रहो। तो मैंने उस दिन शांत हो गई। मैंने दूसरे दिन से वापस बोला कि पापा नहीं क्यों कर रहे हो आप। तो फिर एक बार तो ऐसे ही मेरा और पापा का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, पापा मान ही नहीं रहे थे। वो उस दिन शायद कोई फेस्टिवल था और घर में मेहमान आने वाले थे। अब हम सब लोग हैं, मम्मी के साथ में तैयारियों में लगी हुई हूँ, भाई बहन अपने खेलने में लगे हुए हैं और वो कहीं से आए हैं और मदिरा पान कर आ गए हैं। अब ये था ना कि अब इंसान चिड़चिड़ाला गुस्से वाला, अब वो लगे चिल्लाने के लिए कि काम क्यों नहीं हो रहा है जबकि हम कर ही रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो बोले मैं तो करूँगा मेरा पैसा। तो फिर उसमें मेरी थोड़ी सी बहस हो गई, तो मैंने बोला पापा अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, तो बोले मत कर, मेरा क्या जा रहा है, तू बात नहीं करेगी तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं होगा। तो लगभग एक हफ्ते तक मैंने अपने पापा से बात नहीं करी थी।
1: प्रीति की बातों से जो निकल कर आया है वो इतना है कि बंद दरवाजों के बाद भी आप अपनी कितनी भी मोटी दीवारें बनवा लीजिए, लेकिन जब आप नशे के आदि हो जाते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आवाज़ें बाहर तक पहुंचती हैं। और उस वक्त उन बच्चों के मन की स्थिति समझिए जो बार बार ये पूछते हैं इसमें हमारा क्या दोष है। जब वो किसी के सामने जाते हैं और बाहर वाले उनसे कहते हैं अरे कल रात में तुम्हारे घर पे बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी, तो इसमें उन बच्चों का क्या दोष है जो चुपचाप बैठे हुए हैं। प्रीति और एलेक्स ने आज मुझे लगता है कि बाल सभा में ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अगर हमें बच्चों से ये कहना है कि आप अपनी हद में रहो, तो ये निश्चित मानिए कि बड़ों के लिए भी कुछ हदें हैं जिसे उन्हें भी समझना पड़ेगा। तो प्रीति और एलेक्स, बातें इतनी आसान नहीं हैं, समस्या इतनी छोटी नहीं है कि एक बार की बातचीत में हम किसी निदान या समाधान पर पहुंच सके, लेकिन हाँ रास्ता कठिन है तो कहीं ना कहीं आप जैसे अगर रास्ते में हम सफर हुए तो रास्ता आगे हमें ले ज़रूर जाएगा, हमें उस उम्मीद की रोशनी की तरफ ज़रूर ले जाएगा जहाँ कुछ एलेक्स जैसे लोग निकल कर आएंगे, नशा छोड़ेंगे और कुछ आवाज़ें रवीना दीदी और निहारिका दीदी जैसी भी हमें उम्मीद की रोशनी दिखाएंगी और शायद आपके जीवन को संवारने का प्रयास करेंगी। यही कह सकती हूँ कि इस बातचीत को हमें लगता है थोड़ा और लंबा होना चाहिए, पर आज की बाल सभा में हमें यहीं रोकना होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आज हमने जितनी बातें की हैं, क्योंकि सिर्फ बातें करते जाने से तो बच्चों कुछ नहीं होगा। और श्रोताओं आप भी हमें सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे होंगे, बच्चों की बातों में जो निकल कर आया है ना उसमें सिर्फ बच्चों के लिए सीख नहीं है, बहुत कुछ बड़ों के लिए भी सीख है। और आज की बाल सभा मुझे लगता है कि सिर्फ बाल सभा नहीं रह गई है बल्कि किशोर सभा भी हो गई है और बड़ों के लिए भी एक सभा हो गई है, जिसमें आपको ये समझना होगा कि नशा कोई किक नहीं है, कोई मौज नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि आज कई बार ऐसा हुआ है इन दोनों से बात करते हुए कि मुझे लगा है कि हम कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, कितने अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो एक अंधेरी गाड़ी, एक अंधेरा रास्ता, कुछ ऐसे लड़के तलाश रहा है जो उसको उसके घर की समस्याओं से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाकर एक बड़ी समस्या की तरफ धकेल रहे हैं जिसका नाम नशा है। आज का ये शो, आज की बाल सभा हमें हिम्मत, हमें मार्गदर्शन और हमें बदलाव की इच्छा देती है कि कोई भी व्यक्ति इस अंधेरे से बाहर आ सकता है अगर एलेक्स आ सकता है तो, है ना एलेक्स?
3: जी बिल्कुल
1: आ सकता है।
3: जी जी।
1: तो एक बार आप दोनों को फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें आप दोनों से बातचीत सुनकर और ये पूरी बातचीत से एक दिशा ज़रूर मिली होगी कि पहले तो हमें इस रास्ते पर जाना नहीं है, और अगर गलती से कहीं हम चले गए हैं तो लौटना मुश्किल नहीं है, आप लौट सकते हैं, बस आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज की बाल सभा यहीं संपन्न होती है। प्रीति आपका और एलेक्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा। यह है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: बाल सभा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा। तो श्रोताओं, प्रस्तुत है आज इसका पहला भाग।
2: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, सेवानिवृत्त। कर्नल भामा ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें उन्होंने राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की सीमा पर महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में योगदान दिया। इंडियन आर्मी में आपकी कमिश्निंग, वर्ष 1988 में इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर 6वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। आपने सियाचिन ग्लेशियर, करगिल, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित किए। भारतीय थलसेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने कुछ समय तक डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी कार्य किया। आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अलावा भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के पूर्व छात्र रहे हैं। कर्नल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद दादी, नमस्कार।
2: आज कार्यक्रम का पहला एपिसोड है। आपका भारतीय थलसेना के साथ काफ़ी लंबा तारुफ रहा है। हम आपसे कई विषयों पर चर्चा करेंगे और श्रोताओं को महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप एक सैनिक हैं और देश की सुरक्षा के जो इतने भी ऑपरेशंस हुए हैं, आपने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई है। तो मेरा प्रश्न जो है वो आर्मी ऑफिसर से है कि अगर मैं मोटे तौर पर पूछूं तो एक आर्मी ऑफिसर हमारे श्रोताओं को भारतीय सशस्त्र सेनाओं के बारे में किस तरह से परिचित करवाना चाहेंगे?
3: जय हिंद श्रोताओं। भारतीय सशस्त्र सेना यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस 14 लाख के एक्टिव पर्सनल्स के साथ इस विश्व की एक सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्स है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं। ये जो फोर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में कार्यरत रहती है। हमारे देश के राष्ट्रपति हमारे सुप्रीम कमांडर हैं। अगर मैं मोटे तौर पे देखूं तो भारतीय सशस्त्र सेना के 4 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला होता है कि अपने देश की क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखना, अपने देश को भारी हमले से, किसी भी तरह के फॉरेन हमले से बचाना, एंड तीसरा जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरनल सिक्योरिटी में और किसी भी तरह के आपदा में मदद प्रदान करना, और जो विश्व में यूएन पीस कीपिंग मिशन होते हैं उसमें योगदान देना। इसमें एक्टिव जो है तकरीबन 14 लाख पर्सनल होते हैं और रिजर्विस्ट जो है वो 11.5 लाख की नफरी के साथ है, जिसमें कि भारतीय सेना के 12 लाख की नफरी है, हमारी इंडियन नेवी की जो है तकरीबन 70,000 की नफरी है, इवन इंडियन एयरफोर्स जो है उसका कंट्रीब्यूशन तकरीबन 1.5 लाख के करीब है।
2: जी कर्नल साहब, आपने अपने उत्तर की शुरुआत में एक शब्द का यूज़ किया था कि हमारे देश की जो सेनाएं हैं वह विश्व की सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्स है। तो वॉलंटियर फोर्स, इससे आपका क्या तात्पर्य था?
3: काफ़ी सारे देशों में नियम होता है कि जो युवा होते हैं उनको कंपल्सरली अपने देश की सेनाओं में सर्विस प्रदान करनी पड़ती है, उसको कंपल्सरी कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। मैं अगर उदाहरण के तौर पे बोलूँ तो USA में होता है, इसराइल में है, साउथ कोरिया में है और ऐसी काफ़ी कंट्रीज हैं जिसमें कि नॉर्वे है, जहाँ पे कि ये रूल है। पर भारत में इस तरह का कोई रूल नहीं है। यहाँ पे हर व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वेच्छता से जो है अपनी सर्विसेज प्रदान करता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में तो युवा इतने ज्यादा उत्साहित रहते हैं डिफेंस फोर्सेस में आने के लिए कि कभी भी हमारे यहाँ पे कंपलसरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है।
2: आपने बताया था कि 14 लाख एक्टिव फोर्स है, और उसके अलावा ऐसे भी क्या लोग होते हैं जो एक्टिव ना होकर जिनको बाद में बुलाया जा सकता है?
3: एक रिजर्विस्ट जो मैंने बताया था आपको, जो भी व्यक्ति डिफेंस फोर्सेस में
2: जी
3: सर्विस करते हैं वो रिटायरमेंट के बाद 5 साल के लिए रिजर्विस्ट लिस्ट में रहते हैं
2: जी।
3: इसका तात्पर्य ये रहता है कि अगर आवश्यकता पड़ती है
2: जी,
3: तो हमारे देश में एक ट्रेंड मैन पावर हमेशा अवेलेबल रहती है जिसको कि तुरंत जो है हम एक्टिव सर्विस पे वापस बुला सकते हैं। तो ये 5 साल के लिए हर व्यक्ति जो एक सोल्जर होता है
2: जी,
3: वो रिजर्विस्ट लिस्ट पे रहता है।
2: यानी अगर इमरजेंसी है और आवश्यकता आन पड़ी है तो सेवानिवृत्ति के 5 सालों के भीतर रिजर्विस्ट फोर्स में से लोगों को बुलाया जा सकता है सेवाएं प्रदान करने के लिए।
3: बिल्कुल सही कहा आपने अदिति।
2: और कर्नल साहब, आपने बताया था अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें मैन पावर के लिहाज से, तो तीनों सशस्त्र सेनाओं का मिला के जो आंकड़ा बनता है वो 14 लाख के आसपास का बनता है। अगर हम भारत को देखते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें या जनसंख्या के लिहाज से, तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, और जाहिर सी बात है कि सुरक्षा का अगर प्रश्न उठता है तो वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो भी बहुत विविधता लिए है, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि 14 लाख का आंकड़ा हमने क्रॉस किया मैन पावर को लेकर?
3: अदिति, आधा आंसर तो आपने खुद ही दे दिया है। जैसे कि आपने खुद ही बोला कि भारत एक बहुत ही विशाल देश है, 7th largest कंट्री इन द वर्ल्ड
2: जी,
3: विद द ऑलमोस्ट 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया
2: जी।
3: तो अगर हम देखें और अगर हम बॉर्डर की बात करें, लैंड बॉर्डर की बात करें, तो रण ऑफ कच्छ से शुरू करके ईस्ट तक हमारे देश का जो लैंड बॉर्डर है वो 15,200 किलोमीटर का है। अगर हम कोस्टल लाइन की बात करते हैं तो तकरीबन 7,500 किलोमीटर की हमारी जो है कोस्टल लाइन है। भारत जो है वो एक बहुत ही विशाल देश है। इसके अलावा अगर आपको वदित हो, हमारा देश का एरिया है वो इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि इवन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में 2 मेजर आइलैंड के ग्रुप्स हैं। बे ऑफ बंगाल में अगर आप देखेंगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं जो कि ऑलमोस्ट 572 आइलैंड्स के ग्रुप हैं। एंड इसी तरह से अगर हम अरेबियन सी में देखेंगे तो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जो कि 36 आइलैंड्स का एक द्वीप समूह है। तो इतने बड़े देश की सुरक्षा के लिए ये मैन पावर की हमें आवश्यकता होती है।
2: और इस मैन पावर का डिप्लॉयमेंट जो है थल के साथ साथ पानी में भी, आइलैंड्स पर भी, हिमालय में भी, कहीं पर भी होता है। और हमारे लिए गर्व का विषय है कि आप लोग भारत के कोने कोने पर अपनी मौजूदगी से हमें सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। भारत इतना बड़ा देश है और काफ़ी सारे देशों के साथ हमारी सीमाएं छूती हैं। जाहिर सी बात है, आप अगर हम समाज में भी रहते हैं तो हर पड़ोसी ना हमारा मित्र होता है ना दुश्मन होता है। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमेशा हमारे संबंध कभी मीठे नहीं रहे हैं, भारत की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा हम अपने पड़ोसियों की दृष्टिगत कैसे करते हैं?
3: देखिए, जो हमारा देश है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं सबसे पहले लैंड बॉर्डर की बात करूँगा तो 15,000 से ऊपर जो है हमारा लैंड बॉर्डर है, जिसमें कि अगर हम वेस्ट से शुरू करें तो हमारी सबसे पहले जो सीमा लगती है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, जो कि रण ऑफ कच्छ से शुरू होके, सर क्रीक से शुरू होके, उसके बाद राजस्थान के डेजर्ट्स हैं, राजस्थान के डेजर्ट्स के बाद पंजाब के प्लेन्स हैं से होती हुए जम्मू एंड कश्मीर की हिली टेरेन के आगे जो है कारगिल, और फिर सियाचिन जो कि जिसको कि हम सुपर हाई एल्टीट्यूड एरिया बोलते हैं, ये पूरा जो है हमारा पाकिस्तान के साथ जो है बॉर्डर लगता है, जो कि तकरीबन 3,323 किलोमीटर है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है जिसको कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर बोलते हैं, जो कि सर रेडक्लिफ लाइन कहलाती है। एंड जम्मू के ऊपर हमारा जो एरिया है वो LOC है
2: जी।
3: पाकिस्तान के साथ हमारा एक शिमला समझौता हुआ था 1971 वॉर के बाद, जिसमें कि जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है एक्चुअल जो भी जहाँ पे लोग थे उसके हिसाब से LOC कहलाती है वो। ये LOC जो है सियाचिन ग्लेशियर के ठीक नीचे NJ 9842 तक डिमार्केटेड है। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही डिस्प्यूटेड मतलब एरिया है जो कि पाकिस्तान जिसपे कि अपना हक मानता है। ऑफ कोर्स ये भारत का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है और सीमा है यानी कि बॉर्डर है, उसको हम एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लोकेशन बोलते हैं। और इसी तरह से इसके बाद अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में अक्साई चीन वाला जो एरिया है वहाँ से हमारा बॉर्डर चाइना के साथ लगता है, और ये बॉर्डर वहाँ से होता हुआ अक्साई चीन के एरिया के नीचे से जहाँ के अभी आपने काफ़ी नाम सुने होंगे पेंगेंग सो लेक है, फिर उसके नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड से होते हुए जो है ये आगे नेपाल सिक्किम भूटान से होते हुए आगे अरुणाचल के साथ जाते हैं। और ये एरिया है तकरीबन जो है 4000 किलोमीटर का हमारा चाइना के साथ बॉर्डर लगता है। चाइना के साथ हमारी जो संबंध है वो जगविदित हैं
2: जी,
3: और ये खासकर जो हमारा उनके से सबसे बड़ा झगड़ा है वो बॉर्डर के साथ तरीके है। अगर हम चाहें तो विस्तार में इसके बारे में आगे बात कर सकते हैं जी। फिर दूसरी एक जो कंट्री है जिससे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं जो कि नेपाल है। नेपाल के साथ हमारा देश तकरीबन जो है 1700 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। उसी तरह से अगेन दूसरा एक मित्र देश भूटान है जिसमें कि हम तकरीबन 700 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। और ईस्ट में जो है अगर हम देखें तो म्यांमार है जिसमें कि हमारे साथ तकरीबन 1700 किलोमीटर का बॉर्डर हम उसके साथ शेयर करते हैं। और बांग्लादेश जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था एंड 71 के बाद जिसके लिबरेशन के बाद उसको वो बांग्लादेश हुआ, इसमें अगेन इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये भी रेडक्लिफ लाइन कहलाती है जिससे जो कि तकरीबन 4000 किलोमीटर की है। एक और देश है जिसके साथ हम अपना बॉर्डर साझा करते हैं वो है अफगानिस्तान। ये POK में है, तकरीबन 105 किलोमीटर की सीमा जो है हमारी उनके साथ साझा होती है। ये अगर हम बात करेंगे तो हमारे लैंड बॉर्डर की बात है। अगर हम अब नीचे देखें यानी साउथ में देखें तो हम तीनों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं। तो इसमें जो है हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि 7500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। ये हम जो है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मालदीव्स के साथ शेयर करते हैं। बहुत ही विशाल देश है, सशस्त्र सेनाओं के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है इन सब की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना।
2: कई युवा रहते हैं जो आर्मी से जुड़ना चाहते हैं और उनकी स्किल अलग रहती है। एक सैनिक अफसर के अलावा कौन कौन से लोग, कौन कौन से व्यवसाय से जुड़े लोग भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं?
3: आप खुद समझ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी सेना है
2: जी
3: तो इसमें बहुत ही डिफरेंट स्किल्स की जरूरत पड़ती है। देखिए जैसे एक सोल्जर जो है लड़ने जाता है तो उसको लड़ने के लिए वहाँ पे खाना भी देना होता है,
2: जाहिर सी
3: बात, उसको कपड़े भी चाहिए होते हैं। तो अगर खाना है देना है तो उसको बनाने के लिए कुक चाहिए होता है। अगर सोल्जर्स को मेंटेन अपने कपड़े मेंटेन करने हैं तो उसको एक दर्जी की भी जरूरत पड़ती है। अगर उसके पास बूट और इक्विपमेंट है उसको रिपेयर करने के लिए इक्विपमेंट रिपेयर की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि आर्मी में गाड़ियां होती हैं, इक्विपमेंट होते हैं, तो उनके लिए जो है टेक्निकल बंदे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है जो उनको रिपेयर कर सकें, उनको मेंटेन कर सकें। तो एक ये जो फोर्सेस होती हैं इसमें एक जनरल ड्यूटी के अलावा बहुत सारी टेक्निकल सर्विसेज, यहाँ तक कि इवन होटल मैनेजमेंट के जो पास आउट होते हैं उनकी भी जरूरत होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है।
2: हाँ।
3: बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर युवा जो किसी भी फील्ड में है वो इसके लिए ट्राई कर सकता है। जो उसकी स्पेशल जो उसने क्वालिफिकेशन हासिल करी है, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो या वो सिविल इंजीनियर हो तो या वो मेडिकल से हो, हर तरह के जो युवा हैं वो अपनी सर्विसेज प्रदान कर सकते हैं। और इनके लिए क्या होता है कि अलग अलग तरह की एंट्रीज होती हैं आर्मी में।
2: कर्नल साहब, विशाल देश की जो महत्वपूर्ण सुरक्षा है उसके लिए आप लोग सदैव तत्पर रहते हैं और ये काफ़ी गौरव की बात है कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आगे भी आते रहेंगे, महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करेंगे, कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। आप हमारे साथ आए और हमारे साथ आपने जानकारियाँ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू अदिति एंड जय हिंद श्रोताओं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।
4: इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जॉन अंडरहिल और 1644 का नरसंहार, जब भाड़े के सैनिकों ने लिखी साम्राज्य की पटकथा। 1644 की कड़ाके की ठंड में डच वेस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसे व्यक्ति की ओर रुख किया जिसकी निर्दयी कार्य कुशलता की प्रतिष्ठा अटलांटिक सीमाओं के पार तक फैली हुई थी। कैप्टन जॉन अंडरहिल एक अमेरिकी मर्सिनरी यानी भाड़े का सैनिक थे जिनका विवाह एक डच महिला से हुआ था। अंडरहिल ने न्यू इंग्लैंड के पेकोट युद्ध के दौरान इतिहास में अपना नाम पहले ही खूनी अक्षरों में दर्ज कर लिया था। वह 1637 में मिस्टिक रिवर पर हुए उस कुख्यात नरसंहार के मुख्य सूत्रधार थे जहां उनके आदेश पर एक पूरे पेकोट गांव का विनाश कर दिया गया था। अब वह पूर्ण विनाश की वही भूख लेकर प्रथम डच मुंसी युद्ध के दौरान WIC की सेवा में आए। हडसन की घाटी में संघर्ष के ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां डच बसने वाले और मुंसी समूह हत्याओं और प्रतिशोध के अंतहीन चक्र में फंस गए थे। स्वदेशी प्रतिरोध को हमेशा के लिए कुचलने के इरादे से अंडरहिल ने फरवरी 1644 में WIC सैनिकों के एक दल का नेतृत्व करते हुए एक कुख्यात अभियान चलाया। उनका लक्ष्य आधुनिक न्यूयॉर्क के पाउंड रिज

0: सहायता का था, क्योंकि ग्रामीणों ने WIC सैनिकों के हाथों मारे जाने के बजाय आग की लपटों में जलकर मरना बेहतर समझा। जब तक आग शांत हुई, 500 से अधिक इंडियंस लोग मारे जा चुके थे। ये घटना न्यू नीदरलैंड के इतिहास के सबसे क्रूर अत्याचारों में से एक थी, जिसने 5 साल तक चले पूरे संघर्ष में खोए अनुमानित 1600 स्वदेशी जीवन का लगभग एक तिहाई हिस्सा ले लिया था। अंडरहिल की भाड़े की सेवा का प्रभाव केवल शवों की संख्या तक सीमित नहीं था। उनके अभियान के निचली हडसन घाटी में जनसांख्यिकी तबाही और स्वदेशी राजनीतिक संरचनाओं के पतन को तेज कर दिया। जीवित बचे मुंशी समूह के लिए डच कंपनी का वह दावा, जो कभी यूरोपीय दस्तावेजों में केवल एक कानूनी कल्पना थी, अब एक भयानक वास्तविकता बन गया। 1650 के दशक तक इंडियन समुदाय के नेता स्टेटन आइलैंड जैसी जगहों के लिए संपत्ति के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे और अपनी जमीन अभी और हमेशा के लिए सौंप रहे थे। अंडरहिल की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कंपनी राज्य का विस्तार केवल व्यापार और संधियों का मामला नहीं था, बल्कि यह अक्सर हिंसा के पेशेवर एजेंटों की विशेषज्ञता पर बनाया गया था। 17वीं शताब्दी के सीमांत क्षेत्रों में एक भाड़े के सैनिक की मशाल किसी भी व्यापारी के बही खाते की तुलना में संप्रभुता के नक्शे को अधिक प्रभावी ढंग से फिर से लिख सकती थी। अंडरहिल जैसे क्रूर पुरुषों के माध्यम से डब्ल्यूआईसी समुद्री घुसपैठियों के एक समूह से बदलकर देश के निर्विवाद मालिक में बदल गई।
1: वामपंथ पवित्र प्रतीकों से लेकर साम्राज्य की मुद्रा तक। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकी पूर्वोत्तर के दलदली इलाकों और तटों पर एक अजीब गरीब बदलाव हो रहा था। यूरोपीय सिक्कों के आगमन से बहुत पहले इस क्षेत्र के मूल निवासी जैसे मुंशी समूह क्वाहोग क्लैम के खोल से मोती बनाते थे। इन मोतियों को वामपम कहा जाता था। ये केवल सजावट की चीजें नहीं थीं। ये संधियों को दर्ज करने, कहानियां सुनाने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पवित्र वस्तुएं थीं। सबसे कीमती गहरे बैंगनी रंग के मोती होते थे, जिन्हें शंख के गहरे हिस्सों से तराशा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इन बैंगनी मोतियों का उत्पादन इंटरेक्टिव डोमेन्स यानी पारस्परिक प्रभुत्व का परिणाम था। पत्थर जैसे सख्त क्वाहोग खोल को नाजुक बेलनाकार मोतियों में तराशने के लिए स्वदेशी कारीगरों को यूरोप से आपूर्ति किए गए धातु के ड्रिल की आवश्यकता थी, जो 1630 के दशक तक हडसन घाटी में आम नहीं हुए थे। इस तकनीकी संलयन ने लॉन्ग आइलैंड के तटीय क्षेत्रों को एक वास्तविक टकसाल में बदल दिया। 1640 के दशक तक डच और अंग्रेजी बसने वालों के लिए एक अजीब आर्थिक वास्तविकता बन गई थी। उपनिवेशों में सोने चांदी की कमी थी और फिर फर, जो कि पशुओं की खाल होती थी, का व्यापार धन का प्राथमिक इंजन था। बसने वालों और स्वदेशी समूहों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए वामपम पसंद की मुद्रा बन गया। ये वो पैसा था जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापार को गति दी, जिसका उपयोग वीवर की खाल से लेकर मक्के और यहाँ तक कि जमीन के विशाल टुकड़ों को खरीदने के लिए किया जाता था। हालांकि डच वेस्ट इंडिया कंपनी और स्वदेशी उत्पादक इस पैसे को दो पूरी तरह से अलग नजरियों से देखते थे, उनके लिए वामपंप सामाजिक पारस्परिकता का हिस्सा था, एक उपहार जिसके बदले में दुनिया को संतुलन में रखने के लिए दूसरा उपहार दिया जाना चाहिए। उनके लिए ये वस्तु थी जिसे कर यानी टैक्स के दायरे में लाया और नियंत्रित किया जाना था। सितंबर 1639 में डच डायरेक्टर विलेम कीफ्ट ने नीति में एक कट्टरपंथी बदलाव का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय मुंशी समूहों पर सुरक्षा शुल्क लगा दिया और डच किलों की लागत वहन करने के लिए वामपम और वीवर की खाल के रूप में ट्रिब्यूट की मांग की। मुंशी इस बात से आक्रोशित थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने डचों का स्वागत किया था, उनके संकट के समय उनकी देखभाल की थी और उन्हें अपनी जमीन पर मुफ्त में बसने की अनुमति दी थी। वामपम जो संतुलन का प्रतीक था, उसे अनचाही सुरक्षा के लिए टैक्स के रूप में मांगना सामाजिक पारस्परिकता की विफलता थी। वामपम के आध्यात्मिक और राजनीतिक मूल्य की यही मौलिक गलतफहमी 1640 में प्रथम डच मुंशी युद्ध का प्राथमिक कारण बनी। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, लॉन्ग आइलैंड के वामपम उत्पादक एक दुखद बंधन में फंस गए। यूरोपीय बाजार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत होने के कारण उन्हें केवल अपनी जमीन और मोती बनाने के लिए आवश्यक धातु के औजारों तक पहुंच बनाए रखने के लिए डचों को शांति और सैन्य सहायता का वचन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जंगल के वे आध्यात्मिक मोतीशाही अधीनता के हथियार बन चुके थे जो उन लोगों की बेदखली का रास्ता तय कर रहे थे जिन्होंने उन्हें बनाया था। वामपम उस समय के एक डरावने अवशेष के रूप में आज भी मौजूद हैं, जब पवित्र प्रतीकों को साम्राज्य की ठंडी मुद्रा के रूप में पुनर्गठित किया गया था।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: ये इस कार्यक्रम का दूसरा भाग है।
1: मैं दरखास्त करूंगी कि हमारे जो नौजवान सिंगर हैं जान, उनको स्टेज में आने के लिए बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, इसको आशीर्वाद कीजिए।

थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 90s की बात ही अलग थी राइट। आप लोगों को 90s का कुछ और सुनना है, कुछ सुना है? आवाज नहीं आ रही, ऊपर वालों की आवाज नहीं आ रही। कुछ सुनना है 90s का? अब नीचे वालों की बोलते, कुछ सुनना है 90s का? ओके लेट्स गो। और जिन जिनको ये गाना आता है प्लीज साथ में गाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर सामने काफी लोगों को देख रहा हूँ ऐसे होठ हिला रहे, बट आपकी आवाज नहीं आ रही है।

थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, इस नेक्स्ट गाने के लिए मुझे आप लोग की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। क्या आप लोग मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं गाने में? हाँ, क्योंकि ये गाना मैं अकेले गाऊंगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मैं आप सबके साथ गाऊंगा तो मज़ा आएगा, और मुझे चाहिए कि आप लोग भी इन्जॉय करें। तो सब अपने फ़ोन के टॉर्च लाइट पहले ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये माहौल हम बनाने वाले हैं कैसा, और ये गाना आप सब जानते हैं तो साथ में गाएंगे।

0: thank you so much. Thank you so much. And again, a huge round of applause because Kavita ma'am is back.
1: Abhi. अच्छा ये गीत गाने से पहले मैं अपने बहुत बहुत अच्छे में हमारे बॉम्बे के उम्दा आर्टिस्ट जो बहुत बढ़िया बहुत सालों से सबसे पहला जिनको मैं इंट्रोड्यूस करूँगी वो कम से कम 40-50 साल से तो लक्ष्मीकांत प्यारलाल के साथ हैं हमारे सुरेश यादव जी हवा हवाई हो खुदा गवाह हो सारे जो ओरिजिनल पीसेस इन्होंने बजाए हैं और हमारे यहाँ पे हैं चिराग पंचाल जी जो बहुत सालों से ये भी ये लोग सब आशा जी पता नहीं बहुत छोटे लता जी के साथ नहीं शायद बजाए होंगे बहुत कम उम्र सुरेश यू हैव प्लेड विद लता जी तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ बजाए हैं चिराग जी आप चिराग जी आशा जी के साथ बजा चुके हैं नहीं लता जी के साथ नहीं बहुत छोटे हैं आप है ना बहुत बाद में आए कोई बात नहीं उस और अमित भंवर जी हैं बहुत अच्छा ये भी बॉम्बे से और बहुत सालों से मेरे रिचर्ड मित्रा जी को जो गिटार में है इनको जानती हूँ मैं ये इतने छोटे थे जब मन्ना दा के साथ इन्होंने बजाना मतलब शुरू किया और तब मैं मन्ना दा के साथ ड्यूएट्स गाती थी हम लोग पूरा वर्ल्ड घूम चुके हैं मन्ना दा का ब्लेसिंग मिला और फिर जतिन ललित जी के असिस्टेंट रहे हैं और जतिन ललित के जो पीसेस सुनते हैं गिटार के पीसेस सब इन्होंने बजाए हैं और जो पीछे छुपे हुए हैं सुरेश अय्यर जी ये बहुत अच्छा बेस गिटार बजाते हैं प्रसाद कुलकर्णी राजू कुलकर्णी राजू जी सबके साथ और आजकल के नौजवान आर्टिस्ट सुनिधि चौहान सबके साथ बजा चुके हैं तो ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं मेरे साथ और उसके बाद हैं हमारे संतोष भुटाल जी और इनको कौन नहीं पहचानता आप बताइए गिरीश विश्वास जी को ये तो अभी वर्ल्ड फेमस हैं और ढोलक में क्या हाथ है इनका आप सुनेंगे आज बोले चूड़िया में आप इनका ढोलक में हाथ सुनेंगे बहुत अच्छा बजाते हैं और इनके जो अंकल थे इनके अंकल विजय इंदौरकर जी इंदौर के विजय इंदौरकर जी वो इनके अंकल हैं और वो विजय इंदौरकर जी रिचर्ड हम लोग सब मन्ना दा के साथ घूमते थे हाँ और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द यंग संकेत हम साथ प्रोग्राम्स करते रहे सो नाइस टू हैव यू ऑल थैंक यू साउंड में हमारे बॉम्बे के परीक्षित जी हैं तो ये जो आप गाना सुन रहे हैं म्यूजिशियंस को सुन रहे हैं हमको सुन रहे हैं इनकी मेहनत होती है और हम इनको तंग करते रहते हैं कि मॉनिटर्स में ये बढ़ाओ कीबोर्ड बढ़ाओ इसकी आवाज़ बढ़ाओ पर वो सुनते रहते हैं बेचारे हमारा काम करते रहते हैं और आपको भी खुश करते रहते हैं थैंक यू परीक्षित एंड नाउ फॉर आवर नेक्स्ट सॉन्ग

0: थैंक यू।
1: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
2: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए यानी सपनों को पंख देने वाली संस्था के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: श्रोताओं, पिछले कुछ प्रकरणों में दादू और रुचि ने देश के अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों की प्रेरक कहानियां जानी। लंबी यात्रा के बाद अब दोनों अपने अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन ज्ञान की यात्रा तो अभी भी जारी है ना?
2: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक खबर है।
1: नमस्ते दादू।
2: हाँ हाँ हाँ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गई कॉलेज से? कैसी रही आज की पढ़ाई?
1: बहुत अच्छी रही दादू, लेकिन आप कौन सी खबर को इतनी ध्यान से पढ़ रहे हैं?
2: अरे बेटा, मैं पढ़ रहा हूँ भारत के विमानन क्षेत्र से जुड़ी ये एक आर्टिकल है, यही पढ़ रहा हूँ मैं।
1: विमानन क्षेत्र मतलब हवाई जहाजों की दुनिया?
2: हाँ हाँ बेटा, एक मिनट बस। हाँ बेटा, केवल हवाई जहाज नहीं बल्कि उन संस्थाओं की दुनिया जो भारत को आकाश में नई ऊंचाइयां देने का काम कर रही है।
1: दादू, जब भी मैं आकाश में उड़ते हुए विमान देखती हूँ ना, तो मेरे मन में एक सवाल आता है।
2: मुझे देखकर तुम्हारे मन में कोई ना कोई सवाल आ ही जाता है। अखबार रख देता हूँ एक मिनट। चलो। हाँ बेटा, पूछो सवाल पूछो।
1: दादू, इतना भारी विमान आखिर उड़ता कैसे है और उसे बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी?
2: लगता है आज की कहानी फिर से शुरू होने वाली है।
1: वो तो होने वाली है दादू, अब जल्दी से बताइए ना, आज हम किस संस्थान के बारे में जानेंगे?
2: तो आज हम जानेंगे यही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA की कहानी। एक ऐसी संस्था की कहानी जिसने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम को नई दिशा दी।
1: वाह दादू, यानी आज की कहानी आकाश से जुड़ी है।
2: हाँ बेटा, आज हम धातुओं की दुनिया से निकलकर उड़ान की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं।
1: दादू, वो देखिए, छत पर बैठे कबूतर एक साथ उड़ गए।
2: हाँ बेटा, प्रकृति का ये दृश्य जितना सुंदर है उतना ही प्रेरणादायक भी है।
1: अच्छा दादू।
2: हाँ बेटा।
1: क्या इंसान ने उड़ने का विचार पक्षियों को देखकर ही सीखा था?
2: काफी हद तक, हजारों वर्षों से मनुष्य पक्षियों को उड़ते देखता रहा और उसके मन में भी आकाश में उड़ने की इच्छा जागती रही।
1: मतलब उड़ान का सपना बहुत पुराना है।
2: बहुत पुराना बेटा। पुराने ग्रंथों, कथाओं और लोक कथाओं में उड़ने वाले रथों और आकाश यात्राओं का उल्लेख इन सब में मिलता है। लेकिन सपना देखना और उसे वास्तविकता में बदलना दो अलग बातें हैं।
1: फिर दादू, इंसान ने ये सपना भला कैसे पूरा किया?
2: इसके लिए वैज्ञानिकों, अभियंताओं और आविष्कारकों ने वर्षों तक अध्ययन किया। उन्होंने पक्षियों की उड़ान को समझा, हवा की गति को समझा और फिर ऐसे यंत्र विकसित किए जो हवा में उड़ सके।
1: यानी विमान केवल मशीन नहीं है बल्कि सदियों पुराने एक सपने की पूर्ति है।
2: बहुत सुंदर कहा तुमने।
1: लेकिन दादू, पक्षी तो अपने पंखों से उड़ते हैं, फिर ये विमान आखिर कैसे उड़ता है?
2: ये प्रश्न दुनिया के लाखों बच्चों के मन में आता है। विमान के पंखों का आकार ऐसा बनाया जाता है कि जब वो तेज गति से आगे बढ़ता है तो हवा का दबाव उसके ऊपर और नीचे अलग अलग हो जाता है
1: और उसी से वह ऊपर उठता होगा।
2: बिल्कुल, इसे ही उड़ान का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन इसे समझना आसान है जबकि इसे व्यवहार में सफल बनाना बहुत कठिन होता है बेटा।
1: वो भला क्यों?
2: वो भला ऐसे बेटा, क्योंकि विमान को केवल उड़ना नहीं होता, सुरक्षित भी उड़ना होता है ना। उसे तेज हवा, बारिश, ऊंचाई और अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
1: अब समझ में आया कि विमान बनाना इतना कठिन काम क्यों है।
2: हाँ बेटा।
1: दादू, क्या हर देश अपना विमान बना सकता है?
2: नहीं नहीं बेटा, विमान निर्माण दुनिया की सबसे जटिल तकनीकों में से एक माना जाता है।
1: मतलब इसके लिए बहुत अधिक ज्ञान और अनुभव चाहिए होगा।
2: बिल्कुल चाहिए। विमान बनाने के लिए वायु गतिकी, धातु विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सामग्री विज्ञान और अनेक अन्य क्षेत्रों का ज्ञान एक साथ काम करता है।
1: यानी ये कई विज्ञानों का संगम होगा।
2: बिल्कुल है बेटा।
1: अच्छा दादू, जब विमान बनाना इतना कठिन है तो भारत ने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की शुरुआत कैसे की थी?
2: बेटा स्वतंत्रता के बाद भारत ने ये महसूस किया कि यदि हमें सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपनी तकनीक विकसित करनी पड़ेगी।
1: और इसमें विमानन तकनीक भी शामिल थी।
2: बिल्कुल, विशेषकर रक्षा क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण था। किसी भी देश की वायुसेना उसकी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार होता है बेटा।
1: तो क्या इसी सोच ने ADA के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया?
2: हाँ बेटा, जैसे जैसे भारत ने स्वदेशी लड़ाकू विमान विकसित करने का लक्ष्य तय किया, वैसे वैसे एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस हुई जो इस विशाल कार्यक्रम का नेतृत्व कर सके।
1: और तब ADA की स्थापना हुई होगी दादाजी।
2: हाँ बेटा, वर्ष 1984 में बेंगलुरु में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अर्थात ADA की स्थापना की गई।
1: और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
2: भारत के हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और उसे तकनीकी दिशा प्रदान करना।
1: यानी ADA का जन्म केवल एक संस्था के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय सपने के रूप में हुआ था।
2: सही कहा बेटा, ये उस सपने का हिस्सा था जिसमें भारत अपने लिए आधुनिक लड़ाकू विमान स्वयं विकसित करना चाहता था।
1: दादू, क्या ये वही कार्यक्रम था जिससे आगे चलकर तेजस विमान बना?
2: हाँ बेटा, तेजस केवल एक विमान नहीं है बल्कि हजारों वैज्ञानिकों, अभियंताओं, तकनीशियनों और परीक्षण पायलटों की वर्षों की मेहनत, आत्मविश्वास, अनुसंधान, धैर्य और नवाचार की कहानी भी है।
1: दादू, जब ADA की स्थापना हुई होगी तब क्या किसी ने सोचा होगा कि एक दिन भारत अपना आधुनिक लड़ाकू विमान विकसित करेगा?
2: सपना बड़ा था बेटा, चुनौतियाँ उससे भी बड़ी थी, लेकिन संकल्प उतना ही मजबूत था।
1: दादू, अब तो मुझे तेजस की पूरी कहानी जानना है आपसे।
2: तो तैयार हो जाओ, अब हम जानेंगे कि कागज पर बने एक विचार ने कैसे आकाश में उड़ान भरी और भारत की विमानन यात्रा का नया अध्याय लिखा।
1: दादू, आपने कहा था कि तेजस केवल एक विमान नहीं है बल्कि वर्षों की मेहनत का परिणाम है, लेकिन किसी लड़ाकू विमान की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है?
2: दिलचस्प प्रश्न है बेटी। किसी भी विमान की शुरुआत कारखाने से नहीं बल्कि विचार से होती है। विचार से? हाँ बेटा, सबसे पहले ये तय किया जाता है कि विमान को क्या क्या कार्य करने होंगे, वो कितनी ऊंचाई तक उड़ सकेगा, उसकी गति कैसी होगी, वो कितना भार ले जा सकेगा और उसकी युद्ध क्षमता कैसी होगी।
1: मतलब पहले उसकी आवश्यकताओं की सूची तैयार की जाती होगी?
2: हाँ बेटा बिल्कुल, उसके बाद वैज्ञानिक और अभियंता मिलकर प्रारंभिक डिजाइन तैयार करते हैं।
1: दादू, क्या आज भी विमान केवल कागज पर डिजाइन किए जाते हैं?
2: नहीं बेटा, आज आधुनिक संगणक प्रणालियाँ इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
1: वो भला कैसे?
2: ADA ने अत्याधुनिक संगणन सुविधाएं विकसित की। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर आधारित डिजाइन, विश्लेषण और सिमुलेशन तकनीकों का उपयोग किया।
1: सिमुलेशन मतलब?
2: मान लो किसी विमान को वास्तव में बनाने से पहले उसके व्यवहार को कंप्यूटर पर परखा जाए, ये देखा जाए कि उड़ान के दौरान वो कैसा प्रदर्शन करेगा।
1: अरे वाह, यानी पहले आभासी दुनिया में परीक्षण और फिर वास्तविक दुनिया में?
2: हाँ बेटा बिल्कुल।
1: दादू, लेकिन वैज्ञानिक कैसे जान पाते हैं कि हवा में विमान का व्यवहार कैसा होगा?
2: इसके लिए विंड टनल परीक्षण किए जाते हैं।
1: विंड टनल, ये क्या होते हैं?
2: ये बेटा एक विशेष सुविधा होती है जहाँ नियंत्रित गति से हवा प्रवाहित की जाती है।
1: और उसमें विमान को उड़ाया जाता है?
2: पूरे विमान को नहीं बल्कि उसके मॉडल का परीक्षण किया जाता है बेटा, ताकि ये देखा जा सके कि हवा उसके चारों ओर कैसे बह रही है।
1: सच में दादू?
2: इससे वैज्ञानिक ये समझते हैं कि डिजाइन कितना प्रभावी है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है।
1: मतलब विमान की पहली परीक्षा आकाश में नहीं प्रयोगशाला में होती है।
2: बिल्कुल सही कहा बेटा।
1: दादू, ADA की सुविधाओं में एक नाम आपने बताया था आयरन वर्ड, ये सुनकर तो किसी विज्ञान कथा की याद आती है मुझे।
2: हाँ, नाम सचमुच रोचक है बेटा।
1: तो बताइए ना, क्या है ये?
2: आयरन बर्ड वास्तव में एक परीक्षण व्यवस्था होती है बेटा। इसमें विमान की विभिन्न प्रणालियों को जमीन पर ही जोड़कर उनकी कार्य क्षमता की जांच की जाती है।
1: यानी विमान उड़ने से पहले उसकी कई प्रणालियां जमीन पर परखी जाती है?
2: हाँ बेटा, इससे संभावित समस्याओं का पता पहले ही चल जाता है।
1: मतलब सुरक्षा की शुरुआत उड़ान से पहले ही हो जाती है?
2: बिल्कुल,
1: दादू, जब इतने वर्षों की मेहनत के बाद कोई विमान पहली बार उड़ान भरता होगा तब कैसा माहौल होता होगा?
2: कल्पना करो बेटा, वर्षों तक वैज्ञानिकों ने काम किया, अभियंताओं ने डिजाइन तैयार किए, तकनीशियनों ने अनगिनत घंटे लगाए, परीक्षण किए गए,
1: और फिर वो दिन आता है
2: जब विमान पहली बार रनवे पर दौड़ता है,
1: और उस समय सबकी निगाहें उसी पर होती होंगी।
2: बिल्कुल, क्योंकि उस क्षण में केवल एक मशीन नहीं बल्कि वर्षों का परिश्रम और आशाएं उड़ान भर रही होती हैं बेटा।
1: दादू, मुझे सुनकर कितना रोमांच हो रहा है।
2: हाँ बेटा।
1: दादू, एक विमान का नाम तेजस भी तो था, वो भला कैसे रखा गया?
2: तेजस संस्कृत का शब्द है बेटा, जिसका अर्थ है तेज, ऊर्जा, प्रकाश और शक्ति।
1: तो ये नाम वास्तव में विमान की भावना को दर्शाता है।
2: हाँ, और ये केवल एक नाम नहीं है बल्कि भारतीय विज्ञान और आत्मनिर्भरता के आत्मविश्वास का प्रतीक भी बन गया है।
1: अब समझ में आ रहा है कि तेजस की चर्चा होते ही लोगों की आंखों में गर्व क्यों दिखाई देता है।
2: क्योंकि ये उस क्षमता का प्रतीक है जिसे भारत ने अपने वैज्ञानिकों और अभियंताओं के बल पर विकसित किया है।
1: अच्छा दादू, क्या एडीए का काम केवल तेजस तक ही सीमित है?
2: नहीं नहीं बेटा, यही तो इस कहानी का अगला और भी रोचक अध्याय है।
1: मतलब एडीए भविष्य के विमानों पर भी काम कर रही है?
2: तेजस के बाद तेजस MK2 नौसेना के लिए उन्नत लड़ाकू विमान और भविष्य की अत्याधुनिक विमान परियोजनाओं पर भी लगातार कार्य चल रहा है।
1: यानी एडीए केवल वर्तमान नहीं बल्कि भारत के भविष्य के आकाश की भी तैयारी कर रहा है।
2: हाँ बेटा, और हम उसी भविष्य की कहानी जानेंगे।
1: दादू, जब हम किसी विमान को आकाश में उड़ते देखते हैं तो उसकी चमक और गति दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे चलने वाली वैज्ञानिक दुनिया हमें दिखाई नहीं देती।
2: हाँ बेटा, किसी भी आधुनिक विमान के पीछे हजारों गणनाएं, लाखों आंकड़े छिपे होते हैं।
1: क्या एडीए में भी ऐसी सुविधाएं हैं?
2: हाँ हाँ, एडीए ने समय के साथ अत्याधुनिक संगणन केंद्र विकसित किए हैं, जहाँ जटिल डिजाइनों का विश्लेषण किया जाता है।
1: मतलब वैज्ञानिक कंप्यूटरों की सहायता से विमान के व्यवहार का अध्ययन करते हैं।
2: हाँ, पहले जिन गणनाओं में महीनों लग जाते थे आज उन्हें शक्तिशाली कंप्यूटर बहुत कम समय में पूरा कर सकते हैं।
1: यानी आधुनिक विमान निर्माण में कंप्यूटर भी उतने ही जरूरी हैं जितने हमारे इंजीनियर्स।
2: सही कहा बेटा, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं।
1: दादू, आजकल वर्चुअल रियलिटी की बहुत चर्चा होती है, क्या विमान निर्माण में भी इसका उपयोग होता है?
2: हाँ हाँ बेटा, वर्चुअल रियलिटी वैज्ञानिकों और अभियंताओं को विमान के विभिन्न भागों को त्रिआयामी रूप में देखने और समझने में सहायता करती है।
1: यानी विमान बनने से पहले ही उसके भीतर घूमकर देखा जा सकता है।
2: हाँ हाँ, इससे डिजाइन संबंधी समस्याओं को पहले से ही पहचानना आसान हो जाता है।
1: तो ये समय और संसाधन दोनों की बचत करता होगा।
2: हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने।
1: दादू,
2: हाँ,
1: अब मुझे लग रहा है कि विमान निर्माण केवल धातुओं और इंजनों की कहानी नहीं है।
2: आधुनिक विमानन में सॉफ्टवेयर की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा।
1: वो कैसे?
2: एडीए ने विभिन्न प्रकार के विशेष सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं जिनका उपयोग डिजाइन, विश्लेषण, निर्माण, उड़ान अनुकरण और परीक्षणों में किया जाता है।
1: यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली रेखाएं आगे चलकर वास्तविक विमान का रूप ले लेती हैं।
2: हाँ, कई बार एक छोटी सी गणना भी पूरे विमान के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है बेटा।
1: दादू, अब मुझे समझ में आ रहा है कि विमान निर्माण में गणित और विज्ञान कितना जरूरी है। सही कहा था आपने कि एडीए का काम केवल तेजस तक ही सीमित नहीं है।
2: हाँ बेटा, विज्ञान की यात्रा कभी रुकती नहीं है।
1: तो अब आगे क्या?
2: आगे बेटा, तेजस के अनुभव और सीख के आधार पर और अधिक उन्नत विमान विकसित करने की दिशा में कार्य चल रहा है।
1: तो क्या ये तेजस का नया रूप लेगा?
2: इसे तुम अगली पीढ़ी की प्रगति कह सकती हो बेटा। हर नई परियोजना पिछली उपलब्धियों पर आधारित होती है।
1: यानी हर सफलता अगले लक्ष्य का आधार बन जाती है।
2: एकदम सही।
1: दादू, क्या भविष्य में विमानों की दुनिया और भी बदल जाएगी?
2: निश्चित रूप से बेटा, आने वाले समय में विमान अधिक उन्नत, अधिक सक्षम और तकनीकी रूप से और भी परिष्कृत होंगे।
1: तो क्या अब हमारा भारत भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है?
2: हाँ, इसी उद्देश्य से भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नई परियोजनाओं पर लगातार कार्य किया जा रहा है।
1: मतलब एडीए केवल आज की जरूरतों के लिए नहीं बल्कि आने वाले दशकों के लिए भी तैयारी कर रही है।
2: हाँ बेटा, यही किसी दूरदर्शी संस्था की पहचान होती है।
1: दादू, आज की कहानी सुनकर मेरे मन में एक नया विचार आया है।
2: वो क्या बेटा?
1: वो ये कि जब मैं अगली बार आकाश में कोई विमान देखूंगी ना, तो केवल उसकी गति नहीं देखूंगी, मैं उसके पीछे छिपे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत को भी याद करूंगी।
2: हाँ बेटा, और यही इस कहानी का उद्देश्य है।
1: दादू, लोग अक्सर उड़ते हुए विमानों को देखते हैं, लेकिन उसे उड़ाने वाले ज्ञान को नहीं देखते।
2: हाँ, बिल्कुल सही बात पकड़ी। लगता है कि आज की कहानी ने तुम्हें फिर एक नई सीख दे दी है।
1: दादू, एक बात बताइए ना।
2: हाँ।
1: आपने BEML, मिधानी और कई अन्य संस्थानों की कहानियाँ सुनाई है मुझे, लेकिन विमान बनाने की बात आते ही हर कोई इसे बहुत बड़ी उपलब्धि क्यों मानता है? क्या ये कार या रेलगाड़ी बनाने से भी अधिक कठिन है?
2: बहुत कठिन है बेटा। सोचो, रेलगाड़ी पटरियों पर चलती है और कार सड़क पर, लेकिन विमान को हजारों फीट ऊपर हवा में उड़ना होता है।
1: और वहाँ तो कोई सड़क भी नहीं होती।
2: हाँ, विमान को अपने संतुलन, दिशा और गति का नियंत्रण स्वयं बनाए रखना पड़ता है।
1: मतलब जरा सी भी गलती भारी पड़ सकती है दादू।
2: हाँ बेटा, यही कारण है कि विमान निर्माण में अत्यंत सूक्ष्मता और सावधानी की आवश्यकता होती है।
1: दादू, आधुनिक लड़ाकू विमानों के बारे में अक्सर एक शब्द सुनाई देता है, फ्लाई बाय वायर। ये क्या होता है?
2: बेटा, पहले के विमानों में पायलट के नियंत्रण सीधे यांत्रिक प्रणालियों से जुड़े होते थे, लेकिन आधुनिक विमानों में कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: कैसे?
2: देखो बेटा, जब पायलट कोई नियंत्रण देता है तो कंप्यूटर उस संकेत को समझकर विमान की विभिन्न प्रणालियों तक पहुंचाता है।
1: यानी कंप्यूटर पायलट का सहयोगी बन जाता है।
2: हाँ, इससे विमान अधिक स्थिर और नियंत्रित रहता है।
1: तो तेजस में भी ऐसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया?
2: हाँ बेटा, यही कारण है कि तेजस भारत की तकनीक क्षमता का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है।
1: दादू, लड़ाकू विमान को मजबूत भी होना चाहिए और तेज भी, तो दोनों बातें एक साथ कैसे संभव होती हैं?
2: यही तो अभियंताओं की सबसे बड़ी चुनौती होती है।
1: कैसे?
2: यदि विमान बहुत भारी होगा तो उसकी गति और दक्षता प्रभावित होगी, यदि बहुत हल्का होगा तो मजबूती कम हो सकती है।
1: तो फिर समाधान क्या है?
2: देखो बेटा, विशेष सामग्रियों और उन्नत डिजाइन का उपयोग।
1: मतलब यहाँ मिधानी जैसी संस्थाओं का योगदान भी जुड़ जाता होगा।
2: हाँ, देखो कैसे देश की विभिन्न संस्थाएं मिलकर एक बड़े लक्ष्य को पूरा करती हैं।
1: दादू, जब कोई नया विमान पहली बार उड़ता है तब उसे कौन उड़ाता है?
2: परीक्षण पायलट।
1: क्या ये सामान्य उड़ान से अलग होता है?
2: हाँ बेटा, परीक्षण उड़ानों में विमान के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पायलटों को अत्यंत प्रशिक्षित और अनुभवी होना पड़ता है।
1: यानी वे केवल पायलट नहीं बल्कि उड़ान के वैज्ञानिक भी होते हैं।
2: ये सही कहा बेटा तुमने।
1: और उनकी रिपोर्ट के आधार पर सुधार किए जाते होंगे।
2: हाँ बेटा, विमान विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
1: और ADA ने इन सब को दिशा दी है।
2: बिल्कुल दी है।
1: दादू, आपने कहा था कि तेजस के बाद भी ADA की यात्रा जारी है, तो अब उसका अगला बड़ा सपना क्या है?
2: देखो बेटा, हर उपलब्धि एक नए लक्ष्य का मार्ग खोलती है। आज ADA भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और अधिक उन्नत विमानों की दिशा में कार्य कर रही है।
1: क्या उनमें से कोई विशेष परियोजना है?
2: हाँ हाँ, ऐसी ही एक महत्वपूर्ण परियोजना है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, अर्थात AMCA।
1: वाह, नाम सुनकर ही लग रहा है दादू कि ये कोई अत्याधुनिक विमान होगा।
2: इसका उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक उन्नत लड़ाकू विमान विकसित करना है बेटा।
1: मतलब विज्ञान और तकनीक की नई पीढ़ी का प्रतिनिधि।
2: हाँ, विमानन विज्ञान लगातार विकसित हो रहा है, इसलिए भविष्य के विमानों में नई सामग्रियां, आधुनिक प्रणालियां और उन्नत क्षमताएं शामिल की जाती हैं।
1: तो AMCA केवल एक विमान नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी है।
2: हाँ बेटा, ये उस सोच का प्रतीक है जिसमें देश केवल वर्तमान की नहीं आने वाले दशकों की आवश्यकताओं की भी तैयारी करता है।
1: दादू, अब तक हम वायुसेना के विमानों की बात कर रहे थे, लेकिन नौसेना का क्या?
2: नौसेना की आवश्यकताएं अलग होती है बेटा।
1: कैसे दादू?
2: देखो, समुद्र में विमान वाहक पोत पर काम करना सामान्य हवाई अड्डे पर काम करने से अधिक चुनौतीपूर्ण होता है।
1: क्यों?
2: क्योंकि जहाज लगातार गतिशील रहता है, समुद्री हवाएं, सीमित स्थान और विशेष परिचालन आवश्यकताएं होती हैं।
1: तो दादू,

0: केंद्र रहा है।
1: मतलब वहाँ केवल एक संस्था नहीं है?
0: हाँ, वहाँ अनेक वैज्ञानिक संस्थान है बेटा, अनुसंधान केंद्र हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं और विमानन से जुड़े संगठन कार्य करते हैं।
1: यानी अलग अलग विशेषज्ञ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं।
0: हाँ, इसे ही कभी कभी वैज्ञानिक या तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है।
1: जैसे एक बगीचे में अलग अलग पौधे मिलकर पूरा वातावरण बनाते हैं।
0: हाँ, हाँ बेटा, ये उदाहरण बहुत सुंदर है।
1: दादू, तो बेंगलुरु केवल एक शहर नहीं बल्कि विचारों और नवाचारों का भी संगम है।
0: हाँ बेटा।
1: दादू, आपने बताया था कि ADA का संबंध रक्षा अनुसंधान से भी है।
0: ADA रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करती है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO से जुड़ी हुई है।
1: तो क्या दोनों मिलकर काम करते हैं?
0: हाँ हाँ बेटा, किसी भी बड़ी परियोजना में अनेक संस्थाएं अपना अपना योगदान देती हैं।
1: मतलब कोई संस्था डिजाइन में योगदान देती है, कोई परीक्षण में और कोई अनुसंधान में।
0: हाँ, आधुनिक तकनीक इतनी जटिल होती है कि इसमें सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है बच्चे।
1: यानी सफलता का श्रेय केवल एक संस्था को नहीं बल्कि पूरी टीम को जाता होगा दादू।
0: हाँ बेटा, पूरी टीम को जाता है।
1: ये कार्यक्रम सुनने वाले बहुत से बच्चे और युवा भी होंगे जो हमें सुन रहे होंगे दादू।
0: होंगे ही।
1: अच्छा, ये बताइए कि यदि कोई छात्र विमान निर्माण या अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काम करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए?
0: अगर विज्ञान के क्षेत्र में जाना है, उसे जानना है, समझना है, तो सबसे पहले जिज्ञासु बनिए।
1: जिज्ञासु?
0: हर वैज्ञानिक यात्रा एक प्रश्न से शुरू होती है।
1: जैसे मेरे प्रश्न?
0: हाँ बेटा, विज्ञान में प्रश्न पूछना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत माना जाता है।
1: और फिर?
0: गणित विज्ञान, अभियांत्रिकी, कंप्यूटर विज्ञान और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में मेहनत करनी होती है।
1: यानी आज का जिज्ञासु विद्यार्थी कल का वैज्ञानिक बन सकता है?
0: क्यों नहीं बन सकता। देश की हर बड़ी उपलब्धि कभी किसी विद्यार्थी के सपने के रूप में ही शुरू हुई थी बेटा।
1: तो हो सकता है दादू कि आज ये कार्यक्रम सुन रहा कोई बच्चा भविष्य में किसी नए विमान का डिजाइन तैयार करे।
0: बिल्कुल तैयार करेगा बेटा, और शायद वो भारत की अगली बड़ी तकनीकी उपलब्धि का हिस्सा भी बने।
1: दादू, अब मैं एक बार फिर वही प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो मैंने मिधानी के बारे में पूछा था।
0: पूछो पूछो बेटा, पूछो।
1: वो ये दादू कि यदि ADA जैसी संस्था ना होती तो क्या फर्क पड़ता?
0: बहुत बड़ा फर्क पड़ता बेटा।
1: कैसे?
0: कल्पना करो, यदि किसी देश के पास अपनी विमानन डिजाइन क्षमता ना हो तो उसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए बाहरी तकनीकों पर निर्भर रहना पड़ेगा।
1: मतलब केवल विमान खरीदना ही पर्याप्त नहीं होता?
0: नहीं नहीं बेटा, तकनीकी ज्ञान, अनुसंधान क्षमता और डिजाइन कौशल भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं।
1: और ADA ने भारत को इसी दिशा में आगे बढ़ाया?
0: हाँ बेटा, इसने केवल परियोजनाओं का नेतृत्व नहीं किया बल्कि देश में विमानन अनुसंधान और विकास की क्षमता को भी बहुत मजबूत किया है।
1: यानी ये संस्था केवल विमान नहीं बनाती बल्कि ज्ञान भी विकसित करती है।
0: हाँ, और यही किसी भी विकसित राष्ट्र की वास्तविक शक्ति होती है।
1: दादू, आज मैंने जाना कि उड़ान केवल पंखों की कहानी नहीं होती।
0: तो फिर किसकी कहानी होती है?
1: दादू, ये विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, साहस और सामूहिक प्रयास की कहानी होती है।
0: लगता है आज की चर्चा का सार तुम्हें मिल गया बच्चे।
1: हाँ दादाजी, और ADA की कहानी बताती है कि जब कोई देश बड़े बड़े सपने देखने का साहस करता है ना, तो वे सपने एक दिन आकाश में उड़ान भी भरते हैं।
0: हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने, और यही भारत की वैज्ञानिक यात्रा का सबसे सुंदर संदेश है।
1: प्रिय श्रोताओं, आज के संक में हमने जाना कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA केवल लड़ाकू विमानों के विकास का संस्थान नहीं है बल्कि भारत की वैज्ञानिक दूरदृष्टि, आत्मनिर्भरता और नवाचार का एक सशक्त प्रतीक है। तेजस से लेकर AMCA और TEDBF जैसी भविष्य की परियोजनाओं तक ADA ने भारत को स्वदेशी विमान डिजाइन और विकास की दिशा में नई पहचान दी है।
0: और यदि आप भी विज्ञान, गणित, अभियांत्रिकी या अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखते हैं तो अपने जिज्ञासा को जीवित रखिए। कौन जाने आने वाले वर्षों में भारत के किसी नए विमान, किसी नई तकनीक या किसी नए वैज्ञानिक आविष्कार के पीछे आपका भी योगदान हो। इसी प्रेरक संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति।
1: अगले अंक में हम जानेंगे कि कैसे भारत के सैन्य उपग्रह धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर रहकर हमारी सीमाओं की निगरानी करते हैं, सुरक्षित संचार उपलब्ध कराते हैं और देश की सुरक्षा को नई शक्ति प्रदान करते हैं। श्रोताओं सुनते रहिए रेडियो नाटक देश के संस्थान। आज के कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना
0: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नीमा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार, मैं हूं भावना सोमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: दावा है हर आन हमारा, सारा हिंदुस्तान।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने आजाद हिंद।
1: नमस्कार मित्रों, आजाद हिंद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन। आप तो मुझे पहचानते हैं ना, मैं हूं इतिहास।
2: और मैं हूं तारीख। मेरा भी नमस्कार आप सभी आजाद हिंद के श्रोताओं को। इतिहास
1: जी,
2: मेरी तो एक ही जिज्ञासा रहती है, एक ही सवाल होता है
1: कि आज कौन सी शौर्य गाथा है।
2: जी बिल्कुल, है ना, बताइए ना।
1: जी, आज फिर बारी है बंगाल के क्रांतिकारियों की गौरव गाथा की। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में बंगाल और बंगाल के क्रांतिकारियों का कितना बड़ा योगदान है, ये तो आप और हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, पुलिन बिहारी दास और मास्टरदा, ऐसे कितने और भी नाम हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने योगदान से देश को आजादी दिलाई।
2: इतिहास
1: जी,
2: अभी भी आपने नहीं बताया कि वो कौन से क्रांतिवीर हैं जो हमारी आज की गौरव गाथा के नायक हैं।
1: जी, आपके साथ हमारे श्रोता भी जानना चाह रहे होंगे।
2: बिल्कुल,
1: तो आज हम बात करते हैं एक नहीं दो क्रांतिकारियों की, और वो हैं मृगेंद्र कुमार दत्त और रामकृष्ण रॉय।
2: जी हाँ,
1: 1930 का साल, पूरे देश में क्रांति की आग फैली हुई थी। हमारे राजनेता देशभक्त अपने अपने मोर्चों पर लगे हुए थे, और हर एक क्रांतिकारी, हर देशभक्त और हर भारतवासी की एक ही अभिलाषा थी, और वो थी भारत की आजादी।
2: आजादी पाने की इसी अभिलाषा ने बंगाल के क्रांतिकारियों में भी जोश भर दिया। बंगाल के बाकी हिस्सों की तरह मिदनापुर भी क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र था।
1: जी,
2: देश के बाकी हिस्सों की तरह मिदनापुर भी ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों का शिकार था।
1: मिदनापुर में उन दिनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे। भारतीय चाहते थे कि अपने देश का ही नागरिक वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने। मिदनापुर के क्रांतिकारियों ने प्रण किया कि हम मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तब तक मारते जाएंगे जब तक उस पद पर कोई भारतीय नियुक्त नहीं किया जाता। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इनकी बातों पर जरा भी गौर नहीं किया।

0: मिदनापुर के एक विद्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। उस प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेम्स पेड्डी को बुलाया गया। 7 अप्रैल 1931 को प्रदर्शनी का उद्घाटन करने शाम 7:30 बजे श्री जेम्स वहां आए। विद्यालय के कई कमरों में प्रदर्शनी लगाई गई थी।
1: विद्यालय के पहले कमरे में जेम्स पेड्डी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद प्रदर्शनी के बाकी हिस्सों को देखने के लिए वो दूसरे कमरे में पहुंचे। वे जैसे ही कमरे में घुसे, एक नौजवान ने रिवॉल्वर निकाली और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही वो वहां से भागे, एक दूसरे क्रांतिकारी ने उनका पीछा किया और उन पर लगातार गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज से पूरे विद्यालय में भगदड़ मच गई। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन के लिए कलकत्ता से खास डॉक्टर भी बुलवाए गए। डॉक्टर आए और ऑपरेशन से जेम्स पेड्डी के शरीर से एक गोली निकाली।
0: अगली सुबह एक ऑपरेशन और किया गया और उनके शरीर से एक और गोली निकाली गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हालत इसके बाद भी लगातार बिगड़ती गई और 8 अप्रैल 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। मिदनापुर के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों को मारने का जो प्रण किया था, उसकी पहली कड़ी में वे सफल रहे।
1: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेम्स पेड्डी की मौत से अंग्रेज सरकार बौखला गई, लेकिन क्रांतिकारियों के आगे वो झुके नहीं। जेम्स पेड्डी की जगह एक और अंग्रेज को इस पद पर नियुक्त किया गया और उनका नाम था रॉबर्ट डगलस।
0: रॉबर्ट डगलस ने मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम संभाल तो लिया, लेकिन वे शुरू से डरे हुए थे
1: जी।
0: उन्होंने अपने भाई और कुछ मित्रों को पत्र भी लिखे जिसमें उन्होंने इस डर का भी जिक्र किया। सरकार ने उनकी सुरक्षा के इंतजाम भी किए, लेकिन क्रांतिकारियों के इन धमकियों से सरकारी कामकाज रोका तो नहीं जा सकता था। 30 अप्रैल 1932 को मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग चल रही थी। श्री डगलस इस बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। मीटिंग में कई सदस्य हिस्सा ले रहे थे। मजिस्ट्रेट डगलस फाइल के कागजातों पर हस्ताक्षर भी करते जा रहे थे। इतने में दो नौजवान डगलस के कमरे में घुसे। दोनों ने एक साथ डगलस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक के बाद एक 8 गोलियां डगलस के शरीर में समा गई।
1: गोलियां चलाकर दोनों नौजवान भागे। पुलिस ने पीछा किया। उनमें से एक पुलिस की गोली से घायल होकर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारी का नाम था प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य। उसकी तलाशी ली गई और जेब से एक पर्चा निकला जिसमें लिखा था, हिजली जेल में कैदियों पर किए गए अमानवीय अत्याचारों का ये हल्का प्रतिरोध है। हमारे बलिदानों से अंग्रेज सरकार को ये सबक लेना चाहिए और भारतीयों को भी इन बलिदानों से जाग जाना चाहिए।
0: हिजली जेल में कैदियों पर 16 सितंबर 1931 की रात जेल के सिपाहियों ने मिलकर लाठियों से प्रहार किया और गोलियां चलाई, जिसमें संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर दत्त नाम के दो क्रांतिकारी मारे गए। इसी घटना के बारे में प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य ने पत्र में लिखा था जो उनकी जेब से बरामद किया गया था।
1: घायल डगलस को अस्पताल ले जाया गया। खड़गपुर से ऑपरेशन के लिए डॉक्टर भी बुलवाए गए, लेकिन डगलस को बचाया नहीं जा सका। प्रद्योत भट्टाचार्य को पुलिस ने बड़ी यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे साथी का नाम नहीं बताया।
0: प्रद्योत भट्टाचार्य पर विशेष अदालत में मुकदमा चला। उन्हें फांसी की सजा दी गई। 12 जनवरी 1933 की सुबह प्रद्योत भट्टाचार्य को फांसी दे दी गई।
1: रॉबर्ट डगलस की मृत्यु के बाद पीईजी बर्क को मिदनापुर का नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया। पिछले दो अधिकारियों की हत्या से नए अधिकारी बर्क घबराए हुए थे और उन्होंने अपनी हिफाजत के और भी कड़े इंतजाम किए थे।
0: 2 सितंबर 1933 को मिस्टर बर्ग की टीम टाउन क्लब और मोहम्मडन स्पोर्ट्स क्लब के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ। श्री बर्ग निर्धारित समय पर मैदान पहुंचे। उनके अंगरक्षक भी उनके साथ थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बर्ग मैदान में उतरे और खेलने लगे। जिस खिलाड़ी से गेंद छीनने के लिए वे आगे बढ़े, उस खिलाड़ी ने रिवॉल्वर निकालकर उन पर गोलियां चला दी। उन पर गोली चलाने वाले क्रांतिकारी का नाम था मृगेंद्र कुमार दत्त। उसके साथ खड़े दूसरे खिलाड़ी ने भी बर्ग पर गोली चला दी। गोली चलाने वाले इस दूसरे क्रांतिकारी का नाम था अनाथ बंधु पांजा। 6 गोलियां खाकर मजिस्ट्रेट बर्ग जमीन पर गिर पड़े और कुछ ही क्षणों में उनकी मौत हो गई।
1: पास में खड़े पुलिस अधिकारी ने मृगेंद्र को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और बर्ग के अंगरक्षकों ने उस पर गोली चला दी। क्रांतिकारी मृगेंद्र नीचे गिर पड़े और गिरफ्तार कर लिए गए।
0: दूसरे क्रांतिकारी अनाथ बंधु पांजा को रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर ने गोली मार दी और मैदान में ही उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन मृगेंद्रनाथ दत्त की मौत अस्पताल में हो गई।
1: इसी बीच खेल के मैदान को पुलिस ने घेर लिया। खेल को रोककर सभी दर्शकों की तलाशी ली गई। तलाशी के बाद 3 और क्रांतिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन क्रांतिकारियों में निर्मल जीवन घोष, ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण रॉय थे।
0: इन 3 पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण रॉय को 25 अक्टूबर और निर्मल जीवन घोष को 26 अक्टूबर 1934 को मिदनापुर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई।
1: अपने 3 अधिकारियों की मौत के बाद अंग्रेज सरकार को मिदनापुर के क्रांतिकारियों से आखिरकार हार माननी पड़ी और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर एक और भारतीय को ही चुना गया।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय।

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: थोम कोरिया की मौत। फरवरी 1623 की एक उमस भरी शाम को अम्बोइना के सुदूर द्वीप पर थोम कोरिया नामक एक 50 वर्षीय सैनिक का जीवन अपने हिंसक अंत की ओर बढ़ रहा था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे आधिकारिक तौर पर एक जापानी सैनिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन उसका नाम एक भूले हुए वतन और आधुनिक एशिया की अशांत समुद्री धाराओं से परिभाषित जीवन की गूंज समेटे हुए था। थोम का जन्म 1573 में जापान में नहीं बल्कि कोरिया में हुआ था। उसका जीवन संभवतः 1590 के दशक में तब तहस नहस हो गया जब जापानी सेनापति टोयोटोमी हिदेयोशी ने कोरियाई प्रायद्वीप पर क्रूर आक्रमण किया। जापानी सामंतों द्वारा हिराडो बंदरगाह पर लाए गए सैकड़ों कैदियों में युवा थोम भी शामिल था। क्यूशू की महानगरीय दुनिया में कैदी अक्सर निवासी बन जाते थे और पूर्व दुश्मन निहोनमाजी जापानी बस्तियों में नया जीवन तलाशते थे। अधेड़ उम्र तक पहुंचते पहुंचते थोम ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था और एक यूरोपीय कंपनी राज्य की सेवा में मर्सनरी के रूप में एक स्थिर वेतन की तलाश करने लगा। थोम को अवसर तब मिला जब डच कंपनी, जो हमेशा सैनिकों की कमी से जूझती थी, उसने सीधे जापान से सैनिकों की भर्ती का एक महत्वाकांक्षी प्रयोग शुरू किया। डच अधिकारियों का मानना था कि जापानी एक विशेष मार्शल रेस यानी लड़ाकू प्रजाति थे। कंपनी की नज़र में थोम की वास्तविक जातीयता अप्रासंगिक थी। चूंकि उसे एक जापानी बंदरगाह में भर्ती किया गया था, इसलिए उसे एक पेशेवर जापानी सैनिक के रूप में ही भेजा गया। भर्ती के ये अनुबंध अत्यंत कठोर थे। थोम ने संभवतः जापानी लिपि में अनुवादित 3 साल के कठोर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें मौत की सजा के डर से डच अधिकारियों की हर बात मानने का संकल्प लिया गया था। इन समझौतों की एक खास बात सामूहिक दंड थी। यदि कोई सैनिक भागता या विद्रोह करता तो VOC जापान में मौजूद उसके माता पिता, पत्नी और बच्चों को सजा देने का अधिकार रखती थी। ये प्रयोग अम्बोइना साजिश ट्रायल के रूप में एक दुखद और डरावने मोड़ पर समाप्त हुआ। संदेह तब शुरू हुआ जब शिचिजो नामक एक साथी सैनिक ने डच संतरी से निकले के पहले स्टेशन के बारे में कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ लिए। यातना के असहनीय दबाव में शिचिजो और अन्य लोगों ने अंग्रेजों के लिए किला हथियाने की एक बड़ी साजिश का कबूलनामा दे दिया। थोम कोरिया भी इस उन्माद की चपेट में आ गया। उसे 1623 में 9 अन्य जापानी सैनिकों और 10 अंग्रेज व्यापारियों के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। उसका जीवन संवादात्मक प्रभुत्व यानी इंटरेक्टिव डोमिनेंस के उस वैश्विक युग का एक ज्वलंत प्रमाण है जहां एक कोरियाई लड़का जापानियों द्वारा बंदी बनाया जा सकता था और एक डच सैनिक के रूप में मर सकता था।
2: नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रजा मुराद और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

रेडियो रिपोर्ट में एक बार फिर से हम आपको लिए चल रहे हैं भोपाल के रविंद्र भवन में, जहां 29 अगस्त से 4 सितंबर तक रासलीला समारोह का आयोजन किया गया है।

0: आइए आपको लिए चलते हैं इस समारोह के चौथे दिन में। यह है वासुकी फ्यूजन बैंड की प्रस्तुति।
1: भोपाल की इस पावन धरती पर आज की इस सुरीली शाम का पहला सुर समर्पित है उस देव के नाम जिनके स्मरण मात्र से ही हर विघ्न दूर हो जाते हैं, जिनके हाथ में आशीर्वाद, जिनके नाम में मंगल ही मंगल है। प्रथम पूज्य श्री गणेश महाराज, भोपाल वालों, आज एक ऐसी आगाज गणपति बप्पा मोरिया की हो जानी चाहिए जो स्वयं गणपति महाराज हम सभी के बीच उपस्थित हुए।
2: तो आइए सभी मिलके बोलिए गणपति बप्पा
3: मोरिया,
2: मंगल मूर्ति
3: मोरिया।
2: तो ये जोश में ना थोड़ी सी कमी है, मैं चाहता हूँ एक बार फिर से मिलके हम लोग साथ में जयकारा लगाएंगे, गणपति बप्पा
3: मोरिया,
2: मंगल मूर्ति
3: मोरिया।
2: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सो वासुकी फ्यूजन लाइव आप सभी के सामने पेश है और आप लोग तालियों के साथ साथ दे सकते हैं। क्या बात है,

0: गजानन महाराज की।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हौसला अफजाई के लिए। और तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कलाकार तालियों का ही भूखा है, और आपसे ही कलाकार है, आपकी एनर्जी फ्लो होगी तभी हम लोग आपसे कनेक्ट भी कर पाएंगे। आगे चलते हैं।
0: तो आइए अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसमें थोड़ी शरारत भी है, थोड़ी मिठास भी और एक खूबसूरत सा अंदाज भी। तो तालियों के साथ आप सभी तैयार हो जाइए एक बार प्रेम से।

अच्छा मैं चाहता हूँ आप लोग गाएंगे एक बार प्लीज, साथ में गाएंगे आप सभी लोग। जो है मधुनैनो, क्या बात है, जिसकी ब्रिज की हर बाला वो, क्या बात है, कितनी सुरीली ऑडियंस है, क्या बात है, धन्य हो गए हम लोग यहाँ पे आके। एक बार साथ में वो

ये थी रेडियो रिपोर्ट रासलीला समारोह के चौथे दिन की। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। वक्त है परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा।

रविंद्र भवन में चल रहे रासलीला समारोह में बुधवार की शाम गोवर्धन लीला और रास के नाम रही। मथुरा से आए माधव आचार्य के निर्देशन में कलाकारों ने ब्रज बोली में कृष्ण की बाल लीलाओं को जीवंत किया। गोवर्धन लीला में देखा कि ब्रजवासी हर साल वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते थे। बालकृष्ण ने समझाया कि उनके जीवन और गायों का आधार प्रकृति और गोवर्धन पर्वत है, इसलिए इंद्र की बजाय गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। बात मान ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा की। इससे नाराज इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी तूफान भेज दिया। संकट में घिरे ब्रजवासियों और पशुओं की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिनों तक पर्वत की छाओं में ब्रजवासी और उनके पशु सुरक्षित रहे। अंत में इंद्र का अहंकार भंग हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। इसके बाद श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान और गोपियों के प्रेम को रास में दर्शाया गया।

रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और विश्व रंग फाउंडेशन की ओर से 4 दिनों का टैगोर नाट्य महोत्सव 6 से 9 सितंबर तक रविन्द्र भवन में आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव के तहत रंग संगीत, साहित्यिक परिचर्चा, समकालीन कथाओं के नाट्य रूपांतरण समेत अलग अलग रंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। महोत्सव का उद्देश्य रंग कला और साहित्य के माध्यम से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।

चिल्ड्रंस थिएटर एकेडमी द्वारा पद्मश्री बीवी कारंत की स्मृति में 1 सितंबर 2026 को अर्घ्य प्रेक्षागृह में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीवी कारंत भारत भवन रंगमंडल और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रहे हैं तथा उन्हें मध्य प्रदेश शासन की कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। कार्यक्रम में अकादमी द्वारा पहले मंचित किए गए नाटकों का नाट्य संगीत प्रस्तुत किया गया। इनमें दूध का ग्लास, सुदामा मुर्गे का ब्याह, पंचरात्र, भूगोल राजा का खगोल राजा का, टिम्बक टू छुटकी गिलहरी और रैदास जैसे नाटक शामिल रहे।

मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं पर आधारित प्रस्तुतियां भी इस दौरान दी गईं। ये सभी नाटक समाज की हकीकत को बयां करते हैं, अलग अलग पहलुओं को उजागर करते हुए इन्हें लिखा गया। वहीं कलाकारों ने इनके मंचन के जरिए उसे जीवंत किया, अभिनय के जरिए सामाजिक मुद्दे को उठाया गया।

पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान में हिंदी माह का शुभारंभ हुआ। जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधि अपनी भाषा में बात करते हैं, वैसे ही सम्मान हमें भी हिंदी को देना चाहिए। ये विचार, ये उद्गार वहाँ प्रस्तुत किए गए। NCERT द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के प्रयास को भी सराहा गया।

संगीत कार्यक्रम गीत गुंजन 5 सितंबर को रविंद्र भवन के अंजनी सभागार में शाम 5 बजे से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में भोपाल के 24 गायक सदाबहार फिल्मी गीतों की प्रस्तुति देंगे।

0: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: पिछली कड़ी में आपने जाना कि किस तरह स्वामी जी को शिकागो सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति मिली। वे कुछ दिन ही श्री हेल के घर ठहरे और फिर श्री लियोन के घर रहने चले गए, जहां धर्म सभा में भाग लेने आए अनेक प्रतिभागी ठहरे हुए थे। श्री लियोन के घर पर वे उनसे काफी घनिष्ठ हो गए थे, विशेषता लियोन परिवार की पोत्री कार्लिनिया कोंगर के साथ, जो उस वक्त छोटी सी बालिका थी। उन्होंने अपने स्मरणों में उन दिनों की ढेर सारी बातें लिखी है। कॉर्नेलिया के ही विवरण से हमें मालूम होता है कि एक शाम स्वामी जी उस परिवार के साथ एक संगीत समारोह में गए थे। वे लिखती हैं,
1: एक शुक्रवार के दिन शाम को मेरी माँ उन्हें सिंफनी कंसर्ट सुनवाने ले गई, जो उन्हें जीवन में पहले कभी सुनने को नहीं मिला था। उन्होंने अत्यंत मनोयोग के साथ सुना, परंतु उनका सिर थोड़े हास्यास्पद भाव से एक ओर झुका रहा। अंत में माँ ने पूछा, आपको पसंद तो आया ना? उन्होंने कहा, बहुत अच्छा लगा। तो भी माँ को लगा कि वे खुले दिल से नहीं बोल रहे हैं। अतः उन्होंने पूछा, आप क्या सोच रहे हैं स्वामी जी?
2: पहली बात जो मेरी समझ में नहीं आती वो ये है कि कार्य सूची में ऐसा क्यों कहा गया है कि शनिवार की संध्या को भी ठीक यही कार्यक्रम दोहराया जाएगा। देखिए, भारत में प्रातःकाल एक तरह का संगीत होता है, दोपहर का संगीत बिल्कुल अलग प्रकार का होता है, और संध्या के सुर भी पूर्णतः भिन्न किस्म के होते हैं। अतः वो रात हो जाने पर आपके कानों में बेसुरा लगेगा। दूसरी चीज जो मुझे विचित्र लगती है वो है संगीत में मूर्छना का भाव तथा सुरों के बीच बड़ा अंतराल था। आप मुझे जो स्वादिष्ट स्विस पनीर खाने को देती हैं, उसी के समान ये भी मुझे छिद्रों से भरा हुआ लगा।
0: है ना मजेदार उपमा? स्वामी जी संगीत के अच्छे ज्ञाता तथा स्पष्टवादी थे, इसलिए उनके आश्रयदात्री को भी उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया था। कॉर्नेलिया आगे हमें और कई जानकारियां देती हैं, जैसे,
1: जब उन्होंने व्याख्यान देने प्रारंभ किए तो लोग उन्हें उनके भारतीय कार्य के लिए पैसे देने लगे, परंतु उनके पास कोई बटुआ न था, अतः उन्हें एक रुमाल में बांधकर एक छोटे गर्वीले शिशु के समान ले आते थे। घर में लाकर वे उसे संभाल कर रख देने के लिए नानी की गोद में डाल देते थे। नानी ने उसका विभिन्न सिक्कों के साथ परिचय कराया और ये भी सिखा दिया कि किस प्रकार उन्हें गिन गिन कर अलग ढेर के रूप में सजाया जाता है। उनके अमेरिकी श्रोतागण इतने दूर देश के लोगों की आनंद पूर्वक सहायता कर रहे थे, जिन्हें उन्होंने कभी देखा तक नहीं, और उनकी इस उदारता के बारे में सोचकर स्वामी जी भाव विभोर हो जाते।
0: अंततः दीर्घ प्रतीक्षा का अंत हुआ, धर्म सभा प्रारंभ होने का दिन आ गया। यह महासभा केवल धर्म महासभा ही ना था, कई विषयों का सम्मेलन था यह। आइए इस सम्मेलन के बारे में कुछ और तथ्यों को जानें, इसके आयोजकों तथा उद्देश्यों के बारे में भी जानें।
3: 400 वर्ष पूर्व कोलंबस ने स्पेन से यात्रा कर अमेरिका में पदार्पण किया था। इसी घटना की स्मृति में सन 1893 में शिकागो में जो वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन हुआ, उसका प्रमुख उद्देश्य था मनुष्य ने तब तक भौतिक जगत में जितने प्रकार से उन्नति की थी उन सब का एक साथ प्रदर्शन करना। उसमें पाश्चात्य संस्कृति के नमूनों को तो स्थान मिला ही था, साथ में अविकसित देशों की सांस्कृतिक झांकी भी वहां प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित की गई थी। तथापि ऐसा लगा कि मनोजगत में मानव ने जो उन्नति की है उसे भी प्रदर्शनी में स्थान मिलना चाहिए। सन 1889 में चार्ल्स कैरल बोनी के मन में आया कि विश्व के सभी देशों के प्रतिनिधियों को बुलाकर कुछ ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जाएं जिनमें मानवीय सभ्यता के साथ दृढ़ता पूर्वक जुड़े हुए विषयों पर चर्चा हो सके।
0: श्री बोनी एक प्रतिभावान तथा व्यवहारिक व्यक्ति थे। उनकी परिकल्पना का स्वागत हुआ। 30 अक्टूबर 1890 को वर्ल्ड कांग्रेस ऑक्सिलरी ऑफ कोलंबियन एक्सपोजिशन नामक एक कमेटी का गठन हुआ और बोनी उसके अध्यक्ष नियुक्त हुए। उसके अंतर्गत छोटी कमेटियों की संख्या 20 थी। 15 मई से 28 अक्टूबर 1893 के दौरान उन 20 प्रसंगों का अधिवेशन हुआ। इनमें सामाजिक प्रगति, समाचार पत्र, चिकित्सा तथा सर्जरी, कानून एवं समाज सुधार, अर्थशास्त्र और धर्म आदि विषय थे। इनमें धर्म महासभा ही सबसे महत्वपूर्ण थी और इसी ने जनता का ध्यान सर्वाधिक आकृष्ट किया था।
3: धर्म महासभा विश्व में पहली बार नहीं हो रही थी। बौद्ध कालीन भारत में अनेक धर्म सम्मेलन हुए थे, ईसाई देशों में भी सम्मेलन हुए थे। इस्लाम धर्म के इतिहास में भी ऐसे सम्मेलनों का जिक्र आता है, परंतु विश्व के धर्मों का एक ही मंच पर एकत्रित होकर सम्मेलन करने का ये पहला अवसर था। ऐसी कोई परिकल्पना ही अकल्पनीय थी। प्रारंभ में तो वह असंभव और मनुष्य की क्षमता के परे प्रतीत हुआ, परंतु क्योंकि वह कालखंड जड़वाद के प्राबल्य का दौर था। परंतु स्वामी जी को यह घटना देव निर्दिष्ट तथा अवश्यंभावी ही लगी। अमेरिका के लिए विदा होने से पूर्व उन्होंने स्वामी जी तुरियानंद से कहा था,
2: हरि भाई, धर्म महासभा मेरे लिए ही हो रही है। मेरा मन ऐसा ही कह रहा है, शीघ्र ही तुम्हें इसका प्रमाण देखने को मिलेगा।
0: स्वामी जी ने बाद में एक पत्र में लिखा था,
2: ईसाई धर्म अन्य धर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, यही प्रमाणित करने के लिए धर्म महासभा का आयोजन हुआ था। मुझे लगता है कि अन्य धर्मों का तमाशा बनाने के लिए ही धर्म महासभा बुलाई गई थी।
3: कुछ लोग सोच सकते हैं कि जिस महासभा ने स्वामी जी को जगत में परिचित करा दिया, उसके विरुद्ध ऐसी टीका करना उचित नहीं था। परंतु जिस प्रकार सभा का आयोजन तथा संचालन हुआ था, उसकी ओर गौर करने से समझ में आ जाएगा कि आयोजकों के मन में अन्य धर्मों के प्रति एक अश्रद्धा का भाव छिपा हुआ था और वे विश्वास करते थे कि महासभा में ईसाई धर्म की ही विजय होगी। परंतु वहां उदार मनोभाव रखने वालों की भी कमी नहीं थी। सभापति बोनी महोदय ही उनमें प्रमुख थे, परंतु आयोजन का समस्त अधिकार सर जॉन हेनरी बैरोज के हाथों में था और वे अपनी संकीर्ण मनोवृत्ति के ऊपर उठ ना सके थे। उन्होंने कहा था,
4: विश्वास है कि ईसाई धर्म अन्य धर्मों का स्थान ले लेगा, क्योंकि बाकी धर्मों में जो सच है वे सभी तो ईसाई धर्म में है ही। इसमें और भी अधिक सच है, क्योंकि यही धर्म एक अद्वितीय मुक्तिदाता भगवान के बारे में बोलता है। यह सच है कि प्रकाश के साथ अंधकार की मित्रता संभव नहीं, परंतु अल्प आलोक के साथ उसका सहचर्य अवश्य हो सकता है। ऐसा कोई भी देश नहीं जहां भगवान ने अपने संदेश का प्रचार किया हो और जिन्होंने क्रास के पूर्ण आलोक की उपलब्धि कर ली है, उन्हें चाहिए कि वे अल्प आलोक में भटकने वाले के प्रति भ्रात भाव का पोषण करें।
0: बाद में महासभा का जो विवरण प्रस्तुत हुआ, उसमें ईसाइयों के द्वारा असहमति ही दिख पड़ती थी। उदार मत कम ही दिखता था। सामान्य जन उदार मतावलंबी दिखे, पर धर्माचार्यों का रवैया कट्टर था। वे विश्व भर में ईसाई धर्म प्रचार का सपना देख रहे थे। इसके बावजूद साधारण अमरीकी जनता ने उदारता दिखाते हुए इस महासभा के लिए धन आदि से सहायता की थी और आग्रह पूर्वक इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
3: इस धर्म महासभा में समस्त विश्व से लोग एकत्रित हुए थे, अतः वे विश्व धर्म महासभा कहलाया। इस महासभा का एक और विशेष परिणाम उल्लेखनीय है कि इसके द्वारा पश्चिम की दृष्टि में प्राच्य धर्मों की मर्यादा काफी बढ़ गई थी। महासभा की विज्ञान शाखा के अध्यक्ष श्री मार्विन मैरी स्नेल ने लिखा है,
5: इसकी एक सबसे बड़ी देन तो ये है कि इसने ईसाई समुदाय को और विशेषकर अमेरिकी जनता को ये अमूल्य शिक्षा दी है। कि ईसाई धर्म की तुलना में उससे भी अधिक सम्मानीय और भी अनेक धर्म है जो दार्शनिक चिंतन की गहनता, आध्यात्मिक स्वाधीन विचारधारा के तेज और मानवीय सहानुभूति के विस्तार में ईसाई धर्म को भी पीछे छोड़ जाते हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध, यहूदी, कन्फ्यूशियस, शिंतो, इस्लाम और फारसी ये 8 गैर ईसाई धर्म महासभा की चर्चाओं में उपस्थित थे।
0: 11 सितंबर 1893 को सोमवार के दिन प्रातःकाल शिकागो इंस्टीट्यूट में महासभा का अधिवेशन शुरू हुआ। विश्व मेला क्षेत्र में आर्ट पैलेस नाम का जो एक अस्थाई विराट भवन बना था वह उससे भिन्न था। ललित कलाओं की स्थायी प्रदर्शनी के रूप में परिकल्पित यह आर्ट इंस्टीट्यूट मिशिगन एवेन्यू पर स्थित था और कला के नमूनों से तब तक सज्जित नहीं हुआ था। इसी के प्रकांड कक्षों में अनेक समितियों के अधिवेशन हुए थे। इसी भवन में हॉल ऑफ कोलंबस में धर्म महासभा का अधिवेशन हुआ था।
3: ठीक 10 बजे वहां उपस्थित 10 धर्म मतों के नाम पर 10 बार घंटा ध्वनि हुई। सभापति बोनी के अनुसार ये प्रमुख धर्म थे यहूदी, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, ताओ, कन्फ्यूशियस, शिंटो, पारसी, कैथोलिक, ग्रीक चर्च और प्रोटेस्टेंट धर्म। उस समय हॉल में 4,000 से भी ज्यादा श्रोता उपस्थित थे। द्वार पर भी बहुत से लोग भीड़ किए खड़े थे, पर लोग इतने शांत थे कि कहते हैं उसी समय एक छोटी सी चिड़िया खुली खिड़की से घुसकर मंच के ऊपर से होकर उड़ गई थी और उसके पंखों की आवाज तक सुनाई दे रही थी।
0: हॉल में बने हुए मंच की लंबाई लगभग 100 फीट तथा चौड़ाई 15 फीट थी। मंच के पीछे हिब्रू तथा जापानी भाषा की 2 उक्तियां लटक रही थीं। मंच पर एक दूसरे से लगभग 40 फीट की दूरी पर 2 ग्रीक दार्शनिकों की मूर्तियां स्थापित थी। दोनों दार्शनिकों के बीच एक अद्भुत लोह निर्मित सिंहासन था जिस पर अमेरिका के कैथोलिक संप्रदाय के प्रधान धर्माधिकारी कार्डिनल गिबिन्स बैठे थे। सिंहासन के दोनों ओर प्रतिनिधियों तथा कार्यकर्ताओं के लिए 3 कतारों में लकड़ी की 30-30 साधारण कुर्सियां लगाई गई थी। वहां एक सूचना भी लटकाई गई थी कि नीचे संवाददाताओं के लिए निर्दिष्ट स्थान में बिना अनुमति के प्रवेश निषिद्ध है। यह जरूरी इसलिए था क्योंकि विवेकानंद आदि के वस्त्र स्पर्श करने की इच्छा से मंच के पास श्रोताओं की भीड़ लग जाती थी।
3: ठीक 10 बजे घंटा ध्वनि के साथ प्रतिनिधिगण हॉल में प्रविष्ट होकर मंच की ओर अग्रसर हुए। आगे आगे सभापति बोनी और कार्डिनल गिबिन्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। उनके पीछे थी मेले की महिला कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षा श्रीमती पॉटर पॉमर तथा उपाध्यक्षा श्रीमती चार्ल्स सी हेनेरोटिन। उनके पीछे प्रतिनिधिगण पंक्तिबद्ध होकर हॉल के मध्यवर्ती पथ पर तुमुल हर्ष ध्वनि के बीच अग्रसर होकर मंच पर आसीन हुए। लोह सिंहासन पर आसीन गिबिन्स के दाहिनी ओर बैठे सफेद वस्त्रधारी 5 चीनी धर्मयाजक और बाईं ओर बैठे काले वस्त्रों से सज्जित ग्रीक चर्च के उच्चाधिकारी गण। बाकी सब विभिन्न रंगों के कपड़ों में थे। विवेकानंद अपनी गैरिक अलखला और पगड़ी पहने कुर्सी नंबर 21 पर थे।
0: अचानक ही ऑर्गन बज उठा और सब मिलकर प्रार्थना करने लगे। उसके बाद महासभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई। 17 दिनों तक सुबह, दोपहर और शाम को 3 सत्र होते थे। श्रोताओं की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही थी। 4th दिन भीड़ इतनी बढ़ी कि पास का हॉल ऑफ वॉशिंगटन भी खोल दिया गया और वहां मुख्य हॉल के समान ही समस्त विषय को दोहराया जाने लगा।
3: 5वें दिन विज्ञान शाखा का कार्य आरंभ हुआ और श्रोतागण भी सामान्य और विज्ञान दोनों भागों में बट गए। विज्ञान शाखा में भी स्वामी जी को अक्सर व्याख्यान देने जाना पड़ता था। जिस दिन वे विज्ञान सभा में बोलते उस दिन वहां भीड़ ज्यादा होती थी और कोलंबस हॉल की भीड़ हल्की हो जाया करती थी।
0: प्रथम दिन प्रतिनिधियों का सादर स्वागत हुआ। उस दिन कुल 7 ही व्याख्यान हो पाए। प्रथम वक्ता जानतो के आर्च बिशप थे। उन्होंने कहा, समस्त मानव जाति के श्रष्टा एक हैं, अतः एक भगवान ही सबके पिता हैं। उसी दिन भारत के ब्रह्म समाज के प्रतिनिधि श्री प्रताप चंद्र मजूमदार भी बोले। वे 10 वर्ष पूर्व ही अमेरिका आकर के ख्याति अर्जित कर चुके थे। वे प्राच्य देशे ईशा नामक ग्रंथ के लेखक के रूप में वहां परिचित थे। उन्हें भाषण के उपरांत प्रशंसा मिली। फिर चीन के प्रतिनिधि पुंग क्वांग यूं का व्याख्यान हुआ।
3: सभा की कार्यवाही चल रही थी। इधर स्वामी जी मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि इस विराट विद्वत समुदाय के सम्मुख भारत का संदेश रखने की योग्य शक्ति उन्हें मिले। उन्हें कई बार बुलाया गया, परंतु हर बार उन्होंने कहा, नहीं, अभी नहीं। अध्यक्ष के मन में संदेह हुआ कि आखिर वे भाषण देना चाहते भी हैं या नहीं। स्वामी जी ने अपने समय के मनोभाव का वर्णन करते हुए 2 अक्टूबर को प्राध्यापक राइट को पत्र में लिखा था,
2: विश्व के बड़े बड़े विचारकों तथा वक्ताओं की उस सभा के सम्मुख खड़े होने और बोलने में पहले तो मुझे बड़ा भय लग रहा था। महासभा में मैं बिल्कुल आखिरी समय में पहुंचा और वो भी बिना किसी तैयारी के। ईश्वर ने मुझे शक्ति दी।
0: आला सिंगा को लिखे उनके पत्र में और भी विशद विवरण मिलता है। उन्होंने लिखा था,
2: महासभा के उद्घाटन वाले दिन सुबह हम लोग आर्ट पैलेस नामक भवन में एकत्र हुए। सभी राष्ट्रों के लोग वहाँ आए हुए थे। भारत वर्ष से ब्रह्म समाज के प्रतिनिधि प्रताप चंद्र मजूमदार महाशय थे। बंबई से नगरकर आए थे। जैन धर्म के प्रतिनिधि वीरचंद्र गांधी थे और थियोसफी के प्रतिनिधि श्रीमती एनी बेसेंट तथा चक्रवर्ती थे। इनमें मजूमदार मेरे पुराने मित्र और चक्रवर्ती मेरे नाम से परिचित थे। बड़े शानदार जुलूस के बाद हम लोग मंच पर बिठाए गए। कल्पना करो, नीचे एक बड़ा हॉल और ऊपर एक बहुत बड़ी गैलरी, जिनमें इस देश के चुने हुए 6-7 हजार सुसंस्कृत नर नारी खचाखच भरे हैं तथा मंच पर संसार के सभी राष्ट्रों के बड़े बड़े विद्वान एकत्र हैं। और मुझे, जिसने अब तक कभी सार्वजनिक सभाओं में भाषण नहीं दिया, इस विराट जन समुदाय के समक्ष भाषण देना होगा। बड़े समारोह के साथ संगीत और भाषणों से सभा का उद्घाटन हुआ। तदुपरांत एक एक कर सभा में आए प्रतिनिधियों का परिचय दिया गया और वे सामने आकर अपने व्याख्यान देने लगे। निसंदेह मेरा हृदय धड़क रहा था और जीव प्रायः सूख गई थी। मैं इतना घबराया हुआ था कि सवेरे बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। मजूमदार की वाक कला सुंदर रही, चक्रवर्ती की तो उससे भी सुंदर रही। खूब तालियां बजी। ये लोग अपने भाषण तैयार करके लाए थे। मैं अबोध था और बिना किसी तैयारी के आ पहुंचा था।
0: अपरांत में 4 और प्रतिनिधियों के लिखित भाषण हो जाने के बाद उन्हें स्वामी जी को बुलाया गया। उन्होंने लिखा है,
2: देवी सरस्वती को प्रणाम करके मैं आगे बढ़ा और डॉक्टर बैरोज ने मेरा परिचय दिया। मेरे गैरिक वस्त्रों के कारण श्रोताओं का ध्यान किंचित आकृष्ट हुआ था। अमेरिका वासियों को धन्यवाद। और भी 2 बातें कहकर मैंने एक छोटा सा व्याख्यान दिया। जब मैंने अमेरिका वासी भाइयों और बहनों कहते हुए सभा को संबोधित किया, तो इसके साथ ही 2 मिनट तक ऐसी घोर करतल ध्वनि हुई कि कानों में अंगुली देते ही बनी। तब मैंने बोलना आरंभ किया और जब मैं अपना वक्तव्य समाप्त करके बैठा, तो भावावेग से मानो मैं अवश हो गया था। अगले दिन सभी अखबारों में छपा कि मेरा भाषण ही उस दिन सर्वाधिक मर्मस्पर्शी बन पड़ा था। अतः पूरा अमेरिका मुझे जान गया। महान टीकाकार श्रीधर ने सत्य ही लिखा है, मूकम करोति वाचालम, अर्थात जिन प्रभु की कृपा गूंगे को भी धारा प्रवाह वक्ता बना देती है, उनकी जय हो। उसी दिन से मैं विख्यात हो गया और जिस दिन मैंने हिंदू धर्म पर अपनी वक्तता पढ़ी, उस दिन तो हॉल में इतनी भीड़ हुई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी।
0: श्रोताओं, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 11 सितंबर 1893 को शिकागो शहर के मिशन एवेन्यू पर स्थित हॉल ऑफ कोलंबस में दिए गए उस महान दुर्लभ भाषण के कुछ मुख्य अंश आपको सुनवाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के ही स्वर में। ध्यान रहे, ये दुर्लभ रिकॉर्डिंग लगभग 120 वर्ष पूर्व की है।
6: We now introduce you to Swami Vivekananda from India and request him to address us. Swami Vivekananda?
7: Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I report to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come. And I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal.
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उस महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी के स्वर में उस दुर्लभ रिकॉर्डिंग के मुख्य अंश जो उन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो शहर के मिशन एवेन्यू पर स्थित हॉल ऑफ कोलंबस में विश्व धर्म महासभा के प्रथम वक्तव्य के रूप में दिया था। स्वामी जी के व्याख्यान के आरंभ में हुए हर्ष ध्वनि के विषय में डॉक्टर बैरोस ने लिखा है,
4: श्रीयुत विवेकानंद ने जब श्रोताओं को बहनों और भाइयों को कहकर संबोधित किया था तो उस समय एक तुमुल करतल ध्वनि उठकर कई मिनट तक जारी रही।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: मुकाबला फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
4: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
3: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: कुछ यादें उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: जो लौट के घर ना आए।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अजय सिंह टिपानिया का गायन, उसके बाद क्लेरनेट वादन की प्रस्तुति दी जाएगी डॉक्टर पंडित नरसिम्हा वड़ावाटी और साथियों द्वारा, और अंत में गायन प्रस्तुत किया जाएगा आरती अंकलीकर टिकेकर का। तो आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं अजय सिंह टिपानिया का गायन।

इस तरह से प्रेम की प्यास जब लगती है तो हम उस अमी का पान करें। एक भजन में सद्गुरु कबीर इस तरह से कहते हैं,

सब आप लोगों की एक मोहब्बत से हम बजाए, आप लोग प्यार से सुन रहे हैं, हमारे अंदर थोड़ा क्रिएशन हो गए। अभी नेक्स्ट एक धुन बजाएंगे पीलू का मध्यलय में।

0: अभी आप डॉक्टर पंडित नरसिम्हा वड़ावाटी तथा साथी बेंगलोर द्वारा क्लेरिनेट वादन का आनंद ले रहे थे।
1: आइए आज की सभा के दूसरे क्षण में हम कुछ ही क्षणों बाद आनंद लें। कबीर गायन की एक और शैली का और हमारे बीच कुछ ही क्षणों में मंच पर हाजिर होंगी विश्वख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायिका सुश्री आरती अंकलीकर टिकेकर।

तो श्रोताओं, अजय सिंह टिपानिया के गायन के बाद अब बारी है क्लेरनेट वादन की, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर पंडित नरसिम्हा वड़ावाटी और उनके साथ साथी कलाकार।

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम से। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रेम पत्र, एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मन में मीठी तरंगे दौड़ पड़ती हैं। ऐसा लगता है मानो सरगम के सातों सुर मन की वीणा पर एक साथ झनक उठे हों, जैसे बसंत ऋतु की कोयल ने तड़प कर कुहू भरी हो, जैसे पपीहे ने बादलों को आवाज दी हो, और जैसे सूखी धरती पर मेघ बरस पड़े हों। होता तो यह एक कागज का टुकड़ा ही है, पर इसे खोलते हुए हाथ कांपने लगते हैं। हर एक अक्षर आवाहन सा करता हुआ लगता है। न जाने किस लोक की महक समेटे रहता है यह कागज का टुकड़ा। इस दुनिया के किसी भी सुगंध में वो पागलपन कहां, वो मादकता कहां। हम में से बहुतेरे लोगों ने अपनी किशोर अवस्था में यह पागलपन अवश्य किया होगा, और क्यों ना करें। अजी कच्ची उम्र का यह विहल आनंद जीवन में दोबारा भला कहां मिलने वाला है। पर कुछ ऐसे भोले सनम भी होते हैं जिन्हें प्रेम पत्र लिखना उनके लिए पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। वो गणित के कठिन से कठिन सवालों को चुटकियों में हल कर लेते हैं, पर दिल के कागज पर प्रेम की यह पहेली हल करने में मात खा जाते हैं। तो लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है एक ऐसे ही भोले सनम की दास्तां, जो प्रेम पत्र लिखने की ऐसी कोशिश करता है कि उसमें वो फंसता ही चला जाता है।

0: मुझसे प्यार है।
1: क्या बात है, आज मेम साहब का मिजाज बड़ा आशिकाना हो रहा है।
0: क्यों, क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ?
1: अरे नहीं, अभी तो हजार जाने तुम पे कुर्बान। एक बार बन समर कर निकल जाओ कहीं ना, तो मनचलों के सीने पे सांप लौट जाए। और क्या?
0: नहीं नहीं, कुछ और कहो ना मेरी तारीफ में।
1: क्या सूझी थी मुझे जो मैंने आग में हाथ डाल।
0: क्या कहा, जरा जोर से कहना तो।
1: अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अगर मांग में सिंदूर न भरो तुम, तो न जाने कितने लड़के तुम्हें प्रेम पत्र लिखने के लिए कलम में स्याही के बजाय अपनो लहू डाल दे।
0: सच? मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा, पर ये बताओ जी, आज तक तुमने क्यों नहीं लिखा मुझे कोई प्रेम पत्र?
1: क्या प्रेम पत्र? मैं? अरे जिंदगी में कभी जो काम नहीं किया वो काम मैं अब।
0: जिंदगी में शादी भी तो नहीं किया थे तुम? हर काम इंसान कभी ना कभी पहली बार ही करता है।
1: हाँ?
0: और सच पूछो तो ऐसे इंसान से लव लेटर पाने का मजा ही कुछ और है। उसके लव लेटर की भला क्या अहमियत, जो दुकान के कैश मेमो की तरह हमेशा ही काटता रहता है। हाँ जी, अब तो तुम्हें मेरे लिए एक प्रेम पत्र लिखना ही होगा। और वो जो खूबियां अभी अभी तुमने बताई थी ना मेरी, उनकी लिस्ट और बढ़ानी होगी।
1: मगर मेम साहब, ऐसे कैसे लिखा जा सकता है प्रेम पत्र? इसके लिए जुदाई होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, मन में कसक होनी चाहिए, पर आप तो हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहती हैं। ऐसे में वो सेंटीमेंट्स कहां से लाऊं मैं?
0: तो ठीक है जी, उसका भी इंतजाम किए देती हूँ मैं। रिंकू को लेकर मायके चली जाती हूँ।
1: क्या?
0: और क्या, फिर जब आप प्रेम पत्र लिखकर गुहार लगाएंगे ना, तभी लौटूंगी मैं। पपीहे की तरह पीऊ पीऊ करना, तभी झलक दिखलाएगी आपकी ये सावन की घटा।
1: अरे अरे, ऐसा जुल्म ना करिए श्रीमती जी। लीजिए, मैं आपके जाए बिना ही आपको प्रेम पत्र लिख देता हूँ। लिख देता हूँ कि मुझे आपसे बेहद बे इंतहा मोहब्बत है। हाँ, मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। और ये लीजिए मेरी सिग्नेचर, नीरज वशिष्ठ। बिल्कुल पक्की रसीद है ये। अब तो मैटर सॉल्व हो गया ना।
0: वाह रे मेरे कारोबारी सनम, और वाह रे आपका प्रेम पत्र, जैसे किसी कंपनी का वारंटी कार्ड भर रहे हो। अरे दिल की डीलिंग बिजनेस की तरह नहीं की जाती है। जब आप सच्चे दिल से पूरी फीलिंग के साथ लिखेंगे ना, तभी ये कस्टमर आपकी बात पर यकीन करेगा। और ये फीलिंग मैं आपको देकर ही मानूंगी। अरे मैके की जर्नी अब मेरी फाइनल है। कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट इसमें अब दखल नहीं कर सकता है।
1: हे भगवान, आज सुबह सुबह किस गलत गली में घुस गया। त्रिया हट ने तो दशरथ की भी मिट्टी पलीत कर दी थी यार। त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु, इस मुसीबत से बाहर निकालो।
2: तो श्रोताओं, इस तरह से नीरज की धर्म पत्नी रितु त्रिया हट कर बैठती है कि उसका पति उसे प्रेम पत्र लिखे। शादी के 5 साल गुजर चुके हैं। पहाड़ी झरने की तरह गरजता प्यार तूफानी दौर से गुजर चुका है, और अब तो नदी सागर में समा चुकी है, जहां का पानी शांत व ठहरा हुआ है। रितु इस पानी को पहाड़ पर चढ़ाना चाहती है। नीरज की हालत खराब है, रितु उलाहने देती है। नीरज धीरज का परिचय देता है। एक तरफ तलवार थी तो दूसरी तरफ ढाल। अब सुनिए आगे क्या होता है उन दोनों की दास्तान।
0: सुनो जी, मम्मी का फोन आया है।
1: क्या?
0: उनका बीपी है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
1: अरे,
0: बोली है कि जल्दी आ जाओ।
1: क्या यार, अभी हाल तक तो सब ठीक था, और अब यकायक ये।
0: अरे यकायक ही तो सब होता है पति देव। अब देखो, यकायक ही मुझे मायके भी जाना पड़ेगा, पर मेरे पीछे मेरी उस ख्वाहिश का ध्यान जरूर रखना पति देव। नहीं तो अब मायका ही होगा मेरा परमानेंट ठिकाना। फिर ना कहना कि
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा जुल्म ना करो मेरी जान मुझ पर। आपके बिना तो मुझे एक पल भी पहाड़ लगता है यार। और आप कहती हैं कि
0: डिसीजन फाइनल है, जाना तो होगा ही, पर वापसी आप पर डिपेंड करती है।
1: कैसे?
0: जितनी जल्दी आपका प्रेम पत्र मुझे मिलेगा उतनी ही जल्दी मेरी रवानगी डलेगी वहाँ से।
1: क्या टेलीफोन से काम नहीं चलेगा?
0: हरगिज नहीं, रिटर्न एविडेंस बर्बल से ज्यादा पावरफुल होता है।
1: एसएमएस?
0: बिल्कुल नहीं, मुझे डिटेल्ड ब्यौरा चाहिए। मेरे बिना कैसा लगा तुम्हें, कैसे तुम्हारे दिन गुजरे, कैसी रातें गुजरी, कैसी नींद आई, और कितना याद किया तुमने मुझे। तुम्हारे पूरे एहसास चाहिए मुझे, मेरी यही वापसी की टिकट होंगे, समझे?
1: इतना कुछ लिखना होगा प्रेम पत्र में? ब्योरे वार दास्तान, वेरी डिफिकल्ट, हॉरिबल।
0: ताजमहल बनवाने से ज्यादा तो मुश्किल नहीं है।
1: अरे ताजमहल कोई शाहजहां ने अपने हाथों से थोड़े ही बनाया था यार, बादशाह सलामत थे, वो हुक्म दे दिया और बन गया ताजमहल। तुम कहो तो मैं भी किसी एक्सपर्ट से लेटर।
0: हे राम, कैसा जमाना आ गया है अब, प्रेम पत्र भी लिखवाने के लिए लोग एक्सपर्ट के पास जाना चाहते हैं। शेरो शायरी तो फीस चुकाकर मिल ही जाती है, और अब ये लव लेटर भी। वाह जी वाह। पर सुनो जी, मैं बता देती हूँ, कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी इस मामले में। अगर ब्लैक लिस्टेड हो गए ना आप, तो टेंडर भी भरने को नहीं मिलेगा, काम पूरा करने की बात ही छोड़िए। सुनो जी, अपना ख्याल रखना। और हाँ, सुबह जल्दी उठकर घूमने जरूर जाना, ताजी हवा खाना, पर नजर नीचे रखना। हाँ, और सुनो, नौकरानी को मैंने मना कर दिया है, जवान जहान है, क्या ठिकाना उसका।
1: क्या? अब घर का झाड़ू पोछा भी मैं करूंगा क्या, क्या, क्या, क्या?
0: अपनी इज्जत की हिफाजत करना अच्छे पति का धर्म है।
1: अरे यार, तुम्हारे अलावा मेरी इज्जत को भला और किससे खतरा हो सकता है? एक मिनट, ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हो रहा है।
0: जा तो मैं रही हूँ जी, पर मुझे ना बड़ी रुलाई छूट रही है, मन कर रहा है कि उतर पड़ूं गाड़ी से। सच तुम्हारे बिना रहने का सोचकर ही जी घबराने लगता है।
1: अरे तो उतर पड़ो, इतना प्यार हमारी आंखों में उमड़ रहा है, इसके आगे भी प्रेम पत्र की जरूरत लगती है क्या तुम्हें?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आज दिल से नहीं, दिमाग से काम लेने की जरूरत है। पक्का इरादा, कड़ा अनुशासन। रिंकू को भी मैं इसलिए साथ लेके जा रही हूँ जिससे तुम्हें तन्हाई शिद्दत से महसूस हो।
1: तुम औरतें तो यार इतनी दूर तक कैसे सोच लेती हो? आप, मैं तो सोच रहा था कि मेरा भार हल्का करने के लिए तुम रिंकू।
0: हाँ, और क्या, अरे भार हल्का ही तो हो रहा है तुम्हारा भाई, अकेले जन का काम रहेगा, चटपट निपटा लेना तुम। और फिर तन्हा बैठ कर लव लेटर लिखना, और जब वो लव लेटर पूरा हो जाए ना तो मुझे पोस्ट कर देना।
1: सफर में अपना ख्याल रखना, पहुंचते ही फोन करना।
3: पापा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।
0: गाड़ी तो छोड़ो, स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी छोड़ो।
1: अरे बेटा, रिंकू मम्मी को तंग ना करना, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करना।
0: बाय
3: बाय।
2: रितु के जाने के बाद नीरज के एक दो दिन तो बड़ी मस्ती में गुजरे। जब चाहो खाओ, जब चाहो सो, जब चाहो उठो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रितु होती तो कहती, यह ना करो, यह ना खाओ, अब टीवी बंद कर दो, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। कच्ची नींद में उठा देती और कहती, फ्रेश होकर टहलने निकलो। जिंदगी जैसे जेल मैनुअल पर चल रही थी, पर अब आजादी की हवा में सांस लेने का मौका मिला था। लेकिन नहीं, अजी अकेलेपन की आजादी डराने वाली थी। भला शमशान की शांति भी किसी को अच्छी लगती है? नीरज को आटे दाल का भाव याद आ रहा था। अब सुनिए आगे की दास्तान।
1: यार, चाय की पत्ती कहाँ रखी है? पानी उबला जा रहा है, ये औरतें बिना चाय चीजें ना जाने कहाँ कहाँ रखती है। आया आया भाई आया, तुम्हें भी यार अभी बजना था। हेलो, अच्छा अब जाके फोन करने की फुर्सत मिली मैम साहब को। धन्यवाद मेरे जो आपको मेरी याद आई। क्या शेर? नहीं नहीं, सवा शेर कहिए जनाब। क्या क्या कह रही हैं? यही काबिलियत में लव लेटर लिखने में भी? अरे क्या यार, मेरी अग्नि परीक्षा क्यों ले रही हैं पत्नी जी? हैं? नहीं, मैं पार ना कर पाऊंगा इसे। क्या कहती हैं? उसके बिना आप नहीं आएंगे, करना ही पड़ेगा। अरे यार, हम पतियों के लिए तो होम मिनिस्ट्री ही सुप्रीम कोर्ट है, कोई मर्सी अपील भी नहीं होती इसके फैसले पर। ओके, ठीक है ठीक है, करता हूँ यार, करता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, बाय बाय बाय बाय।
2: रितु को गए हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। नीरज समझ चुका था कि उसकी मोहम सी रितु अब आयरन लेडी बन चुकी है, जिसकी निगाह अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर थी, और वो लक्ष्य था प्रेम पत्र। प्रेम पत्र लिखना ही पड़ेगा, कोशिश करता है नीरज, और वो पूरा ब्योरा लिखने बैठ जाता है। आप भी सुनिए क्या लिखा उसने अपने प्रेम पत्र में।
1: मेरी प्राणेश्वरी, तुम्हें गए अभी 4 दिन ही हुए हैं। इन 4 दिनों में ही मुझे तुम्हारी कीमत पता लग गई। तुम्हारे रखे सामान किचन में मिलते ही नहीं थे, अब जाकर कुछ कुछ उनकी लोकेशन समझ में आने लगी है। कल की बात है।

0: वालों की तरह रेड करके निकालना पड़ा मुझे। गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, इसलिए कोने वाली होटल से एक खाना मुकर्रर कर दिया है। दुआ करना सेहत सलामत रहे। सब्जी वालों को पता नहीं कैसे टैकल करती थी, तो मुझे तो सब दिन दहाड़े लूट लेते हैं। तुम होती तो ऐसा ना हो। छत पर कपड़े फैलाए थे, क्लिप लगाना भूल गया था, सब उड़ गए। सच तुम्हारे बिना समझ में आता है कि बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। अरे हाँ, तुम्हारी मम्मी का क्या हाल है? अब तो उनका बीपी नॉर्मल होगा। रिंकू शैतानी तो नहीं करती? हाँ, तो ये रहा तुम्हारा रिटर्न टिकट। तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है, अब लौट आओ। तुम्हारा पत्नी पलायन पति।
1: कुछ ही दिनों के बाद नीरज को अपने प्रेम पत्र का जवाब मिल गया। आंखों में खुशी और दिल में उत्साह था। इकलौती पत्नी का पहला पहला पत्र था। खोलकर पढ़ा उसने।
2: वाह रे मेरे भोले सनम, आपके लव लेटर ने तो बड़ा ही मायूस किया। वादा वफा न रहा। ये आपने लव लेटर लिखा है कि डायरी? मैंने तो दिल का हाल बयान करने के लिए लिखा था, और आपने गृहस्थी का हाल बयान कर दिया। ये लव लेटर नहीं, ये रोज नामचा है। क्या मेरी कीमत बस इतनी ही है कि मैं आपकी गृहस्थी चलाती रहूं? सोचा था कि जुदाई में आप मजनू बन जाएंगे, पर आप तो नहीं। नहीं नहीं, ये रिटर्न टिकट वैलिड नहीं है। इसके सहारे सफर करना बेटिकट सफर करने जैसा होगा। एक बार आप फिर कोशिश कीजिए। मम्मी का बीपी पहले भी ठीक था, हाँ अब जरूर बढ़ गया है। सोचती हैं कि मैं लड़कर आई हूं आपसे। आप सेहत का ख्याल रखिएगा और इज्जत का भी। आपके लव लेटर के इंतजार में, आपकी रितु।
1: प्रेम पत्र को पढ़कर के नीरज की हवा खराब हो गई। जिसे ब्रह्मास्त्र समझकर चलाया था वो तो लकड़ी का तीर निकला। अब क्या करे, वह इस कला में माहिर न था। सोचा क्यों ना अपने दोस्त अशोक की मदद ली जाए। आखिर दोस्त वही होता है ना जो मुसीबत में काम आए। तो नीरज पहुंच गया अशोक के घर उससे सलाह लेने।
3: कौन? अरे नीरज तू भाई, सुबह सुबह यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए?
0: अरे यार भीतर तो आने थे पहले कि दरवाजे पर ही पूरा इंट्रोगेशन कर डालेगा।
3: आना आना बैठ। क्या लेगा तू? अरे श्यामा जरा दो कप चाय तो पिलाना गर्मा गर्म।
4: हाँ, लाती।
0: यार चाय वाय तो बनती रहेगी, पर इस वक्त मैं बड़ी मुसीबत में हूँ।
3: क्या हो गया तुझे कि सांड को तूने लाल कपड़ा दिखा दिया जो जान बचा कर यहाँ भागा है?
0: अरे यार सांड से पीछा छुड़ाना तो फिर भी आसान है, पर ये प्रेम पत्र।
3: प्रेम पत्र यानी कि लव लेटर? वाह यार, किसकी मती मारी गई है जो तुझ जैसे शादीशुदा को लव लेटर लिखेगा?
0: भाई मती किसी और की नहीं, मेरी खराब हो रही है। समझ में नहीं आता कि कैसे प्रेम पत्र लिखूं मैं, जिस काम का कोई तजुर्बा ही नहीं है वो आखिर यार मैं।
3: वाह भाई वाह, तो ये बात है। भाभी कहाँ है जो तू?
0: वो मायके गई बाल गोपाल को लेकर।
3: और तू मौके का खूब फायदा उठा रहा है, प्रेम पत्र लिख रहा है।
0: नहीं नहीं,
3: अब जब प्रेम का पत्र है तो प्रेमिका भी तो होगी ना कहीं ना कहीं। बच्चू आने दे भाभी को, फिर देख मैं किस तरह।
4: लीजिए भाई साहब चाय लीजिए।
3: खैर ये ले, पहले चाय पी ले तू, फिर तुझे पानी पिलाता हूँ जीवा।
0: अरे कोई प्रेमिका व्रेमिका नहीं है यार, तेरी भाभी को ही प्रेमिका बनने का जुनून सवार हुआ है। वो बोलती है मुझे प्रेम पत्र लिखो तब लौटूंगी मैं। अब तू ही बता यार मैं क्या करूं।
3: ओ तो ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया?
0: तूने बताने कब दिया? एकदम से राशन पानी लेकर चढ़ बैठा मेरे ऊपर।
3: खैर खैर बोल दोस्त, क्या मदद मांगता है तू?
0: यार एक चिट्ठी लिखी थी उसे, जवाब में लिखती है फीलिंग के साथ लेटर लिखो तब लौटूंगी। अब तू ही बता के

0: ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम कर,
1: हाँ
0: एक हिट आइडिया देता हूँ तुझे।
1: बता यार।
0: कुछ फिल्में देख डाल,
1: है?
0: कुछ शेर और शायरी की किताबें पढ़ डाल,
1: हाँ
0: किसी खूबसूरत लड़की का चेहरा रख आंखों के सामने, क्योंकि जब खूबसूरती सामने होगी तो अल्फाज खुद ब खुद निकलने लगेंगे, बस तैयार हो जाएगा तेरा प्रेम पत्र।
1: थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक्स। अब बाद में मिलता हूँ तुझसे।
0: पहले चाय तो खत्म कर ले भाई।
1: तो वो दू पी लेना। बाय एंड अगेन थैंक यू यार।
0: बाय बाय।
2: नीरज के हाथ फार्मूला लग चुका था, बस उसका इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए थी। अशोक का एक एक शब्द उसने पकड़ा। अशोक ने कहा था कि फिल्में देखो, शेर व शायरी की किताबें पढ़ो, खूबसूरत लड़की का चेहरा अपनी आंखों के सामने रखो। अब उसने कई फिल्में देख डाली। नई फिल्में उसको जमी नहीं, तो उसने पुरानी फिल्मों का सहारा लिया। शेर व शायरी की किताबें भी कई पढ़ी, पर बेचारा खूबसूरत लड़की कहां से लाता? अकल काम नहीं कर रही थी। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। मार्केट जाकर के एक खूबसूरत सा पोस्टर उठा लाया और दीवार पर चस्पा कर दिया। साथ ही एक सुगंधित लेटर हेड भी ले आया, जिसके एक कोने पर दो दिल बने हुए थे और दिल में एक तीर चुभा हुआ था। सारी सामग्री इकट्ठी करके अब वो लव लेटर लिखता है। आइए आप भी सुने उसका लव लेटर।
1: हा हा हा हा, ये पोस्टर भी लग गया। आप ठीक है। इसकी खूबसूरत आंखों में डूबकर, गुलाब की कली जैसे इसके होठों को देखकर, खिलती धूप सी इसकी मुस्कुराहट में नहाकर, अब लव लेटर लिखने की फीलिंग पैदा की जा सकती है भीतर से। एक काम और करता हूँ, बाजार से रंगीन लेटर पैड और खरीद कर लाता हूँ, वही जिस पर तीर से बिंधे हुए दिल बने रहते हैं, जिससे भीनी भीनी खुशबू आती रहती है, तब प्यार का एहसास और भी घना हो सकेगा। बिल्कुल कंफर्म रिटर्न टिकट बनेगा, तब कोई वेटिंग शेटिंग नहीं। गया प्रणेश्वरी तुम्हारा लव लेटर तैयार। एक बार पढ़ तो लूं, कैसी फीलिंग आती है। प्रिय प्रणेश्वरी, तुम्हें जाने आरजू कहूं या आरजू ये जहां कहूं, तुम ही बता दो मुझे, मैं तुम्हें क्या कहूं। तुम्हारी झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को मन करता है, जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है मानो कोई कानों में मीठी मीठी मिश्री खोल रहा हो, जब तुम कुछ बोलती हो तो दिल में सितार बजता है, जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गाल में जो डिंपल पड़ता है वो तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। तुम्हारे बिना न नींद आती है न चैन आता है, दिल तुमसे मिलने को बेचैन होता है। चांद में तुम नजर आती हो, सितारों में तुम नजर आती हो, रोटी में तुम, खाने की हर बोटी में तुम। जिस शक्ल को भी देखता हूं बस तुम्हारी ही शक्ल दिखती है, जुदाई के पल अब बर्दाश्त नहीं होते। अब तुम ही बताओ कब मिलेंगे हम, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा प्राणों से भी प्यारा। आ रही है फीलिंग, आ रही है। अब एक बार अशोक को और दिखला देता हूं, चलो।
0: ये क्या लिखा है रे बुद्धू तूने? ऐसे भी कहीं प्रेम पत्र लिखते हैं? अरे मैंने तुझे फिल्में देखने के लिए कहा था, फिल्मों के गाने और डायलॉग चुराने के लिए नहीं। औरतें फौरन ताड़ लेती हैं कि बनाया जा रहा है उन्हें। अरे नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए इसमें।
3: यार नेचुरल एक्सप्रेशन ही बनता मुझसे तो तेरी मदद क्यों लेता? मानता हूं कि सब कुछ अननेचुरल है, पर करना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरी भाभी का कोप भवन टूटने वाला नहीं है।
0: अच्छा यार एक काम कर, तू
3: बोल।
0: अभी तो रहने ही दे तू उसे, मैं जरा फुर्सत निकाल कर आता हूँ तेरे पास, फिर मैं खुद बैठ कर लिखवा दूंगा तुझे। उसे भाभी को भेजना तू, पर ये जो एंटीसेंट लिखा है ना तूने,
3: हाँ।
0: इसे तो रहने ही दे भगवान के लिए। लव लेटर लिखे, अरे भाभी वापस तो नहीं आएगी, उल्टे तुझे नौटंकी बात समझेगी।
1: आता हूं भाई, आता हूं। कौन टपक पड़ा यार?
4: अरे तुम व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। अरे तुमने तो ठानी थी क्या?
5: ठानी तो बहुत जमकर थी, पर क्या करूं पतिदेव, आप पर तरस आ गया। और सच कहूं तो आपके बिना रह ही नहीं सकती हूं मैं। सोचना चाहिए था मुझे। आप जैसे भोले भाले आदमी भला क्या जाने प्रेम पत्र लिखना। सतयुग के पुरुष ठहरे आप, आज के छोरों जैसी लंपटता आप में कहाँ है भला।
3: क्या बात है। आपने अपना प्रण तोड़ दिया इस नाचीज के लिए।
5: मैं तो प्राण दे दूं पति देव, प्रण तो कुछ भी नहीं आपके लिए।
3: थैंक गॉड।
2: नीरज मन ही मन खुश था। नीरज की मुसीबत टल चुकी थी, पत्नी बिना प्रेम पत्र के ही मान गई थी। खुशी खुशी दफ्तर गया, पर जब वापस लौटा तो घर में मातम फैला हुआ था। प्राण देने का वादा करने वाली पत्नी प्राण लेने पर उतारू थी। आंखों से प्रेम की धारा नहीं, आंसुओं का सैलाब बह रहा था। मुख से शहद के भीगे शब्द नहीं बल्कि तोप के गोले चल रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो गया था दिन भर में, आप भी सुनिए।
6: वाह रे मेरे भोले सनम, अच्छी वफा निभाई तुमने। तुम भी आखिर बाकियों की तरह ही निकले ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी, रंगोसी और।
3: अरे काहे मुहावरेदार गालियां दे रही हो भाई, साफ साफ बताओ कि क्या हो गया। सुबह सुबह की स्वच्छ ऋतु अचानक इतनी गर्जन तर्जन क्यों कर रही है?
6: अरे अपनी किस्मत को रो रही हूँ और क्या।
3: क्या?
6: अरे क्या समझा था तुम्हें, और तुम क्या निकले? कहते थे प्रेम पत्र लिखना ही नहीं आता, और यहाँ तो पूरा प्रेम सागर ही उमड़ा जा रहा है।
3: क्या कह रही हो?
6: ये देखो अपना कच्चा चिट्ठा, हाथ कंगन को आरसी क्या। अरे मेरे पीछे इश्क फरमा रहे थे तुम।
3: क्या कह रही हो?
6: सींग कटा कर बछड़े बन रहे थे तुम, तुम्हारा पाप तुम्हारे सामने है।
3: पाप? ओहो, तो ये बात है। अरे यार ये पाप नहीं, मेरा बेवकूफी नामा है बेगम। ये आपके लिए ही लिखा था मैंने, किसी और के लिए नहीं। आपके सर की कसम।
6: मेरे सर की कसम ना खाओ जी, खाना है तो उसी की कसम खाओ जो तुम्हारे सपनों की रानी है।
3: अरे तुम
6: उसकी इबारत पढ़ो ना तुम, खाने में तुम, खाने की हर बोटी में तुम। मुझे पागल समझा है क्या? 15 दिन बाद लौट कर आ रही हूँ मैं, और मैं मान लूं कि ये लाइन तुमने मेरे लिए लिखी है।
3: अरे हाँ जी, 100% ही तुम्हारे लिए लिखी थी यार। इमोशन पैदा करने के चक्कर में ये बेवकूफी हुई थी मेरे से। हाँ, दरअसल एक दिन पहले ही सपने में आई थी तो।
6: बहुत अच्छे। हाँ, और ये तुम्हारी झील सी आंखों में डूब जाने को मन करता है, और थोड़ी सी भी गलत बची हो ना तुम्हें तो तुम तालाब में जाकर डूब मरो, या मुझे डुबो दो और फिर मजे से रहना उसके साथ में।
3: अरे यार धर्म पत्नी जी, ये लाइन तो फिल्मों के चक्कर में आ गई यार। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद नहीं बनाई है इसे।
6: और ये आगे भी तो देखो।
3: अरे
6: रहन दो, बस। अब एक झूठ छुपाने के चक्कर में हजार झूठ मत बोलो जी, फंसते ही चले जाओगे तुम।
3: अरे यार कैसे तुम्हें समझाऊं प्राणेश्वरी, प्रेम पत्र लिखते समय ये सब झूठ सच लिखना पड़ता है यार, नहीं तो प्रेम पत्र का वजूद ही खत्म हो जाएगा दुनिया से। सब सच लिख दिया तो प्रेमिका पत्थर फेंक कर मारेगी अपने प्रेमी को।
6: अच्छा तुमने कहा और मैंने मान लिया है।
3: हाँ हाँ, मान भी जाओ मेरी बात यार, ये लेटर मैंने तुम्हारे लिए ही लिखा था।
7: मुझे बरगलाओ नहीं। और ये देखो, ये तुम्हारा, ये क्या लिखा तुमने? जब तुम हंसती हो ना, तो तुम्हारे गाल पर जो डिंपल पड़ता है ना, तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। तुम ही बताओ, मेरी कचोरी जैसे गालों में कब डिंपल पड़ता है?
4: अरे यार,
7: और आगे ये देखो, ये देखो क्या लिखा है। चांद में तुम, सितारों में तुम, रोटी में तुम, आईने में तुम, हर शक्ल में तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है।
4: अरे क्या
7: बड़ी आंखें सेकी जा रही थी मेरे पीछे।
4: अरे यार,
7: इश्क का भूत तो ये पोस्टर भी बयान कर रहा है, जिसे आंखें सेकने के लिए तुमने।
4: अरे यार, इस पोस्टर में भी तो तुम ही हो जाने मन, जमीन पर आसमां में तुम ही हो जाने मन।
7: ओहो, बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं मेरे सरकार। कहां तो प्रेम पत्र लिखने के नाम पर हाथ पांव ठंडे पड़े जा रहे थे, और कहां पूरे प्रेम कवि ही बन चुके हैं। किसका कमाल है ये बताओ मुझे? पर मुझे क्या, मैं तो वापस जा रही हूँ। नादान थी मैं जो तुम्हें भोला समझ बैठी। अरे तुम तो भेड़ की खाल में भेड़िया हो।
4: अरे जाने मन क्या।
7: अच्छा हुआ जो तुम्हारा असली रूप दिख गया, नहीं तो जिंदगी भर में इसी मुगालते में रहती कि मैं।
4: ऐसा जुल्म ना करो जी। तुम सुनो तो यार, एक काम करो, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता?
7: बिल्कुल नहीं।
4: तो तुम अशोक को बुला लो। अशोक को तुम बुला लो, तुम खुद तस्दीक कर लो अपने हिसाब से, जैसा तुम चाहो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बीच में चुपचाप बैठा रहूंगा यार, प्लीज। ऐसा
0: क्या हुआ भाभी, इतनी इमरजेंसी में आपने क्यों बुला लिया मुझे?
7: क्या कहूं भैया, कुछ दिनों के लिए मैं मायके क्या चली गई, इन्हें तो सिंह ही निकल आए। अरे आशिकी करना शुरू कर दिया, एक बेटी के बाप हैं, पर हरकत, जी जी, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। तुम खुद ही देखो कैसा बेहुदा लव लेटर लिखा है इन्होंने अपनी उसको। अरे वो तो यकायक में आ गई, और ये दे नहीं पाए उस कलमुही को, नहीं तो।
0: ओहो, तो ये बात है। अरे ये बुद्धू है भाभी, आपको वापस बुलाने के लिए न जाने क्या क्या बेवकूफियां करता रहा है ये। मुझे मालूम है इस लव लेटर के बारे में, मैंने ही तो कहा था इससे कि इसे पोस्ट ना करे। फंस गया बेचारा। अरे पोस्ट कर दिया होता आपको तो कम से कम आज आप इस बेचारे पर शक तो ना कर रही होती।
7: सच कह रहे हैं भैया आप, ये भी यही कह रहे थे, पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ।
0: 100% सच कह रहा हूँ भाभी, आप चाहें तो श्यामा से कंफर्म कर लीजिए पूरा मैटर, उसे बताया है मैंने।
7: नहीं नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है, सचमुच ये भोले सनम ही है। बेचारे इतना जुल्म सहते रहे मेरा, और मुझे माफ कर दो मेरे भोले सनम, माफ कर दो।
2: तो श्रोताओं, ये था हमारा हास्य नाटक लव लेटर, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है। जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती।
1: जो कि राग देश में मैंने उसको सुरबद्ध किया है और बोल है चलो पिया वाही कदंब तल झूलें।

को बड़े प्रेम से सजाया है और बलराम और मोहन को उस पर विराजित करके उन्हें वो झूला झुला रही हैं। तो नंदगांव का ये एक झूला मेरी अगली प्रस्तुति है।

ब्रज के बाद अब मैं आपको पूरब में ले चलती हूँ और पूरब की एक चीज सुनाती हूँ। रंग अभी झूले का ही रहेगा। ये राग गौड़ मल्हार पर आधारित है बंदिश। ऋतु भी मल्हार गाने की ही है, इसीलिए इस बंदिश का चयन किया है।

0: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया झूला गायन, जिसकी प्रस्तुतकर्ता थी आस्था गोस्वामी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ पल हंसने हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे तप तपाती गर्मी में कोई ठंडी हवा का झोंका आया और मन को सुकून दे गया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको वो सुकून दे सकें कि आप मन ही मन गुदगुदाएं और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक LPG का 7वां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में 7 अजूबे हैं, धरती पर 7 समंदर हैं। शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, सरगम के सुर भी 7 होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी 7 हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी 7 पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या 6 क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में 6 फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम 7 के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
2: ओफ यार, ये जूते कहां रख दिए? ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे। अरे सुनती हो का? क्या यार ये लोग, फोन मोबाइल कहां रखा है मेरा यार?
3: सुनिए जी, अरे सुन रहे हैं? हाँ? आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूँ।
2: क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
3: हाँ।
2: अरे यार, तुम तो जानती हो कि ब्रेड मेरे पेट में चिपकती है, गोंद की बाप है ये चिपकूपन में। सुबह फ्रेश होना मुश्किल हो जाता है, चाय पर चाय पीते जाओ पर जोड़ है के टूटते ही।
4: अरे मम्मी, पापा को भुने चने दे दीजिए, लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ। पापा कहते हैं भुना चना पेट साफ रखता है।
2: क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का टिफिन नहीं दे सकते तुम मुझे? ब्रेड बटर भुना चना, मानो अग्निदेव हड़ताल पर चले गए हो।
3: चले गए नहीं है, पर जाने की धमकी जरूर दे रहे हैं।
2: क्या मतलब
3: भाई? 5 महीने बाकी हैं अभी साल पूरा होने में,
2: और नोटिस दे दिए हैं कि अब काम पे नहीं आएंगे वो, यही कहना है ना तुम्हें?
3: हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। पिछले 7 महीनों में हमने 4 सिलेंडर चट कर दिए हैं, अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर।
2: क्या?
3: और महीने बचे हैं 5, यानी 1 सिलेंडर अब हमें 2.5 महीने चलाना है, जबकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हम, हमारा 1 सिलेंडर 2 महीने भी तो चलता नहीं, अब कुकिंग में कटौती भी करनी पड़ेगी।
2: कटौती माई फट, अब क्या पेट पर पट्टी बांध कर नौकरी करूंगा मैं? हार तोड़ खटो ऑफिस में और इसके बाद खाना भी नहीं मांगो? कमाल है भाई, कमाल है, है? एक सुबह गरम पराठा ना दो तो तुम्हारी बाई भी भाग जाए काम छोड़कर, और मैं?
3: देखो देखो जी, बाई से अपनी बराबरी मत करो, कह देती हूँ मैं। हाँ भाई, तुम मुंह फुला लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा, मगर बाई, बाप रे बाप, दूसरा पति तो मिल जाएगा।
2: क्या?
3: पर दूसरी बाई नहीं मिलने वाली भाई, उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
5: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीन न जाऊ ना तो लकड़ी भी ना मिले, एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर, अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
2: हाँ, हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे हैं।
3: अरे सुनिए तो, टिफिन तो ले जाइए, अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या?
5: साहब नाराज हो गए क्या भाई साहब?
3: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
5: भाई साहब नाश्ता तो कर लूंगी, पर आज है ना वो ना पराठे के साथ है ना चाय भी मिल जाती तो थोड़ा सा क्या है ठंडे ना।
3: अच्छा बनाती हूँ।
5: हाँ हाँ, तो कई दिन भी हो गए सुबह की चाय नहीं मिली ना भाई साहब। पहले तो ठेले पर वो 2 रुपए कट मिल जाती थी, पर अब अरे अब तो उनके भी रेट सिलेंडर की तरह भबक रहे ना।
3: ये ले चाय। अब मेरा माथा खराब ना कर कांता, देखा ना तूने कैसे लड़कर गए हैं अभी। तू चाय पी, तुझे तो गरम पराठे दे रही हूँ और वे भुने चने लेकर चले गए। तुझे क्या मालूम कि वो कैसे कैसे
5: मालूम है भाई साहब? रो मत, रो नको, मालूम है मेरे को, सब मालूम है। अरे आग की जरूरत तो मेरी रसोई में भी पड़ती है ना। वो चाय वाले भी बोलते कि सरकारी रेट 2 गुना आता है ना, तो ब्लैक वालों का रेट 4 गुना हो जाता है। हाँ
3: मैं क्या कर लूं, सरकार तो कुछ भी बोल देती है बस। अब मैं कैसे घर चलाती हूँ ना, मैं ही जाती हूँ।
5: रो,
3: हो गई ना तेरी चाय, अब जा बाकी काम कर।
5: हाँ,
3: झाड़ू पोछा पड़ा है सुबह से।
5: हाँ, करती।

0: मंजू।
1: हाँ मम्मी।
0: जरा टीवी की आवाज कम कर दे बेटा।
1: हाँ मम्मी करती हूँ।
0: सुनो ना, सॉरी सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ। मेरे हाथ में तनख्वाह देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
2: नहीं रचना, गलती मेरी भी है। अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया।
0: क्या?
2: बेचारा सुबह का नाश्ता अंकुरित चने से करता है। दांत साथ नहीं देते उस उम्र में, पर करे क्या, किसी तरह टेबलेट समझ कर कटक लेते हैं।
0: अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक काम करें।
2: हाँ बोलो।
0: एक सोलर कुकर खरीद लें, दाल चावल तो उबल ही जाएगा ना उसमें। सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
2: क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारी मेहनत आप तो बहुत समझदार हो गई है। अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
0: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
2: बिल्कुल।
0: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
2: हाँ।
0: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह। फिर आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे, हॉट केस में रखे गरम गरम दाल चावल की खुशबू से आप ऑफिस में अपना करवा चौथ खोलिएगा।
1: और मम्मी, फिर मैं भी गर्मा गर्म पोहे खाऊंगी रोज सुबह।
0: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं भाई, अब तो सोलर कुकर देव का ही सहारा है, वे ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं अब।
2: वाह वाह, संकट
0: सोलर
2: मोचक।
0: कुकर देव की जय।
2: अरे यार रचना, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, कहाँ मेरा लंच बॉक्स है, ला।
0: माफ करना जी,
2: क्या
0: लगता है दोपहर के पहले नहीं पकने वाला है ये दाल चावल, ये सोलर कुकर में डाला है ना। और आज सूर्यदेव भी नरम पड़े हुए, लगता है उन्होंने भी सब्सिडी घटाने का मन बना लिया है।
2: ए भगवान, दुबले को दो आषाढ़। यार एक काम करो, अब पका ही भर दो तुम टिफिन में यार, है? पेट की आग से ही पक जाएगा अब तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था।
0: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो, अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे, तो मैं क्या कर लूं?
2: क्या करूं?
0: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान, आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
2: यार, अरे यार रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
0: हटो जी,
2: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल तो उठा लाओ उसे, लाओ तो।
0: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको, क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है? हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया?
2: अरे चुप रहे भाई, चुप रहे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ। अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है। लाओ लाओ, जल्दी जल्दी। हाँ,
0: ये लीजिए।
2: हाँ,
0: ये हाँ। बताइए अब क्या करूँ इस कच्चे पक्के खाने का।
2: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
0: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ?
2: ओफो, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, हैं? आधा गैस।
0: वाओ, मान गए आपको, वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश मतलब दिनेश।
2: हाँ, मतलब हम दिनेश।
3: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर देव की आयु 2.25 महीने के ऊपर न जा सकी। एक बार फिर घर की दीवारों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 7वें सिलेंडर की कल्पना ही डरावनी है। भारत में आम आदमी का कलेजा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद करके अपना रसोई का चूल्हा जला सके। पति पत्नी की 2 सदस्यीय कमेटी इस कठिन समस्या का हल तलाशने के लिए बैठ गई।
0: आ, आ, सुनो जी, हाँ? एक काम करते हैं, घर में आलू आज से पूरी तरह बंद।
2: उससे क्या होगा? क्या बाकी सब्जियां कच्ची खाई जाएंगी?
0: अरे नहीं जी, सब्जियों का बिहेवियर आप क्या जानोगे दिनेश बाबू, ये तो हम गृहस्वामिनियां ही समझ सकती हैं।
2: क्या मतलब?
0: मतलब ये, देखो अब हमें पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, हाफ फ्राइड, पोषक तत्व भी भरपूर और गैस की बचत भी। वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नष्ट नष्ट,
2: और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहेगा, है ना?
0: वाओ, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली, वेट कंट्रोल, तो समझिए सब बीमारियां कंट्रोल।
2: अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पोषक तत्व और वेट कंट्रोल,
0: है?
2: जान ही दे देते हैं ना बाप अपनी, है? न रहेगा वेट और न रहेगा कंट्रोल, और न करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म।
0: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पति देव, भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
2: क्या,
0: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
2: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद, मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो सातवां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं चलेगी।
0: ये भी आ गए सातवें सिलेंडर के दूध बनकर, गरीबी में आटा गीला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
2: क्या भुनर भुनर कर रही हो जी तुम, है? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
0: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़ छाला हो चुका है, कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए।
2: अरे ठीक कहती हो तुम, एक प्रधानमंत्री गैस कोष जरूर होना चाहिए, जिससे उन लोगों की मदद हो सके जिनके यहाँ मेहमान वगैरह आ जाएं। इन लोगों ने सिलेंडर का कोटा फिक्स करते हुए ये नहीं सोचा कि मेहमान भी आएंगे घर में। अरे कभी ठंडे खाने को गर्म भी करना पड़ेगा, कभी त्योहार भी पड़ेंगे, बस फ्लैट ऑर्डर पास कर दिया कि साल भर में 6 सिलेंडर। त्योहारों को गुड बाई बोल दो, मेहमानों को पहचानने से इनकार कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो उसे वैसे ही निगल लो। पता चला बाहर की गैस बचाने के चक्कर में पेट के भीतर गैस भंडार बन गया।
0: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है,
2: क्या
0: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
2: अच्छा
0: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
2: क्या?
0: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा,
2: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा। आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे?

0: वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश? सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती भैये?
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ,
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ,
1: अरे भैया जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटा करण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट भर खाना खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और कर्म का तैसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी, जी, जी, जी।
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ, शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ, और कभी कभी तो ये कहती है कच्चा खाना खा करके जलते तवे पर बैठ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। 6ठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ, और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था। बड़ी मुश्किल से विदा हुए हैं, लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था। सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूँ भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन सरकार की वजह से अब मेहमान भगवान नहीं जानी दुश्मन लगते हैं, जो आधे सिलेंडर गैस अपने संग उड़ा ले जाते हैं।
1: यार दिनेश, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: वो क्या आ रहा है भाई, सुनाओ।
1: देख, क्यों ना हम सब मिलकर एक सिलेंडर इमरजेंसी फंड बनाए। किसी के घर में अगर 6ठा सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जा सके।
0: हाँ यार, मगर इस फंड में सिलेंडर आएंगे कहाँ से?
1: देख, हमारे यहाँ कई बार लोग छुट्टी पर बाहर जाते हैं ना।
0: जी, जी।
1: कभी कोई काम से बाहर चला गया, कोई अपने गांव चला गया, या अन्य किसी वजह से अगर किसी का कोटे वाला एक आध सिलेंडर बच जाए तो वो इसे हमारे फंड में दान कर दे।
0: वाह,
1: बदले में हम उसका सम्मान समारोह करेंगे, अखबारों में फोटो सहित न्यूज छपवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया आज के वक्त में ये है सिलेंडर दानी, यानी सिलेंडर दान महादान।
0: वाह यार, आइडिया तो धांसू है। चल जाए तो सुपर हिट, कम से कम बिना तड़के की दाल खाने से तो छुटकारा मिलेगा।
1: क्यों भैया? तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या? अरे दान त्याग मांगता है त्याग, भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है।
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार, तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले लिखवा लो।
1: देखो भैया दिनेश, सिलेंडर दान महादान।
2: दिनेश और रचना की सारी हिकमतें मिलकर भी 6ठे सिलेंडर की आयु को दीर्घायु न कर सकी। अभी साल पूरा होने में 1 महीना बाकी था, पर अचानक एक रात गैस का बर्नर भभक कर बुझ गया। समझ गए वे दोनों कि पंछी उड़ चुका है। सिलेंडर के भीतर रहने वाली गैस रूपी आत्मा महाप्राण कर चुकी है। अब यह जो लाल रंग का लोहा बचा है, यह तो नश्वर शरीर है।
3: ओफो, अब क्या करूं, सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओफो, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो? सुनना जरा। देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर।
0: एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुनो, लुढ़का कर देखते हैं, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को, शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
3: संभल के
0: जलाओ।
3: चल गया, जल गया। ये देखो लॉ निकल रही है बर्नर से। हे भगवान, तू सचमुच कितना दयालु है भगवान, भक्तों का संकट दूर करने वाला। काम चला दो किसी तरह शारदा माता, हम सब परिवार मैहर दर्शन को आएंगे माता।
0: अरे क्या पागल हो यो, कितने घाटे की डीलिंग है ये तुम्हारी, तुम्हें होश भी है? दर्शन करने का खर्चा कितना बैठेगा तुमने सोचा है कभी? अरे ये तो गज बचाने के चक्कर में थान हारने वाली बात है।
3: चुप रहो जी, कहीं माता रानी नाराज हो गई ना तो थान तो क्या, दुकान ही हार जाओगे तुम। एक एक सिलेंडर को तरसोगे, साल भर गाय की तरह कच्चा सानी खाते रहना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे।
2: लड़ाई के मैदान में जिस तरह कोई बहादुर सैनिक मरते मरते भी दो चार दुश्मनों को लुड़का देता है, वैसे ही दम तोड़ते सिलेंडर ने भी रात का खाना पका दिया है। पर सुबह क्या होगा, यह चिंता पति पत्नी को इस खाने का आनंद नहीं लेने दे रही। हर गौर के साथ चिंता की दो फांके निगल रहे थे वे दोनों। सुबह चाय कैसे बनेगी, दूध कैसे गर्म होगा, नाश्ता कैसे बनेगा, अनगिनत सवाल पति पत्नी के बीच राहु की तरह पंख फड़फड़ा रहे थे।
0: ये क्या कर रही हो रचना, आज रद्दी वाले को बुलाया क्या तुमने?
3: रद्दी वाले को नहीं बुलाया है, ये तो चाय बनाने का इंतजाम चल रहा है पति देव जी।
0: ओ, यानी अब रद्दी के कागजों से रसोई पकेगी?
3: नहीं, ये केवल सुबह का इंतजाम है।
0: तो
3: इसके बाद अगर कोई रसोई जलानी है तो जाकर कबाड़ी के यहाँ से एक आध क्विंटल रद्दी कागज खरीद कर ले आओ।
0: एक क्विंटल रद्दी कागज?
3: हाँ,
0: यानी 1000 रुपए का बिल। लग रहा है गैस खत्म नहीं हुई है रचना, बल्कि तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। इतने में तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही आ जाएगा।
3: वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
0: क्या?
3: अब सब्सिडी का मोह छोड़िए, क्या पता कल को इन 6 सिलेंडरों पर भी सब्सिडी खत्म हो जाए। तो अभी से हमें आदत डालते रहना चाहिए, वही अच्छा है।
0: पर रचना, हमारे बजट का क्या होगा तब? ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई? किसकी जेब काट कर हम अपना घर चलाएंगे? अब तो कर्मचारी संगठनों को सरकार से कुकिंग अलाउंस भी मांगना चाहिए। भाई खाना खाए बगैर तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। तनख्वाह से अनाज तो खरीद सकते हैं पर पका नहीं सकते उसे। पकाने के लिए अलाउंस का हक तो बनता है।
3: चिंता ना करिए पति देव जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
0: कैसे बैलेंस करना है?
3: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का 1 पैकेट कम आएगा घर में
0: जी?
3: साल भर
0: है?
3: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो। पका खाना बोनस होगा।
0: पर काम कैसे चलेगा? 2 पैकेट में तो पूरा पड़ता नहीं है, 1 पैकेट में क्या होगा?
3: अरे पढ़ने का क्या है, 4 में भी ना पड़े और छोटी थैली में भी काम चल जाए। आखिर हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जी जितनी हमारी चादर है। कर्ज लेकर घी पीने की फिलॉसफी तो सही नहीं है ना। चाय में दूध थोड़ा कम पड़ेगा, फुल के बजाय कट चाय पी जाएगी
0: जी।
3: गोलू के दूध में भी थोड़ी राशनिंग हो जाएगी, इससे चीनी भी बचेगा और डायबिटीज का खतरा भी खत्म।
0: वाह वाह,
3: बीमार होने का रिस्क कम, यानी दवा दारू का खर्च भी बचा।
0: बहुत खूब,
3: बस हो गया बजट बैलेंस। बजट क्या, सरप्लस कहिए साहब, सरप्लस।
0: क्या बात है।
2: अब घर में 7वां सिलेंडर आ चुका है। पैसे जरूर दुगने से ज्यादा लग गए पर रसोई तो गर्म हो गई, कुकर की सीटी बज उठी है, चाय उबल रही है, जीवन की ऊष्मा सोंधी सोंधी महक रही है।
3: ये क्या है जी आपके हाथ में?
0: बूझो तो जानू।
3: अब बूझना क्या है, ये तो गैस का चूल्हा है, साफ समझ में आ रहा है। अब ये क्या फितूर सूझी आपको, एक नया खर्च बेवजह। भाई हमारा चूल्हा अच्छा भला तो काम कर रहा है अभी।
0: अच्छा भला नहीं काम कर रहा है धर्म पत्नी जी, अपना चूल्हा कभी ध्यान से देखा है आपने? पुरानी टेक्नोलॉजी का है तुम्हारी तरह ये चूल्हा।
3: ओहो तो क्या हुआ, मेरी तरह जलता भी तो है ये चूल्हा।
0: मगर गैस जरूरत से ज्यादा खाता है, पुरानी फिएट कार की तरह ये जो चलती कम और धुआं ज्यादा देती है। तुमने ध्यान से देखा है कभी इसे? देखा है कभी इसे?
3: क्या
0: बर्तन की पेंदी कितनी काली हो जाती है इससे है?
3: और इस नए चूल्हे में
0: तुम खुद ही खोल कर देखो इसे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
3: अरे इसमें तो लिखा है हाई थर्मल एफिशिएंसी अप टू 75%।
0: और तुम्हारे पुराने चूल्हे में क्या लिखा है ये भी देख लो लगे हाथ।
3: अब इसमें इसमें तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा जी।
0: नहीं आ रहा ना?
3: नहीं
0: आएगा भी नहीं।
3: क्यों?
0: क्योंकि कुछ लिखने लायक होगा तब ना लिखा जाएगा।
3: अरे
0: मुझे भी नहीं मालूम था, वो तो जब से सिलेंडरों की राशनिंग हुई है चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चूल्हे के साथ भी है, देख लो।
3: यही है ना बुकलेट?
0: यही है। क्या लिखा है बोलो?
3: लिखा है हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
0: हाँ अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो।
3: देखो ना, गैस बचाने के टिप्स
0: जी।
3: नंबर एक, गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें
0: जी।
3: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी
0: जी।
3: अरे वाह ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा नंबर दो, सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
0: आगे बढ़ो आगे बढ़ो।
3: नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं, ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की बापरे। नंबर चार, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करे आँच धीमी कर दो।
0: जी जी
3: सिंपल। ओके एक और है, एक और। दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखे।
0: मुझे दो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे दो।
3: अच्छा अच्छा चलो पढ़ो पढ़ो। सिक्स्थ वाला,
0: जहाँ तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें।
3: अच्छा।
0: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली नारंगी व एक जैसी ना हो।
3: अच्छा।
0: समझी?
3: हाँ। हाँ।
0: अच्छी लौ की एक पहचान ये है कि इसे नीली चमकदार व एक जैसी होना चाहिए।
3: अच्छा,
0: वो नीली। और फ्रिज से निकाली गई चीजों को गैस पर चढ़ाने के पहले कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें।
3: हाँ,
0: इससे गैस की बचत होगी। और अगर इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपका गैस सिलेंडर दीर्घायु होगा, दीर्घायु।
3: नहीं मजाक नहीं, अरे इनमें से आधी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं।
0: हाँ।
3: पर हम इन्हें करते क्यों नहीं हैं?
0: हाँ, लेकिन अब करना है धर्म पत्नी।
3: हाँ,
0: जी
3: जरूर।
0: नहीं तो पता चला अभी दूध आधा हुआ है।
3: हाँ।
0: और चाय आधी हुई है, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए।
3: नहीं नहीं।
0: हाँ, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए।
3: नहीं नहीं।
0: मेहमानों को आने से पहले सैंक्शन लेनी पड़े, संख्या बतानी पड़े कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिन बाद जाएंगे। पहले वीजा लें फिर टेक ऑफ करें, नहीं तो घर में लैंड करने की
3: इजाजत नहीं मिलेगी।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती पूनम जायसवाल। ध्वनांकन एवं संपादन अमित कुंदानी और अंकित सक्सेना का। परिकल्पना और सूत्रधार प्रमोद शर्मा। निर्देशन जवाहरलाल शाह। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, एक ठहरता हुआ दिन, ढलता हुआ सूरज, थमता हुआ शोर और आसमां के जीने से उतरती एक सुरमई सी शाम, और ऐसे खूबसूरत से वक्त में हम और आप साथ साथ। शुभ संध्या, नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने सभी सुनने वालों का। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज।
2: न जी भर के देखा न कुछ

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद जैसे अक्षय निधि हैं, यही अक्षय निधि डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी के स्वर में आपके लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 11वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव शौनक। देवता हैं इंद्र, छंद है विराट स्थाना और त्रिष्टुप।
2: नी पर्वतः साध्य प्रयुच्छंस्तं मात्रिभिर् वावशानो अक्रान् दूरे पारे वाणीं वर्धयन्त इन्द्रेशितां धमनिं पप्रथन्नि जलयुक्त अप्रमादी मेघ आकाश में गर्जना करते हुए विचरण कर रहे थे। तब स्तोताओं की वाणी रूपी स्तुतियों से इंद्रदेव की प्रेरणा प्राप्त कर मेघ बहुत दूर दूर तक निरंतर विस्तृत हुए। इंद्रो महाम सिंधु माशयानम माया विन्नम वृत्रमस्फुरन्निहि अरे जेताम रोदसी भियाने कनिक्रदतो वृष्णो अस्य वज्रात। अंतरिक्ष में जल का मार्ग रोकने वाले बहुत बड़े मायावी राक्षस वृत्र का इंद्रदेव ने हनन किया। उस समय बलशाली इंद्रदेव के सिंह गर्जना करने वाले वज्र के भय से दोनों लोक कांपने लगे। अरो रवीद वृष्णो अस्य वज्रो मानुषम यन्मानुषो निजूर्वात नी माइनो दानवस्य माया अपादयत पविपान सुतस्य। मनुष्यों का अहित करने वाले वृत्र राक्षस को जब मनुष्यों का हित करने वाले इंद्रदेव ने मारा, तब बलशाली इंद्रदेव के वज्र ने बार बार गर्जना की। तभी सोमपाई इंद्रदेव ने इस मायावी राक्षस की माया को नष्ट कर दिया। पिबा पिबेदिंद्र शूर सोमं मंदन्तु त्वा मंदिनः सुतासः प्रणन्तस्ते कुक्षी वर्धयन्त्विस्था सुतः पौर इंद्रमाव। हे वीर इंद्रदेव, इस सोम रस का पान अवश्य करें। यह शोधित आनंददायक सोमरस आपको हर्षित करे। यह आपके पेट में जाकर आपकी शक्ति को बढ़ाए। इस प्रकार यह आपके माध्यम से समस्त प्रजा की रक्षा करे। त्वे इंद्राप्य भूम विप्राधियम वनेम ऋतया सपन्तः अवस्यवो धीमहि प्रशस्तिम सद्यस्ते रायो दावने स्याम। हे इंद्रदेव, हम ज्ञानी जन यज्ञीय कर्म की कामना से आपका आश्रय प्राप्त करते हुए आपसे संबद्ध हों। आपकी बुद्धि प्राप्त करें, आपकी स्तुतियां करते हुए हम लोग संरक्षण की कामना करते हैं। आपके दान से हमें धन प्राप्त हो। श्याम ते त इंद्र ये त ऊति अवस्यव ऊर्जम वर्धयन्तः शुष्मिन्तमं यम चाकनाम देवास्मे रईम रासि वीरवंतम। हे इंद्रदेव, हम रक्षा की कामना से आपको तेजस्वी बनाते हैं, अतः सदैव हम आपके संरक्षण में रहें। हमारी कामना के अनुरूप वीरों पुत्रों से युक्त धन हमें प्रदान करें। राशि क्षयम् राशि मित्रमस्मे राशि शर्ध इंद्र मारुतम नह सजोषसो ये च मंदसानाह प्रवायवह पांत्यग्रणीतिम। हे इंद्रदेव, समान रूप से परस्पर प्रेम रखने वाले हर्षदायक जो मरुदगण अग्रणी होकर नेतृत्व प्रदान करने वालों की रक्षा करते हैं, उन मरुतों का मित्रवत शक्तियुक्त आश्रय हमें प्रदान करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 11वें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
3: रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। प्रस्तुति डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी की थी। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आइए इस पावन यात्रा पर हम और आप साथ साथ चलें। श्रोताओं, जब से कुदरत है, मनुष्य का अस्तित्व है, तब से ईश्वर की अनंत खोज जारी है और ये विश्वास भी कायम है कि कहीं तो कोई है जो दुनिया की बागडोर थामे हुए है, इसे गतिमान करता रहता है। ईश्वर क्या है, कहाँ मिलते हैं इसके पद चिन्ह, ये एक सनातन प्रश्न है जो हर कालखंड में मानव मन को मथता रहा है। श्रद्धा, विश्वास और तर्क की कसौटी पर मानव ने ईश्वरीय सत्ता की हर दम छानबीन की और हर बार यही निष्कर्ष सामने आया कि जर्रे जर्रे में बसते हैं भगवान।

श्रोताओ, ईश्वर प्रेम, आस्था और विश्वास का तालमेल है। वो रहम है, रहमान है, दीन बंधु है, दयानिधि है। इसलिए जब भी मन में ईश्वर की तलाश का प्रश्न उभरे तो किसी को माफ करके देखिएगा। आपको अपनी रहम में ही उस खुदा के दीदार होंगे। किसी रोते हुए बच्चे के चेहरे पर हंसी की रंगोली सजा कर देखिए, यकीनन जगदीश्वर आपकी आंखों के सामने होंगे। उनका कोई आकार नहीं, वे कण कण में व्याप्त हैं। हर दुखियारे की हंसी में, प्रेम की तलाश में भटकते हृदयों में, स्वयं के पूर्ण होने की यात्रा कर रहे साधकों में, संगीत की झनकार में और गायन की मिठास में, हर कहीं वो ही हैं।

जीव मात्र से प्रेम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सारा संसार ईश्वर का ही रूप है। जड़ हो या चेतन, सब में ईश्वर व्याप्त है। कम से कम भारतीय मनीषा इसी सिद्धांत पर विश्वास करती है और हमारी आस्था धर्मिता इसी यकीन के इर्द गिर्द बुनी गई है। पानी, हवा, आग, वृक्ष, नदी, पुष्प, हम इन सब में ईश्वर को महसूस करते हैं, उनके होने पर यकीन करते हैं। हम मानते हैं कि ये संपूर्ण जगत उस विराट का ही स्वरूप है।

श्रोताओं, भले ही धरती के एक छोर का इंसान दूसरे छोर के इंसान को नहीं जानता हो, दोनों की अलग अलग संस्कृतियां रही हों, सदियों से खान पान पहनावे के अलग तरीके रहे हों, अलग भाषाएं भी हों, फिर भी सबके मानस में ईश्वर मौजूद रहा है। हर वक्त हर देश में अपने अलग अलग रूपों में वो मौजूद अवश्य रहा है। इतिहास के हर कालखंड में हर देश काल में ईश्वर की एक विशेष अवधारणा हमेशा से रही है और उसी सनातन तलाश में हर मनुष्य सदियों से लगा हुआ है।

श्रोताओं, बहुत से लोग ईश्वर को अलग अलग रूपों, रंगों और आकार में पूजते हैं। कोई मूर्ति के रूप में पूजता है तो कोई अग्नि के रूप में और कोई निराकार। कुछ लोग प्रकृति के हर कण को ईश्वर मानते हैं। दरअसल ईश्वर हमारे भाव जगत का विषय है। जैसी हमारी भावना, वैसा ही हमारा ईश्वर।

किसी के लिए ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में बसा है, तो कोई उसे अपने भीतर पाता है। किसी को उसकी साधना में लीन होकर सुख मिलता है, तो कोई उसे अपनी कला में उभारता है। धर्म, दर्शन, विज्ञान की परिभाषाएं ईश्वर को समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन ये अनुभूति सबसे अधिक स्वयं पर निर्भर करती है। व्यक्ति जिस तरह चाहता है उससे अपना नाता जोड़ लेता है।

ज्ञानी जन कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ है और कण कण में व्याप्त है। उसकी शक्ति से ही आकाश में विस्तार है, उसकी शक्ति से ही वायु का श्वास है, उसकी शक्ति से ही सूर्य चमकता है और उसकी शक्ति से ही सभी जीवित हैं। वही जगत का सत है, वही आत्म की आत्मा है।

श्रोताओं, हमारा ईश्वर हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा का ही रूप है। उसे हम भीतर ढूंढें या बाहर जगत में, अंततः हम पाते यही हैं कि वो हर कण में शामिल है, जर्रे जर्रे में उसी का रूप है, उसी के नाम की झनकार है। तो इस संसार के कण कण में उसके दर्शन का संकल्प लिए संपन्न होती है आज की भजन यात्रा। अब अनुमति दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भारत भूमि में ऐसी पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा और देश हित के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे ही भारत के एक महापुरुष थे जिन्हें हम सभी आदर और सम्मान से दादा भाई के नाम से जानते हैं, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। वो थे दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजी शासनकालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी और भारत के आरंभिक राजनेताओं के अग्रज और सामाजिक नेता थे दादा भाई। 4 सितंबर सन 1825 को दादा भाई का जन्म मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि दादा भाई के पूर्वज बड़ौदा के पास नवसारी के रहने वाले थे, जो सुगंधित फूलों और इत्र की खुशबू के लिए प्रसिद्ध था। उनके पुरखे चांदजी कामदिन बेहद खुशबूदार लाजवाब इत्र तैयार करने की कला में माहिर थे, जिनकी प्रसिद्धि नूरजहां बेगम के कानों तक पहुंची और उन्हें इनाम के बतौर जागीर दी गई। 4 की छोटी सी बाल्यावस्था में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन उनकी मां ने बेहद समझदारी से दादा भाई का पालन पोषण किया, साथ ही उन्हें शिक्षित करने में भी पूरा सहयोग दिया। दादा भाई हमेशा कहते थे कि वो जीवन में जो भी बन सके सिर्फ अपनी माँ की वजह से। देशभक्ति की भावना और चरित्र निर्माण में सदैव अपनी जननी और मातृभूमि के लिए वो ऋणी रहे।

दादा भाई नौरोजी के समय सौभाग्य से उन दिनों शिक्षा बिल्कुल मुफ्त हुआ करती थी, जिसका फायदा उन्हें ये मिला कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए। इस बात का बेहद गहरा प्रभाव उनके जीवन पर और उनके विचारों पर भी पड़ा और वो जीवन पर्यंत मुफ्त शिक्षा के ऋणी रहे। उनका विचार था कि हर बच्चे को, चाहे वो गरीब हो या अमीर, उसे शिक्षा प्राप्त करने की सहूलियत मिले। दादा भाई बचपन से ही होशियार और मृदुभाषी थे। दादा भाई नौरोजी ने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के पहले दौर में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में शिक्षा पाई और एक मेधावी छात्र के तौर पर अपना स्थान सुरक्षित किया था। उसी संस्था में शिक्षक के रूप में जीवन का आरंभ किया और वहीं गणित के प्रोफेसर भी बन गए। भारतीयों के लिए तो उन दिनों किसी शैक्षणिक संस्थाओं में ये सर्वोच्च पद था जो उन्होंने हासिल करके दिखाया था। लेकिन अचानक से जीवन में एक नया मोड़ आया। कपास के प्रसिद्ध व्यापारी बंधु कैमास ने दादा भाई को अपने व्यापार में साझेदारी का न्योता दिया। लंदन के लिवरपूल में उनका कार्यालय बनवाने के लिए वो इंग्लैंड चले गए, लेकिन फर्म में अफीम और मदिरा का व्यापार भी होने लगा। दादा भाई को ये पसंद नहीं आया, वो फर्म छोड़कर वापस भारत लौट आए। इंग्लैंड में रहने से उन्हें इंग्लैंड और भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालतों की तुलना करने का अवसर मिला और भारत की दुर्दशा देखकर पहले से भी ज्यादा बेचैन हो उठे। दादा भाई नौरोजी ने सन 1859 में इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी एंड कंपनी नाम से खुद की एक फर्म शुरू की, जो मुख्य रूप से कपास का व्यापार करती थी। इंग्लैंड में शिक्षा पाने वाले भारतीय विद्यार्थी धीरे धीरे दादा भाई से प्रभावित हुए बिना न रह सके और इस अवसर का लाभ उन्होंने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों की भलाई के लिए लगा दिया। एक और उद्देश्य था जो दादा भाई साधना चाहते थे, वो ये था कि सरकारी प्रशासकीय संस्थाओं का अधिक से अधिक भारतीकरण करने का आंदोलन तीव्र हो। उनके प्रयास कुछ हद तक सार्थक भी रहे और जो विद्यार्थी उनके संपर्क में आए उनके विचारों के समर्थक हो गए। उनमें सुप्रसिद्ध मोहनदास करमचंद गांधी और फिरोज शाह मेहता जैसे नाम प्रमुख हैं।

लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना अंग्रेजों और भारतीयों के संबंध के सुधार के लिए हुई। दादा भाई की लिखी पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पढ़कर कितने ही अंग्रेज भारत से सहानुभूति रखने लगे और भारतीयों की स्थिति से अवगत हुए। सन 1886 में दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। लगभग 6 सालों बाद वो ब्रिटेन की लोकसभा के सदस्य चुने गए। उनकी दलीलों का परिणाम सकारात्मक हुआ और भारत के सैनिक और असैनिक आए। साथ ही व्यय की जांच के लिए वेल्बी कमीशन बैठाया गया। वो ब्रिटेन की सभा से भारत के प्रति अपना पक्ष हमेशा रखते रहे। उनका कहना था कि अंग्रेजी राज की खराबियां तभी दूर हो सकती हैं जब अंग्रेज घरेलू मामलों से भारतीयों को स्वशासन के अधिकार सौंप देंगे। 81 साल की परिपक्व आयु में दिसंबर सन 1906 में दादा भाई तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वो संयम और कठोर परिश्रम को अच्छी सेहत का राज कहते थे और स्वयं पालन भी किया करते थे। लगभग आधे दशक तक दादा भाई ने भारतीयों के विश्वास का मान रखा, भारत की जनता की अटूट श्रद्धा को सदैव सर्वोपरि सम्मान दिया। वो भारतीयों के संदेशवाहक और राजदूत थे जिन्होंने ब्रिटेन और भारत के संबंधों के सुधार और भारतीयों के अधिकारों के लिए कभी समझौता नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों के बीच एक अहम स्थान भी बना लिया। 30 जून सन 1917 को भारत के पितामह अपने समस्त भारतीय परिवार को छोड़कर इस संसार सागर से विदा हो गए। ये दादा भाई के कार्यों का प्रभाव था। जो पुण्य काम उन्होंने प्रारंभ किया उसे गांधी जी जैसे उत्तराधिकारी मिले। कोटि कोटि नमन हमारे ऐसे पितामह दादा भाई नौरोजी को।

0: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
1: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
0: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज।
1: हेलो, पप्पू पेजर बोल रहा हूँ। ए झंटू ले झटक, दादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक।
2: नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, फूल रंग तितली बादल और मुस्कुराता हुआ सतरंगी इंद्रधनुष, जी हाँ, ये संसार है बच्चों का अलबेला सा संसार। एक ऐसा संसार जहाँ वक्त का कोई हिस्सा कभी मुरझा नहीं सकता है। तो चलिए, बच्चों के इसी अलबेले संसार में आपको लिए चलते हैं। एक छोटे से अंतराल के बाद आप सुनेंगे नन्हे श्रोताओं का कार्यक्रम बाल सभा।

0: कि मैं हूँ मुकेश खन्ना, आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी, और आज हम एक बहुत ही संजीदा से विषय पर बात करने जा रहे हैं। बाल सभा में मैं हर बार आपके लिए कुछ ऐसे विषय लाती हूँ जब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ये विषय बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन आज एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिसे लेकर अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते, और आज की बाल सभा का विषय है नशे का साथ और ज़िंदगी का नाश। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन सच में जब हम नशे का साथ करते हैं, नशे के साथ चलते हैं, तब कहीं ना कहीं जिंदगी हर दिन हर पल मरने से भी बदतर हो जाती है। अब बच्चों, ये तो आपको लगता ही होगा कि हर बच्चा बहुत सारे सपने लेकर पैदा होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है, और कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हैं बच्चों, जो इन सपनों को बीच रास्ते में तोड़ देती हैं, और नशा उनमें से एक है। अब अक्सर हम सोचते हैं कि नशा तो केवल बड़े लोग करते होंगे, है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि आज बहुत से छोटे बच्चे और किशोर इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोई जिज्ञासा में, कोई दोस्तों के दबाव में, कोई तनाव में, तो कोई केवल ये सोचकर कि एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है, किक मिलती है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं नशे के रास्ते पर चलने के लिए, और बस यही होता है आपकी जिंदगी की घड़ी का अलार्म। बजता है माँ बाप की आवाज के रूप में, टोकते हैं वो आपको, समझते हैं कि आप गलत रास्ते पर हो। खतरा यहीं से शुरू होता है, लेकिन वो जो आपको बुराई के रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो आपको एक और समझ, एक और सोच पैदा करते हैं कि किसी की मत सुनना। वो ये भी बताते हैं कि माँ बाप से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने अपने माता पिता की बात मान ली तो आप उनका रास्ता छोड़ देंगे और सतमार्ग पर चलने लगेंगे, और यहीं से नशे की हार शुरू हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेंगे, सोचिए। वो तो चाहते हैं कि आपके सपने टूटें, वो चाहते हैं कि आप एक बुरे नागरिक के रूप में बड़े हों, क्योंकि नशा कभी भी सीधे और बड़े रूप में नहीं आता, वो दोस्ती का मुखौटा पहनकर आता है। कोई कहता है बस एक बार ट्राई कर लो, कोई कहता है इससे मजा आएगा, और कोई कहता है डरते हो क्या। लेकिन जो चीज़ एक बार मजाक लगती है, वो धीरे धीरे आदत, और आदत में धीरे धीरे लत बन के आपके जीवन में उतरती है। बच्चों, नशे का कारोबार करने वाले लोग बेहद चालाक होते हैं, उन्हें पैडलर भी कहा जाता है। वो जानते हैं कि बच्चों को कैसे फंसाया जाए। कभी आपको मुफ्त में कोई चीज़ें देते हैं, कभी आपसे दोस्ती करते हैं, कभी सहानुभूति दिखाते हैं, और उनका उद्देश्य किसी की मदद करना नहीं होता बच्चों, बल्कि नए ग्राहक ढूंढना होता है, नए ग्राहक तलाशना होता है, आप जैसे अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों में से अपने पैडलर की तलाश करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये सब बातें मैं आपको बाल सभा में डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए कर रही हूँ। और सबसे दुखद बात यह है बच्चों कि कई बार जो बच्चा शिकार बनता है, वही आगे चलकर दूसरे बच्चों को फंसाने लगता है, और एक बुरे चक्र की शुरुआत हो जाती है। और आप जानते हैं, नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये पढ़ाई, परिवार, दोस्ती, आत्मविश्वास, भविष्य, सब कुछ प्रभावित करता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने सपनों से दूर होते जाते हैं। लेकिन आज हमारी बाल सभा केवल खतरे की बात नहीं करेगी, आज हम उम्मीद की भी बात करेंगे। क्योंकि तमाम खतरों के बीच में एक रोशनी जरूर होती है जो आपको वापस आपके घर का रास्ता दिखाती है। और आज ऐसी ही रोशनी के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे दो युवा साथी मौजूद हैं, जिनमें से एक दोस्त ने हमारे नशे की कठिन दुनिया को बहुत करीब से देखा है, वो उस रास्ते पर गए हैं, संघर्ष किया है और फिर साहस के साथ उस रास्ते से बाहर निकलकर आज एक नया जीवन जी रहे हैं। उनकी कहानी हमें ये बताएगी कि गलती होने के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता, सही निर्णय, परिवार का साथ, मित्रों का सहयोग और आपकी खुद की इच्छा शक्ति इंसान को वापस लाकर खड़ा कर सकती है। तो सबसे पहले हम अपने पहले साथी से बात करेंगे, क्योंकि वो बहादुरी से इस रास्ते से बाहर निकले हैं। नमस्ते।
3: नमस्ते मैम।
1: आपका परिचय पूछ सकती हूँ अगर आपकी इच्छा हो हमारे और साथियों को बताने की? आपका नाम क्या है?
3: मैम, मैं अपना परिचय कुछ अलग तरीके से दे सकता हूँ, अपना नाम बिना बताए?
1: बिल्कुल, ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है। हम आपके काम को जानना चाहते हैं और कई बार हमारा काम हमारे नाम से ऊपर होता है, तो आप बताइए कि आप अगर खुद का नाम रखते, जो आपका नाम है वो बिल्कुल मत बताइए, आप अगर खुद का नाम रखने का आपको मौका मिलता तो क्या रखते और आज हम आपको उसी नए नाम से बुलाएंगे?
3: तो मैं जो अपना नाम रखता, नया नाम रखता जो मुझे पसंद भी है कई, तो मैं अपना नाम एलेक्स रखता, क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद है।
1: ठीक है, तो आज इस पूरे बाल सभा के दौरान हम आपसे जब भी बात करेंगे तो एलेक्स आपको पुकारेंगे।
3: जी,
1: तो आज आपके पसंदीदा नाम की शुरुआत हो चुकी है। एलेक्स, आपका बचपन का थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसा था?
3: जी, बचपन हमारा ऐसा था कि हम नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मतलब घर वाले काम करते थे और बाहर हम घूम रहे बच्चे, हम जैसे छोटे बच्चे घूमते थे हम वैसे ही बाहर घूमना फिरना करते थे। और इसी दौरान जो हुआ कि हमारे साथ जो हम भैया लोगों में बैठे, बड़े बच्चों में, तो उनको हमने देखा कि वो क्या करते हैं, वो कैसे जीते हैं, तो हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे वो जो नशा करते हैं, वो चीज़ देख के हमें अच्छा लगने लगा था पहले कि यार भैया लोग करते हैं, ये क्या चीज़ करते हैं, जो नशा करते हैं वो ऐसे करते हैं, जिससे हमें लगता था कि यार हमें भी बड़े होके करना है एक बार।
1: तो आप देख रहे थे अपने से बड़े लोगों को?
3: जी।
1: और आपको लग रहा था कि ये जो जिंदगी जी रहे हैं ये हमारी जिंदगी से थोड़ी बेहतर है, इस जिंदगी में मजे हैं।
3: जी,
1: है ना। तो आपको भी मजा करने का ख्याल बचपन में ही आया।
3: जी,
1: ठीक है। पहली बार आपकी नशे से मुलाकात कब हुई?
3: जी, पहली बार हमारी नशे से मुलाकात जब हुई थी, जब हमारी जो घर की सदस्य हैं, जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी हैं, दादी जी,
1: जी,
3: तो उनकी तबीयत खराब थी, तो सब उनकी तबीयत के पीछे लगे हुए थे, तो हम क्या करते थे, हमें टाइम मिल जाता था और भैया लोग के साथ आना जाना हॉस्पिटल में लगा ही रहता था हमारा भी, तो उनके साथ जब वो नशा करते थे तो हम भी उनके साथ ही उस समय होते थे, हमें देख के खुशी होती थी कि यार हम इनके साथ खड़े हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, उससे हमें लगता था कि हमारी एक नई पहचान बनेगी। फिर उसके बाद कभी भैया ने हमसे पूछा कि ट्राई करोगे, तो हमने पहले तो मना किया, फिर उन्होंने ये कहा कि भाई देखो तुम लड़के हो, तुम्हें ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा, तो हमने ये चीज फिर ट्राई की और ये शुरुआत हमारी जबी से हुई।
1: तो एलेक्स, आपकी बातों में जो दो बातें मुझे अपने सुनने वाले जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, इनफैक्ट अगर मुझे बड़े भी सुन रहे हैं, तो एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं कि घर में यदि कोई ऐसा कोई घटना या ऐसा कोई स्थिति आ जाती है जब घर के लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं,
3: जी,
1: तो अपने बच्चों का ध्यान रखना ना भूलें ऐसे वक्त पर जब आप पूरी तरह से किसी काम में लगे हुए हैं, घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ये जरूर देखें कि उस वक्त आपके बच्चे आपकी उस व्यस्तता का फायदा उठाकर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। पहली चीज जो एलेक्स मुझे तुम्हारी बातों से नजर आई है। दूसरी चीज, तुम लड़के हो,
3: जी,
1: यही कहा था आपसे,
3: जी,
1: आप याद रखिए लड़का होने का मतलब गलत रास्ते पर चलना बिल्कुल नहीं है। मैं अगर बहुत खुलकर कहूँ तो लड़के होने की पहचान को जो इस तरीके से किया जाता है कि आप नशा कर सकते हैं, आप रो नहीं सकते हैं, आप इमोशनल नहीं हो सकते हैं, नहीं, ये गलत बातें हैं और इन्हें आज ही स्वीकार करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी?
3: उस वक्त मेरी उम्र थी 13 या 14 साल।
1: कभी नशा करके जब पहली दूसरी बार आए थे तो खुद को ऐसा महसूस कर रहे थे कि घर वालों से क्या कहोगे या क्या हुआ था?
3: जब पहली बार नशा किया तो धूम्रपान किया था, जिससे बहुत उत्साह से भर गया था मैं, और मैंने अपने दोस्तों जो मेरे साथी थे उनको ये बताई चीज़ कि यार मैं आज ये करके आया हूँ, भैया ने मुझे कराया, और उन लोगों ने फिर वो बोलने लगे भाई तू तो अब बड़ा हो गया, तू ये करने लगा। तो उनके बीच एक अच्छी, ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी इमेज बन रही है।
1: ओहो, यहाँ पे भी बच्चों आप सुनते चलिए, बहुत बारीकी से ध्यान लगाकर कान लगाकर आज की बाल सभा सुनिए और समझिए कि जब एलेक्स कोई गलत काम करके आया तो उसे गलत काम की अच्छी इमेज बन रही है। ये एक भ्रांति हो रही थी कि कुछ गलत काम करके आया तो मतलब उसके कॉलर और ऊंचे हो गए हैं। तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो हमें अपनी इमेज बिल्डिंग की चिंता है ना, और वो भी गलत इमेज बिल्डिंग की, ये बहुत मायने रखती है। कब आपके घर वालों ने पहली बार आपको पकड़ा?
3: जी ऐसा हो गया था कि हम भैया लोगों के साथ धूम्रपान कर रहे थे और जो हमारे मोहल्ले के पड़ोसी हैं उन्होंने हमें देख लिया और उन्होंने इस चीज की फोटो खींच के हमारे घर वालों को भेज दी थी।
1: क्या हुआ फिर?
3: फिर घर वालों ने हमें मारा भी था और ये चीज हमें उस समय समझाई थी कि ये चीज तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, ये चीज गलत है।
1: तो उस मार का और उस डांट का आप पे क्या असर पड़ा था?
3: उस समय ऐसा लग रहा था कि सब तो करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जहाँ पिताजी भी हैं वो भी ये सब चीजें करते हैं, तो हमें ये लग रहा था मन में कि हम भी कर सकते हैं, जब आप कर सकते हैं तो हम भी करेंगे और हमें भी करना है
1: जी।
3: फिर उसके बाद जब ये मार पड़ी तो फिर दो चार दिन बाद जब मैं भैया लोगों के पास वापस गया, फिर उन्होंने पूछा कि दो चार दिन से कहाँ थे, दिखे नहीं। फिर जब मैंने ये चीज़ बताई तो उन्होंने ये चीज़ भी कही कि देखो जब तुम्हारे पिताजी कर सकते हैं तो तुम भी कर सकती हो ये चीज़, वो तुम्हें गलत बता रहे हैं, ये चीज़ ऐसी है कि इससे टेंशन दूर होता है, तुम्हें भी पढ़ाई का टेंशन है, दुनियादारी का टेंशन है, वो ये चीज़ बताने लगे कि ये चीज़ अच्छी है।
1: एलेक्स रुकते हैं, फिर से बच्चों से बात करते हैं क्योंकि ये विषय ही इतना, बच्चों क्या कहूँ, मतलब बहुत तकलीफ दे विषय है। कहते हैं ना कि यहाँ पर माता पिता को कान लगाने की शायद ज़रूरत है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, है ना। बच्चों को कभी भी आप जब उपदेश देते हैं तो मुझे लगता है शायद उन्हें इतना समझ में नहीं आता जितना वो आपके व्यवहार से सीखते हैं। तो यहाँ पर आप एलेक्स की बात सुनकर ये समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि हम बच्चों से ये कहते रहें कि ये गलत काम है और उनके सामने हम खुद करते रहे तो ये एक गलत नज़ीर पेश करता है और आपको शायद यहाँ पर रुक जाना चाहिए और थम जाना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी गलत काम जो बच्चों के लिए गलत है वो इक्वली आपके लिए भी गलत है, और अगर आप वो बच्चों के सामने कर रहे हैं तो कल आप बच्चों को उसे करने से मना करते वक्त रुक नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए तो ऑलरेडी माहौल में ऐसे लोग हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि भाई पिता करते हैं तू क्यों नहीं। एलेक्स आगे की कहानी।
3: फिर उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया तो फिर हम पहले जो हम करते थे कि हम कभी कभी धूम्रपान करते थे, फिर उसके बाद हमें आदत लगी कि हम डेली करने लगे
1: जी।
3: और धूम्रपान करने के बाद हमें शुरुआत में ऐसा होता था कि हमारा माइंड जो था काम करना बंद कर देता है क्योंकि नशा होता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता था कि अब हाँ अब हम टेंशन फ्री हो गए हैं, और फिर ये लाइफ अच्छी लगती थी भैया लोग की, धूम्रपान कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं, और उनकी ये हमें ऐसा लगता था कि ये उनकी आज़ादी है और ऐसी आज़ादी हमें भी चाहिए।
1: तो बच्चों आप सुन ही रहे होंगे कि ये आज़ादी आपको कौन से गर्त में ले जा रही है ना। और एलेक्स से हम कुछ और जानेंगे लेकिन एक और हमारी साथी हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो खुद तो इस राह पर नहीं गई, लेकिन वही बात कि जब उसने बचपन से देखा कि घर के लोग नशे के आदि हैं तो उसकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। नमस्ते।
4: नमस्ते,
1: क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम प्रीति है।
1: प्रीति, आपकी नशे से पहली मुलाकात इनडायरेक्टली कब हुई, क्योंकि आप तो इस मार्ग पे नहीं है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपकी मुलाकात कब हुई?
4: देखा जाए तो पहली मुलाकात, पहले तो जब छोटे छोटे थे तो किसको लगता है कि क्या हो रहा है आसपास, ज़्यादा पता नहीं था। जब थोड़े बड़े हुए, स्कूल वगैरह जाना शुरू किया और स्कूल में बताया जाने लगा कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जब हम घर आते थे और घर पर देखा कि घर पर तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर स्कूल में टीचर क्यों ऐसा बोल रही कि ये गलत है, तो इतना छोटे बच्चों के मन में सवाल बहुत आते हैं, सवाल, और मुझे तो सवाल करना बहुत पसंद है। तो फिर एक दिन मैंने अपनी टीचर से पूछा कि मैम नशे से क्या होता है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि अगर कोई नशा कर रहा है तो इससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। आप जो नशे की चीज़ें मिलती है अगर आप उससे भी देखोगे तो उसके पीछे भी लिखा होता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं घर गई, अब यूँ छोटे बच्चों को मम्मी पापा को दुकान भेजना रहा, तो उस टाइम पे मेरे घर पे तो सबसे बड़ी मैं ही थी लेकिन छोटी थी, तो मम्मी बोलती है दुकान चले जाओ, अपने लिए भी कुछ ले लेना और हमारे लिए भी ये ले आना। चली तो मैं गई लेकिन जब वापस लेकर आ रही थी तो मुझे टीचर की बात याद आई कि इस पर लिखा होता है, और जब मैंने उसको पढ़ा और मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि ये तो गलत है ना, तो मुझे एक सीधा और सरल जवाब मिल गया, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम इस इन सारी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे सवाल नहीं करते, टीचर तो पागल है। तो ऐसा कह दिया गया, तो मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा बोलूँगी तो हो सकता है कि मुझे ही डांट पड़ जाए, तो मैं चुप हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद वापस ये हुआ कि शाम का टाइम था, स्कूल से हम लोग आ गए, खेल वेल कर भी आ गए, अब घर पर काम करना था, लेकिन पापा उसी टाइम पर पापा आए और पापा शायद मदिरा पान कर आए थे, तो ये था ना कि थोड़ी थोड़ी सी रेड आइज हो जाना, चिड़चिड़ापन करना, गुस्सा करना, तो वो आए तो गुस्सा करने लगे। अब हम यही सोच रहे बैठकर कि आखिर हुआ क्या है, कुछ तो हुआ होगा। फिर मम्मी ने कहा कि पापा को पानी दे दो, हम पापा के पास गए, हमने बोला पापा पानी चाहिए आपको, तो उन्होंने बोला अपने काम से काम रखो। तो अब उस दिन से सवाल आया कि ये क्या है, फिर इसमें जानने की इच्छा हुई कि और क्या है, क्या हम ये नहीं कर सकते, या फिर पापा ऐसे क्यों थे, या फिर मम्मी जो मंगाती वो क्या है, क्योंकि नशे कई प्रकार के होते हैं। तो अभी आता ना ये क्यों है, कैसा है, बहुत सारे सवाल आए। उस दिन से हमने जानना शुरू किया, वो आई थिंक पहला दिन था हमारा कि हमने जाना कि ये सवाल उठा, मतलब कि हमने उसको जाना कि वो क्या है।
5: प्रीति एक बात बोलूं, जब आप बात कर रहे हो ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उन सब बच्चों के लिए बहुत दर्द पैदा हो रहा है जो अपने घर वालों से कितनी उम्मीद करते हैं ना कि मतलब यही है मेरे सबसे करीब, इन्हीं से मैं पूछ सकती हूँ कि सही क्या है गलत क्या है, और वही हमें अपनी बातों से अपनी आदतों के कारण खुद से दूर कर रहे हैं कि जाओ तुम्हारे काम की चीज़ नहीं। और मैंने बहुत घरों में देखा है कि ठीक है आपने जो स्थितियाँ बताई हैं, मैंने बहुत ऐसे ऐसे घरों में देखा है जहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन बड़ी आसानी से बच्चों से कहते हैं कि बेटा अभी कुछ देर तक कमरे में मत आना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कमरे से बच्चे को भगा रहे हैं तो उसकी बाल मन पर क्या असर पड़ रहा है? आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, यकीन कीजिए आपकी पार्टी में जब आप बच्चों से कहते हैं कि थोड़ी देर आंटी अंकल को अपना काम करने दो, देखो आप लोग भी तो मज़े करते हो, अभी हम लोग मज़े कर रहे हैं, तो नशा मज़े की चीज़ हो सकता होगा आप लोगों के लिए, लेकिन बच्चों के बाल मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये प्रीति की बात सुनकर हमेशा के लिए याद रखिएगा। प्रीति आगे की कहानी।
4: उसके बाद सवाल जानने की इच्छा आगे आगे जानते रहे, थोड़े थोड़े और बड़े हुए तो हमारा स्कूल सरकारी, तो उसमें ये लड़का लड़की दोनों साथ में ही पढ़ते हैं
5: जी।
4: तो जब हमने साथ में देखा दुकान, हम भी भाई लंच हुआ है और जाना है हमको चॉकलेट लेने, तो हम दुकान पहुंच जाते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे ही साथ के कुछ बच्चे नशे की चीज़ें ले रहे हैं, तो अब जब हमने उनसे बातचीत करी, हमने बोला टीचर तो कल बोल रही थी कि नहीं लेना है, तुम तो ले रहे हो, तो बोले अरे यार तुम्हें नहीं पता, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो बड़े हो गए। मैंने बोला ऐसे कैसे बड़े हो गए, तो बोले तुम है ना एक बार अपने भाई से या तो किसी अच्छे दोस्त से पूछ के जाके, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है उसे जाके पूछो। तो मैंने बोला यार मैं एक बार वापस टीचर से पूछूंगी कि क्यों ऐसा, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों। ये सवाल आएगा ना कि सिर्फ लड़कों के लिए क्यों, क्योंकि स्कूल में तो कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं, क्या सिर्फ ये लड़के ही कर सकते हैं। तो जब इस बारे में मैंने अपने दोस्त से बात किया तो बोले ये ऐसा थोड़ी ना होता है, फिर उसने बताया कि वो भी एक नशा करती है।
5: अच्छा आपकी दोस्त ने बताया कि वो खुद भी नशा करती है, तो मतलब तहें खुलती जा रही हैं। अभी हमको लग रहा था कि हमारे माता पिता ही हमसे नशे का सामान मंगा रहे हैं जो कि उन्हें कभी नहीं मंगाना चाहिए। अपने बच्चों को आप गलत रास्ते का परिचय स्वयं दे रहे हैं कि बेटा इस तरीके से इस रास्ते से होकर 2 रुपए में ये आ जाता है, 20 रुपए में वो आ जाता है ना, तो धीरे से बच्चे फिर घर से पैसे भी चुराने लगते हैं, है ना। ऐसे भी बच्चे आपको रास्ते में मिले होंगे, ये जो सफ़र है ये इतना आसान नहीं है, बहुत अंधेरा है इस रास्ते पर, और पर जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बात की कि आज की बाल सभा सिर्फ खतरे की बात नहीं करती बल्कि उम्मीद की रोशनी भी बिखेरती है। यहाँ तक तो ठीक है कि नशे से परिचय हो गया, माता पिता को समझ में आ गया और आपको भी अपने माता पिता साफ साफ समझ में आ गए, है ना, क्योंकि कई बार आप उम्र में बड़े होने से बड़े नहीं हो जाते दोस्तों, कई बार आप बड़े होकर बच्चों के सामने बहुत गलत उदाहरण पेश कर जाते हैं और उस वक्त आप बच्चों से कुछ कहने लायक नहीं बचते। आप लोगों को, दोनों से मेरा सवाल है, आप खुद नशे से बहुत बुरी तरीके से लड़कर इस रास्ते पर आए हो कि आज लोगों को नशे की लत से बाहर निकालने का काम कर रहे हो, है ना? एलेक्स आप भी, तो आपके लिए तो मैं चाहूंगी कि हमें, हमारे जो साथी हमें सुन रहे हैं आज बाल सभा में, वो अपने घर पर खड़े होकर सिर्फ आपके रिस्पेक्ट में एक बार खड़े हों, क्योंकि नशे की लत से बाहर निकल कर दूसरों को नशे से बचाना बहुत हिम्मत का काम है दोस्तों। तो एक सेकंड के लिए खड़े होइए, फिर अपनी जगह पर बैठ जाएगा, और एलेक्स के लिए खुश होइए और अपनी सारी शाबाशियां भेजिए इसको कि इस लड़के ने उस रास्ते से बाहर निकलकर और बच्चों को बाहर निकालने के लिए तय किया है। एलेक्स बहुत बधाई तुमको, तुम बहुत तारीफों के लायक हो, बहुत हिम्मत दिखाई है आपने। कैसे आए इस रास्ते पर कि आप अब दूसरों को नशे से बचाओगे?
3: मैं जब नशा करता था तो उस समय हमारे स्कूल में हमारे संस्था की दीदी आई और पुलिस वाली मैम आई और उन्होंने ये कहा कि पास ही में एक कॉलेज है और उसमें हम कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाएंगे और भी चीज़ें सिखाएंगे। तो हमें लगा कि यार चलो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो रास्ते में जाते जाते नशा करने को मिल जाएगा, क्योंकि रास्ता तो दूर है तो खाली है, तो वहाँ पे कहीं कई जगह होती है ना अंधेरी सड़कें या कोई पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है उस पे, उसके अंदर बैठ के ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था। तो पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, वहाँ जाना फिर आदत में बन गया और अच्छा लगने लगा वहाँ जाके भी। और जब हमने हमारी निहारिका दीदी को देखा तो उनसे बात करने में भी अच्छा लगने लगा और उन्होंने हमें एक सेशन के दौरान बताया कि अगर आपको कुछ भी बात करनी हो जो आप किसी से नहीं कर पाते तो वो आप आके मुझसे कर सकते हो, मैं उस बात को गोपनीय भी रखूंगी और आपको उसके लिए अगर सजेशन चाहिए होगा तो वो भी देंगे। तो फिर हमें लगा कि यार, पहले तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही बात करेंगे, हम तो अपना नशे में ठीक है, कुछ भी हो, दुख दर्द हो, नशा करो, सब टेंशन फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद ऐसा धीरे धीरे लगने लगा, क्योंकि नशा की जो आदत थी वो हो गई थी। और जो ये पहले हम मदिरा पान धूम्रपान करते थे, फिर ये ऐसा हुआ कि ये बड़े नशों
5: में तब्दील हो गई,
3: बड़े नशों में तब्दील हो गई और दोस्ती यारी भी ऐसी हो गई थी कि जो बड़ा नशा करते थे और उनको देख के नशा करने की, बड़े नशे करने की आदत हमें भी हो गई थी। फिर जब एक बार पापा जी ने भले ही नशे में हमसे कहा, लेकिन ये कहा कि तुम घर के बड़े लड़के हो और अब हमारे बाद, मतलब हमारी दादी का देहांत हो गया था उस समय और हमारे बाद अब तुम्हें देखना है, तो इसलिए अभी से ही कुछ ऐसा करना लग जाओ जिससे हमें आगे चल के कोई परेशानी ना हो तुमसे, क्योंकि हमारा कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े घर के बड़े, मतलब घर के बड़े लड़के हो तो जिम्मेदारियां उठाओ, घर का सामान लाना ले जाना करो, कुछ कुछ काम ऐसे जो घर के बड़े करते हैं अब वो तुम करो। तो ऐसा हुआ, फिर रियलाइज हुआ कि यार नहीं, अब ऐसा करना है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी है, तो शरीर आदि होने के बाद ऐसा लगता था कि अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो हेलुसिनेशन जो होता है वो होने लगता था कि हमारे आसपास कोई है, या हमारे सर में दर्द हो रहा है, सर गर्म होना, शरीर गर्म होना, अचानक से ठंडी लगना, ऐसा बहुत बार होने लगा। तो उन सब चीज़ों को देख के ये समझ आ गया था कि अब अगर ये चीज़ आगे तक की तो या तो शरीर नहीं बचेगा या फिर ऐसा होगा कि इसके आदि होके, इसमें ऐसा था कि ख़त्म दोनों तरफ ही होना था हमें, क्योंकि इसकी आदत ऐसी हो गई थी कि मैंने जब एक बार हिसाब लगाया तो मतलब दिन का 300-400 रुपए का ये चीज़, तो मैंने एक बार हिसाब लगाया तो मैंने एक साल में ही कम से कम 1,00,000 रुपए से ज़्यादा का ये सब नशा कर लिया। फिर मन में आया कि यार अगर मैं वो 1,00,000 रुपए बचाए होते तो आज मतलब कहीं ना कहीं मेरे काम आते, क्योंकि कई बार फिर उस टाइम लॉकडाउन भी लगा था तो ऐसा लग रहा था कि यार अगर पैसा होता तो काम आता, घर वालों को भी दे सकते थे ऐसा। फिर दीदी मिली और उनसे बात भी की और उनको ये चीज़ें हमने बताई कि दीदी हमारे साथ ऐसा ऐसा है, तो दीदी ने फिर हमारी काउंसलिंग भी करवाई, हमें ये चीज़ें समझाई कि ये चीज़ें गलत है, तो फिर हमने ये चीज़ें छोड़ने की कोशिश करना शुरू की। और मैं बस अपने जो भी साथी हमें सुन रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको, इसलिए आप इन सब चीज़ों में जाने ही मत।
5: लंबा रास्ता, कठिन रास्ता
3: जी,
5: और बिल्कुल रोशनी नहीं है
3: जी,
5: सब तरफ अंधेरा है। दिमाग यहाँ तक भ्रामक स्थिति में आ जाता है, जो आपने हेल्यूसिनेशन की बात की, दिमाग उस स्थिति में पहुंच जाता है जब आपको लगने लगता है कि भ्रांतियां होने लगती हैं कि आपके आसपास कोई है, आपको ये लगने लगता है किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको लगता है कुछ काम करोगे तो गिर पड़ोगे, ढीला पड़ जाता है शरीर पूरी तरह से, और आप जल्दी जल्दी थकने लगते हो, है ना। एक और बात कही थी एलेक्स ने कि मरना दोनों तरफ था, क्योंकि नशे के आदतन व्यक्ति हो जाते हो तब लौटना उतना आसान नहीं लगता जितना आसानी से आज हम बात कर रहे हैं बच्चों बाल सभा में। हमें बहुत सारे किशोर बच्चे सुन रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि उनके माता पिता भी इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और ये बात समझेंगे कि हर संभव प्रयास कीजिए अपने बच्चों को गलत रास्ते पर बचा लीजिए जाने से, क्योंकि उसने कहा ना कि जहाँ से लौटना मुश्किल हो वहाँ जाने से पहले कई कई बार सोचिए, क्योंकि अगर आपको तैरना नहीं आता तो नदी में कूद कर अगर किसी ने रस्सी नहीं फेंकी, निहारिका दीदी जैसी कोई दीदी आपको नहीं मिली जो आपको इस काले अंधकार में से निकाल लें, तो आपका जीवन सच मानिए जीने से बदतर हो जाता है ना। आप बात की गंभीरता को समझेंगे और एलेक्स जैसे लोगों से प्रेरणा लेंगे, उसको दीदी मिली, उन्होंने काउंसलिंग कराई, कैसे कैसे वो निकला है, लेकिन 1% ये भी तो हो सकता था कि कोई दीदी ना मिलती
3: जी,
5: तब ये जीवन नहीं होता ना। आज आप इस स्टूडियो में बैठे हो, आज आप बैठे नहीं होते ना
3: जी, बिल्कुल
5: किसी अंधेरी गाड़ी की तलाश कर रहे होते
3: जी,
5: है ना, कोई अंधेरा रास्ता देख रहे होते, किसी भैया को ढूंढ रहे होते जो नशे कर रहे हो, उससे ज्यादा नशे की आदत हो रही होती, और फिर क्या हो रहा होता, कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन आज ये रास्ता कितना अच्छा है, आज इस स्टूडियो में कितनी रोशनी है, और सबसे बड़ी बात आप दोनों बच्चों के दिलों में कितनी रोशनी है। प्रीति, लौटें तुम्हारी तरफ, कभी पापा को मना किया नशे के लिए?
4: हाँ, पापा को मना किया मैंने। एक बार तो ऐसा हुआ था जब थोड़े बड़े हो गए तो ये होने लगा ना, समझ में आने लगा, और इसके बाद बोलना, बोलते ना बोलना बहुत मुश्किल होता है, मैं भी कुछ टाइम तक बोले जाए तो नहीं बोल पाई, बहुत समथिंग 13 साल की हो गई हूँ, दिख रहा है, पता है कि गलत है, लेकिन बोलने की वो थोड़ी सी मन में बहुत सवाल है, लेकिन ये था कि कहाँ बोलूँ। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि मेरे को भी एक प्लेटफॉर्म मिला, एक मौका मिला, जो हमारी रवीना दीदी हैं, निहारिका दीदी हैं, ये लोग जब हमारे एरिया में आए और कहा कि एक मीटिंग है, इसमें आना है, मेरी जो दोस्त थी उन्होंने बोला कि चलना है, तो मैंने बोला हाँ चलते हैं। पहले दिन मैं गई, उस दिन ठीक था, घर पे कुछ नहीं हुआ, फिर एक दूसरी बार मीटिंग हुई तो घर वाले भी बोलने लगे कि कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास, फालतू बस एक फालतू जाकर बैठ जाते हो। तो मैंने कहा, सोचा उनकी बात पे, लेकिन मैंने बोला जब ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे तो मुझे कहीं तो बोलने का मौका मिलेगा। जब मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया तो सबसे अच्छी बात ये ना कि वहाँ पे ऐसा होता है कि आप बोलो, है ना, तो अब लगने लगा कि भाई कोई मौका दे रहा है। और जब दीदी ने कहा कि आप बात हमें कह सकते हो, हम किसी को नहीं बताएंगे, अब मैं तो मौका ढूंढ रही थी कि मेरे मन में सवाल है, कोई तो जवाब दे,
5: कोई तो सुने, पहली बात
4: कोई तो
5: बात
4: सुने। बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि सबसे सेफ स्पेस घर माना जाता है, माता पिता माने जाते हैं, और अगर वो ही ना सुने, वो ही तुम्हें कह दे कि तुम छोटे हो, तुम जो बोलोगे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बात काम की है, तो अब इसके बाद हमने बोला कोई तो सुन रहा है हमें, हम तो बोलेंगे। अब उसके बाद से तो लगता है कि बोलेंगे। जब वहाँ पे हमने बताया कि दीदी, पापा से जब हमने पूछा था तो पापा बोलने लगे कि तुम्हारी काम की चीज़ नहीं है, मम्मी बोलती कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें 5-10 रुपये मिल रहा है ना, बस ये काफ़ी है। तो मैंने कहा, घर वाले भी बोल रहे थे दीदी 5-10 रुपये मिल रहे वो तो ठीक है, तो अब क्या बताओ मैं घर पे बोलूँ कि नहीं बोलूँ। तो बोले कि ये तो इस चीज़ तो गलत है, तुम पता इससे तुम्हें भी नुकसान हो रहा है। मैंने बोला दी मैं तो नशा करती नहीं हूँ, मुझे कैसे नुकसान होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम्हारे पापा धूम्रपान करते होंगे तो उसका जो धुआं होता है वो भी तुम्हारे लिए भी खतरनाक है, और मदिरा पान कर कर आते हो तो इसमें घर में झगड़े कितने होते हैं, अगर हम अपने आसपास से देख ले तो कितने झगड़े होते हैं। और अधिकतर ऐसा होता है ना कि मान लो कि बगल वाले के घर में भी झगड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी आएगी कि पूरे मोहल्ले में आवाज़ गूंज रही है, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाले घर में झगड़ा हो रहा है, हम तो मूवी देख रहे हैं, लेकिन कई लोग बहुत जिसके घर में हो रहा है वो कितना परेशान होता है, बच्चा है तो उसके माता पिता सुन नहीं रहे हैं, वो बीच में जाएगा तो उसको डांट देंगे, तो फिर बच्चे के मन में आता ना कि इसमें हमारी क्या गलती है। एक चीज़ बहुत आ जाती है कि हमारी क्या गलती है, हमने थोड़ी ना कुछ कहा है किसी को, ना कोई हमारी बात सुन रहा है और ना ही कोई हमें जवाब दे रहा है, ऐसे जैसे कि हम हैं लेकिन है ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए। और लड़कियों का तो ये मान लिया जाता है कि लड़कियों की बात कौन ही सुनता है, लेकिन इसका मैंने बोलना इसलिए चालू किया क्योंकि मुझसे जो छोटे भाई बहन हैं, अब इसका असर उन पर
5: ना जाए।
4: हाँ, अब इसका असर उन लोगों पे जाना शुरू हो गया, जैसे कि मैं तो नशे से दूर हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है, लेकिन मुझसे जो छोटा भाई है वो इन चीज़ों में चला गया क्योंकि बीच में अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर चली गई थी, हॉस्टल चली गई थी। तो जब वहाँ से वापस आई तो मुझे पता चला, मेरे घर वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। मैंने बोला हैं ये कैसे हो गया, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मम्मी पापा इतना ध्यान रखते हैं, मैं दूर रही हूँ तो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब आसपास वालों ने बोला कि, और मैंने जब खुद अपने भाई को देखा मुझसे कितना छोटा है, मैंने बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर मैंने अपने पापा से सवाल करना चालू किया। वो मेरा पहला था कि मैंने बोला क्यों कर रहे हैं आप, तो बोलने लगे कि मैं कमा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा आता ना कि अगर हम अपने घर
5: मेरा पैसा
4: मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मेरा पैसा कुछ भी कर सकता हूँ, मैं 10th या 9th में थी। मैंने उनसे सवाल किया कि पापा ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करोगे, इस बात पे झगड़ा होने लगा उनका। तो मैंने बोला अगर आपको ऐसे झगड़ा करना है तो हम नहीं रह रहे आपके साथ। मैंने बोला मैं भी हॉस्टल में रहूंगी, मेरे भाई बहन भी हॉस्टल में रहेंगे। तो बोलने लगे तू इतनी बड़ी हो गई है, खुद से फैसला लेने लगी है ज्यादा, और ये होता ना कि ज्यादा बोलने लगे तो जुबान चलाने लग गई है,
5: हद में रहो
4: अपनी हद में रहो। तो मैंने उस दिन शांत हो गई, मैंने दूसरे दिन से वापस बोला कि पापा नहीं क्यों कर रहे हो आप। तो फिर एक बार तो ऐसे ही मेरा और पापा का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, पापा मान ही नहीं रहे थे। वो उस दिन शायद कोई फेस्टिवल था और घर में मेहमान आने वाले थे। अब हम सब लोग हैं, मम्मी के साथ में तैयारियों में लगी हुई हूँ, भाई बहन अपने खेलने में लगे हुए हैं, और वो कहीं से आए हैं और मदिरा पान कर आ गए हैं। अब ये था ना कि अब इंसान चिड़चिड़ा वाला, गुस्से वाला, अब वो लगे चिल्लाने के लिए कि काम क्यों नहीं हो रहा है जबकि हम कर ही रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो बोले मैं तो करूँगा मेरा पैसा। तो फिर उसमें मेरी थोड़ी सी बहस हो गई, तो मैंने बोला पापा अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, तो बोले मत कर, मेरा क्या जा रहा है, तू बात नहीं करेगी तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं होगा। तो लगभग एक हफ्ते तक मैंने अपने पापा से बात नहीं करी थी।
5: प्रीति की बातों से जो निकल कर आया है वो इतना है कि बंद दरवाजों के बाद भी आप अपनी कितनी भी मोटी दीवारें बनवा लीजिए, लेकिन जब आप नशे के आदि हो जाते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आवाज़ें बाहर तक पहुंचती हैं, और उस वक्त उन बच्चों के मन की स्थिति समझिए जो बार बार ये पूछते हैं इसमें हमारा क्या दोष है। जब वो किसी के सामने जाते हैं और बाहर वाले उनसे कहते हैं अरे कल रात में तुम्हारे घर पे बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी, तो इसमें उन बच्चों का क्या दोष है जो चुपचाप बैठे हुए हैं। प्रीति और एलेक्स ने आज मुझे लगता है कि बाल सभा में ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अगर हमें बच्चों से ये कहना है कि आप अपनी हद में रहो, तो ये निश्चित मानिए कि बड़ों के लिए भी कुछ हदें हैं जिसे उन्हें भी समझना पड़ेगा। तो प्रीति और एलेक्स, बातें इतनी आसान नहीं हैं, समस्या इतनी छोटी नहीं है कि एक बार की बातचीत में हम किसी निदान या समाधान पर पहुंच सके, लेकिन हाँ रास्ता कठिन है तो कहीं ना कहीं आप जैसे अगर रास्ते में हम सफ़र हुए तो रास्ता आगे हमें ले ज़रूर जाएगा, हमें उस उम्मीद की रोशनी की तरफ ज़रूर ले जाएगा जहाँ कुछ एलेक्स जैसे लोग निकल कर आएंगे, नशा छोड़ेंगे, और कुछ आवाज़ें रवीना दीदी और निहारिका दीदी जैसी भी हमें उम्मीद की रोशनी दिखाएंगी और शायद आपके जीवन को संवारने का प्रयास करेंगी। यही कह सकती हूँ कि इस बातचीत को हमें लगता है थोड़ा और लंबा होना चाहिए, पर आज की बाल सभा में हमें यहीं रोकना होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आज हमने जितनी बातें की हैं, क्योंकि सिर्फ बातें करते जाने से तो बच्चों कुछ नहीं होगा। और श्रोताओं आप भी हमें सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे होंगे, बच्चों की बातों में जो निकल कर आया है ना उसमें सिर्फ बच्चों के लिए सीख नहीं है, बहुत कुछ बड़ों के लिए भी सीख है। और आज की बाल सभा मुझे लगता है कि सिर्फ बाल सभा नहीं रह गई है बल्कि किशोर सभा भी हो गई है और बड़ों के लिए भी एक सभा हो गई है, जिसमें आपको ये समझना होगा कि नशा कोई किक नहीं है, कोई मौज नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि आज कई बार ऐसा हुआ है इन दोनों से बात करते हुए कि मुझे लगा है कि हम कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, कितने अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो एक अंधेरी गाड़ी, एक अंधेरा रास्ता, कुछ ऐसे लड़के तलाश रहा है जो उसको उसके घर की समस्याओं से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाकर एक बड़ी समस्या की तरफ धकेल रहे हैं जिसका नाम नशा है। आज का ये शो, आज की बाल सभा हमें हिम्मत, हमें मार्गदर्शन और हमें बदलाव की इच्छा देती है कि कोई भी व्यक्ति इस अंधेरे से बाहर आ सकता है अगर एलेक्स आ सकता है तो। है ना एलेक्स?
3: जी बिल्कुल
5: आ सकता है।
3: जी जी,
5: तो एक बार आप दोनों को फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें आप दोनों से बातचीत सुनकर और ये पूरी बातचीत से एक दिशा ज़रूर मिली होगी कि पहले तो हमें इस रास्ते पर जाना नहीं है, और अगर गलती से कहीं हम चले गए हैं तो लौटना मुश्किल नहीं है, आप लौट सकते हैं, बस आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज की बाल सभा यहीं संपन्न होती है। प्रीति आपका और एलेक्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा। ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: बाल सभा।
6: ये था बच्चों का अलबेला सा संसार, जहाँ जुगनू सी मुस्कुराहटें हर पल तैरती रहती हैं। उम्मीद है बाल सभा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।

0: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा। तो श्रोताओं, प्रस्तुत है आज इसका पहला भाग।
2: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, सेवानिवृत्त। कर्नल भामा ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें उन्होंने राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की सीमा पर महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में योगदान दिया। इंडियन आर्मी में आपकी कमिश्निंग, वर्ष 1988 में इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर 6वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। आपने सियाचिन ग्लेशियर, करगिल, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित किए। भारतीय थलसेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने कुछ समय तक डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी कार्य किया। आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अलावा भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के पूर्व छात्र रहे हैं। कर्नल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद अदिति, नमस्कार।
2: आज कार्यक्रम का पहला एपिसोड है। आपका भारतीय थलसेना के साथ काफ़ी लंबा तारुफ रहा है। हम आपसे कई विषयों पर चर्चा करेंगे और श्रोताओं को महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप एक सैनिक हैं और देश की सुरक्षा के जो इतने भी ऑपरेशंस हुए हैं, आपने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई है। तो मेरा प्रश्न जो है वो आर्मी ऑफिसर से है कि अगर मैं मोटे तौर पर पूछूं, तो एक आर्मी ऑफिसर हमारे श्रोताओं को भारतीय सशस्त्र सेनाओं के बारे में किस तरह से परिचित करवाना चाहेंगे?
3: जय हिंद श्रोताओं। भारतीय सशस्त्र सेना यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस 14 लाख के एक्टिव पर्सनल्स के साथ इस विश्व की एक सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्स है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं। ये जो फोर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में कार्यरत रहती है। हमारे देश के राष्ट्रपति हमारे सुप्रीम कमांडर हैं। अगर मैं मोटे तौर पे देखूं तो भारतीय सशस्त्र सेना के 4 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला होता है कि अपने देश की क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखना, अपने देश को भारी हमले से, किसी भी तरह के फॉरेन हमले से बचाना, एंड तीसरा जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरनल सिक्योरिटी में और किसी भी तरह के आपदा में मदद प्रदान करना, और जो विश्व में यूएन पीस कीपिंग मिशंस होते हैं उसमें योगदान देना। इसमें एक्टिव जो हैं तकरीबन 14 लाख पर्सनल होते हैं और रिजर्विस्ट जो हैं वो 11.5 लाख की नफरी के साथ हैं, जिसमें कि भारतीय सेना के 12 लाख की नफरी है, हमारी इंडियन नेवी की जो है तकरीबन 70,000 की नफरी है, इवन इंडियन एयरफोर्स जो है उसका कंट्रीब्यूशन तकरीबन 1.5 लाख के करीब है।
2: जी कर्नल साहब, आपने अपने उत्तर की शुरुआत में एक शब्द का यूज़ किया था कि हमारे देश की जो सेनाएं हैं वह विश्व की सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्स है। तो वॉलंटियर फोर्स, इससे आपका क्या तात्पर्य था?
3: काफ़ी सारे देशों में नियम होता है कि जो युवा होते हैं उनको कंपल्सरली अपने देश की सेनाओं में सर्विस प्रदान करनी पड़ती है, उसको कंपल्सरी कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। मैं अगर उदाहरण के तौर पे बोलूँ तो यूएसए में होता है, इसराइल में है, साउथ कोरिया में है और ऐसी काफ़ी कंट्रीज हैं जिसमें कि नॉर्वे है, जहाँ पे कि ये रूल है। पर भारत में इस तरह का कोई रूल नहीं है। यहाँ पे हर व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वेच्छता से जो है अपनी सर्विसेज प्रदान करता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में तो युवा इतने ज्यादा उत्साहित रहते हैं डिफेंस फोर्सेस में आने के लिए कि कभी भी हमारे यहाँ पे कंपलसरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है।
2: आपने बताया था कि 14 लाख एक्टिव फोर्स है, और उसके अलावा ऐसे भी क्या लोग होते हैं जो एक्टिव ना होकर जिनको बाद में बुलाया जा सकता है?
3: एक रिजर्विस्ट जो मैंने बताया था आपको, जो भी व्यक्ति डिफेंस फोर्सेस में
2: जी
3: सर्विस करते हैं वो रिटायरमेंट के बाद 5 साल के लिए रिजर्विस्ट लिस्ट में रहते हैं
2: जी।
3: इसका तात्पर्य ये रहता है कि अगर आवश्यकता पड़ती है
2: जी,
3: तो हमारे देश में एक ट्रेन्ड मैन पावर हमेशा अवेलेबल रहती है जिसको कि तुरंत जो है हम एक्टिव सर्विस पे वापस बुला सकते हैं। तो ये 5 साल के लिए हर व्यक्ति जो एक सोल्जर होता है
2: जी,
3: वो रिजर्विस्ट लिस्ट पे रहता है।
2: यानी अगर इमरजेंसी है और आवश्यकता आन पड़ी है तो सेवानिवृत्ति के 5 सालों के भीतर रिजर्विस्ट फोर्स में से लोगों को बुलाया जा सकता है सेवाएं प्रदान करने के लिए।
3: बिल्कुल सही कहा आपने अदिति।
2: और कर्नल साहब, आपने बताया था अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें मैन पावर के लिहाज से, तो तीनों सशस्त्र सेनाओं का मिला के जो आंकड़ा बनता है वो 14 लाख के आसपास का बनता है। अगर हम भारत को देखते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें या जनसंख्या के लिहाज से, तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, और जाहिर सी बात है कि सुरक्षा का अगर प्रश्न उठता है तो वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो भी बहुत विविधता लिए है, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि 14 लाख का आंकड़ा हमने क्रॉस किया मैन पावर को लेकर?
3: अदिति, आधा आंसर तो आपने खुद ही दे दिया है। जैसे कि आपने खुद ही बोला कि भारत एक बहुत ही विशाल देश है, 7th largest कंट्री इन द वर्ल्ड
2: जी,
3: विद ऑलमोस्ट 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया
2: जी।
3: तो अगर हम देखें और अगर हम बॉर्डर की बात करें, लैंड बॉर्डर की बात करें, तो रण ऑफ कच्छ से शुरू करके ईस्ट तक हमारे देश का जो लैंड बॉर्डर है वो 15,200 किलोमीटर का है। अगर हम कोस्टल लाइन की बात करते हैं तो तकरीबन 7,500 किलोमीटर की हमारी जो है कोस्टल लाइन है। भारत जो है वो एक बहुत ही विशाल देश है। इसके अलावा अगर आपको वदित हो, हमारा देश का एरिया है वो इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि इवन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में 2 मेजर आइलैंड के ग्रुप्स हैं। बे ऑफ बंगाल में अगर आप देखेंगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं जो कि ऑलमोस्ट 572 आइलैंड्स के ग्रुप हैं। एंड इसी तरह से अगर हम अरेबियन सी में देखेंगे तो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जो कि 36 आइलैंड्स का एक द्वीप समूह है। तो इतने बड़े देश की सुरक्षा के लिए ये मैन पावर की हमें आवश्यकता होती है।
2: और इस मैन पावर का डिप्लॉयमेंट जो है थल के साथ साथ पानी में भी, आइलैंड्स पर भी, हिमालय में भी, कहीं पर भी होता है। और हमारे लिए गर्व का विषय है कि आप लोग भारत के कोने कोने पर अपनी मौजूदगी से हमें सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। भारत इतना बड़ा देश है और काफ़ी सारे देशों के साथ हमारी सीमाएं छूती हैं। जाहिर सी बात है, आप अगर हम समाज में भी रहते हैं तो हर पड़ोसी ना हमारा मित्र होता है ना दुश्मन होता है। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमेशा हमारे संबंध कभी मीठे नहीं रहे हैं, भारत की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा हम अपने पड़ोसियों की दृष्टिगत कैसे करते हैं?
3: देखिए, जो हमारा देश है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं सबसे पहले लैंड बॉर्डर की बात करूँगा तो 15,000 से ऊपर जो है हमारा लैंड बॉर्डर है, जिसमें कि अगर हम वेस्ट से शुरू करें तो हमारी सबसे पहले जो सीमा लगती है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, जो कि रण ऑफ कच्छ से शुरू होके, सर क्रीक से शुरू होके, उसके बाद राजस्थान के डेजर्ट्स हैं, राजस्थान के डेजर्ट्स के बाद पंजाब के प्लेन्स हैं से होती हुए जम्मू एंड कश्मीर की हिली टेरेन के आगे जो है कारगिल, और फिर सियाचिन जो कि जिसको कि हम सुपर हाई एल्टीट्यूड एरिया बोलते हैं, ये पूरा जो है हमारा पाकिस्तान के साथ जो है बॉर्डर लगता है, जो कि तकरीबन 3,323 किलोमीटर है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है जिसको कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर बोलते हैं, जो कि सर रेडक्लिफ लाइन कहलाती है। एंड जम्मू के ऊपर हमारा जो एरिया है वो LOC है
2: जी।
3: पाकिस्तान के साथ हमारा एक शिमला समझौता हुआ था 1971 वॉर के बाद, जिसमें कि जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है एक्चुअल जो भी जहाँ पे लोग थे उसके हिसाब से LOC कहलाती है वो। ये LOC जो है सियाचिन ग्लेशियर के ठीक नीचे NJ 9842 तक डिमार्केटेड है। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही डिस्प्यूटेड मतलब एरिया है जो कि पाकिस्तान जिसपे कि अपना हक मानता है। ऑफकोर्स ये भारत का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है और सीमा है यानी कि बॉर्डर है, उसको हम एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लोकेशन बोलते हैं। और इसी तरह से इसके बाद अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में अक्साइ चीन वाला जो एरिया है वहाँ से हमारा बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। और ये बॉर्डर वहाँ से होता हुआ अक्साइ चीन के एरिया के नीचे से, जहाँ के अभी आपने काफ़ी नाम सुने होंगे, पेंगेंग सो लेक है, फिर उसके नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड से होते हुए जो है ये आगे नेपाल, सिक्किम, भूटान से होते हुए आगे अरुणाचल के साथ जाते हैं। और ये एरिया है तकरीबन जो है 4000 किलोमीटर का हमारा चाइना के साथ बॉर्डर लगता है। चाइना के साथ हमारी जो संबंध है वो जगविदित हैं
2: जी,
3: और ये खासकर जो हमारा उनके से सबसे बड़ा झगड़ा है वो बॉर्डर के साथ तरीके है। अगर हम चाहें तो विस्तार में इसके बारे में आगे बात कर सकते हैं जी। फिर दूसरी एक जो कंट्री है जिससे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं जो कि नेपाल है। नेपाल के साथ हमारा देश तकरीबन जो है 1700 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। उसी तरह से अगेन दूसरा एक मित्र देश भूटान है जिसमें कि हम तकरीबन 700 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। और ईस्ट में जो है अगर हम देखें तो म्यांमार है जिसमें कि हमारे साथ तकरीबन 1700 किलोमीटर का बॉर्डर हम उसके साथ शेयर करते हैं। और बांग्लादेश जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था 71 के बाद, जिसके लिबरेशन के बाद उसको वो बांग्लादेश हुआ, इसमें अगेन इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये भी रेडक्लिफ लाइन कहलाती है जिससे जो कि तकरीबन 4000 किलोमीटर की है। एक और देश है जिसके साथ हम अपना बॉर्डर साझा करते हैं वो है अफगानिस्तान। ये POK में है, तकरीबन 105 किलोमीटर की सीमा जो है हमारी उनके साथ साझा होती है। ये अगर हम बात करेंगे तो हमारे लैंड बॉर्डर की बात है। अगर हम अब नीचे देखें यानी साउथ में देखें तो हम तीनों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं। तो इसमें जो है हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 7500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, ये हम जो है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मालदीव्स के साथ शेयर करते हैं। बहुत ही विशाल देश है, सशस्त्र सेनाओं के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है इन सब की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना।
2: कई युवा रहते हैं जो आर्मी से जुड़ना चाहते हैं और उनकी स्किल अलग रहती है। एक सैनिक अफसर के अलावा कौन कौन से लोग, कौन कौन से व्यवसाय से जुड़े लोग भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं?
3: आप खुद समझ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी सेना है
2: जी,
3: तो इसमें बहुत ही डिफरेंट स्किल्स की जरूरत पड़ती है। देखिए जैसे एक सोल्जर जो है लड़ने जाता है तो उसको लड़ने के लिए वहाँ पे खाना भी देना होता है,
2: जाहिर सी बात,
3: उसको कपड़े भी चाहिए होते हैं। तो अगर खाना है देना है तो उसको बनाने के लिए कुक चाहिए होता है। अगर सोल्जर्स को मेंटेन, अपने कपड़े मेंटेन करने हैं तो उसको एक दर्जी की भी जरूरत पड़ती है। अगर उसके पास बूट और इक्विपमेंट है उसको रिपेयर करने के लिए इक्विपमेंट रिपेयर की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि आर्मी में गाड़ियां होती हैं, इक्विपमेंट होते हैं, तो उनके लिए जो है टेक्निकल बंदे, व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है जो उनको रिपेयर कर सकें, उनको मेंटेन कर सकें। तो एक ये जो फोर्सेस होती हैं इसमें एक जनरल ड्यूटी के अलावा बहुत सारी टेक्निकल सर्विसेज, यहाँ तक कि इवन होटल मैनेजमेंट के जो पास आउट होते हैं उनकी भी जरूरत होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है।
2: हाँ।
3: बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर युवा जो किसी भी फील्ड में है वो इसके लिए ट्राई कर सकता है। जो उसकी स्पेशल जो उसने क्वालिफिकेशन हासिल करी है, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो या वो सिविल इंजीनियर हो तो या वो मेडिकल से हो, हर तरह के जो युवा हैं वो अपनी सर्विसेज प्रदान कर सकते हैं। और इनके लिए क्या होता है कि अलग अलग तरह की एंट्रीज होती हैं आर्मी में।
2: कर्नल साहब, विशाल देश की जो महत्वपूर्ण सुरक्षा है उसके लिए आप लोग सदैव तत्पर रहते हैं और ये काफ़ी गौरव की बात है कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आगे भी आते रहेंगे, महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करेंगे, कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। आप हमारे साथ आए और हमारे साथ आपने जानकारियाँ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू अदिति एंड जय हिंद श्रोताओं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।
4: इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
5: हमारी सेना हमारा गर्व। अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के विविध कार्यक्रम। ये है देश का चैनल देश के लिए।

0: करके देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अब हम आपको सुनवाते हैं ये देश गान। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

0: ये इस कार्यक्रम का दूसरा भाग है।
1: मैं दरखास्त करूंगी कि हमारे जो नौजवान सिंगर हैं जान, उनको स्टेज में आने के लिए बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, इसको आशीर्वाद कीजिए।

साथ में गाएंगे। अब आप लोग गाइए साथ में। हाँ

थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 90s की बात ही अलग थी राइट। आप लोगों को 90s का कुछ और सुनना है, कुछ सुनाए? आवाज नहीं आ रही, ऊपर वालों की आवाज नहीं आ रही, कुछ सुनना है 90s का? अब नीचे वालों की बोलते हैं, कुछ सुनना है 90s का? ओके लेट्स गो। और जिन जिन को ये गाना आता है प्लीज साथ में गाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर सामने काफी लोगों को देख रहा हूँ, ऐसे होठ हिला रहे, बट आपकी आवाज नहीं आ रही है।

थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, इस नेक्स्ट गाने के लिए मुझे आप लोग की सपोर्ट बहुत जरूरी है। क्या आप लोग मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं गाने में? हाँ, क्योंकि ये गाना मैं अकेले गाऊंगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मैं आप सबके साथ गाऊंगा तो मज़ा आएगा, और मुझे चाहिए कि आप लोग भी इन्जॉय करें। तो सब अपने फ़ोन के टॉर्च लाइट पहले ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये माहौल हम बनाने वाले हैं कैसा, और ये गाना आप सब जानते हैं तो साथ में गाएंगे।

0: thank you so much. Thank you so much. And again, a huge round of applause because Kavita ma'am is back.
1: अभी अच्छा ये गीत गाने से पहले मैं अपने बहुत बहुत अच्छे में हमारे बॉम्बे के उम्दा आर्टिस्ट जो बहुत बढ़िया बहुत सालों से सबसे पहला जिनको मैं इंट्रोड्यूस करूँगी वो कम से कम 40-50 साल से तो लक्ष्मीकांत प्यारलाल के साथ हैं हमारे सुरेश यादव जी हवा हवाई हो खुदा गवाह हो सारे जो ओरिजिनल पीसेस इन्होंने बजाए हैं और हमारे यहाँ पे हैं चिराग पंचाल जी जो बहुत सालों से ये भी ये लोग सब आशा जी पता नहीं बहुत छोटे लता जी के साथ नहीं शायद बजाए होंगे बहुत कम उम्र सुरेश यू हैव प्लेड विद लता जी तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ बजाए हैं चिराग जी आप चिराग जी आशा जी के साथ बजा चुके हैं नहीं लता जी के साथ नहीं बहुत छोटे हैं आप है ना बहुत बाद में आए कोई बात नहीं उस और अमित भंवर जी हैं बहुत अच्छा ये भी बॉम्बे से और बहुत सालों से मेरे रिचर्ड मित्रा जी को जो गिटार में हैं इनको जानती हूँ मैं ये इतने छोटे थे जब मन्नादा के साथ इन्होंने बजाना मतलब शुरू किया और तब मैं मन्नादा के साथ ड्यूएट्स गाती थी हम लोग पूरा वर्ल्ड घूम चुके हैं मन्नादा का ब्लेसिंग मिला और फिर जतिन ललित जी के असिस्टेंट रहे हैं और जतिन ललित के जो पीसेस सुनते हैं गिटार के पीसेस सब इन्होंने बजाए हैं और जो पीछे छुपे हुए हैं सुरेश अय्यर जी ये बहुत अच्छा बेस गिटार बजाते हैं प्रसाद कुलकर्णी राजा कुलकर्णी राजू जी सबके साथ और आजकल के नौजवान आर्टिस्ट सुनिधि चौहान सबके साथ बजा चुके हैं तो ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं मेरे साथ और उसके बाद हैं हमारे संतोष भुटाल जी और इनको कौन नहीं पहचानता आप बताइए गिरीश विश्वा जी को ये तो अभी वर्ल्ड फेमस हैं और ढोलक में क्या हाथ है इनका आप सुनेंगे आज भोले चूड़िया में आप इनका ढोलक में हाथ सुनेंगे बहुत अच्छा बजाते हैं और इनके जो अंकल थे इनके अंकल विजय इंदौरकर जी इंदौर के विजय इंदौरकर जी वो इनके अंकल हैं और वो विजय इंदौरकर जी रिचर्ड हम लोग सब मन्नादा के साथ घूमते थे हाँ और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द यंग संकेत हम साथ प्रोग्राम्स करते रहे सो नाइस टू हैव यू ऑल थैंक यू साउंड में हमारे बॉम्बे के परीक्षित जी हैं तो ये जो आप गाना सुन रहे हैं म्यूजिशियंस को सुन रहे हैं हमको सुन रहे हैं इनकी मेहनत होती है और हम इनको तंग करते रहते हैं कि मॉनिटर्स में ये बढ़ाओ कीबोर्ड बढ़ाओ इसकी आवाज़ बढ़ाओ पर वो सुनते रहते हैं बेचारे हमारा काम करते रहते हैं और आपको भी खुश करते रहते हैं थैंक यू परीक्षित एंड नाउ फॉर आवर नेक्स्ट सॉन्ग

0: शुक्रिया, थैंक यू।
1: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम देश के संस्थान। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए यानी सपनों को पंख देने वाली संस्था के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: श्रोताओं, पिछले कुछ प्रकरणों में दादू और रुचि ने देश के अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों की प्रेरक कहानियां जानी। लंबी यात्रा के बाद अब दोनों अपने अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन ज्ञान की यात्रा तो अभी भी जारी है ना?
2: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक खबर है।
1: नमस्ते दादू।
2: हाँ हाँ हाँ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गई कॉलेज से? कैसी रही आज की पढ़ाई?
1: बहुत अच्छी रही दादू, लेकिन आप कौन सी खबर को इतनी ध्यान से पढ़ रहे हैं?
2: अरे बेटा, मैं पढ़ रहा हूँ भारत के विमानन क्षेत्र से जुड़ी, ये एक आर्टिकल है, यही पढ़ रहा हूँ मैं।
1: विमानन क्षेत्र मतलब हवाई जहाजों की दुनिया?
2: हाँ हाँ बेटा, एक मिनट बस। हाँ बेटा, केवल हवाई जहाज नहीं बल्कि उन संस्थाओं की दुनिया जो भारत को आकाश में नई ऊंचाइयां देने का काम कर रही है।
1: दादू, जब भी मैं आकाश में उड़ते हुए विमान देखती हूँ ना, तो मेरे मन में एक सवाल आता है।
2: मुझे देखकर तुम्हारे मन में कोई ना कोई सवाल आ ही जाता है। अखबार रख देता हूँ, एक मिनट। चलो हाँ बेटा, पूछो सवाल पूछो।
1: दादू, इतना भारी विमान आखिर उड़ता कैसे है और उसे बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी?
2: लगता है आज की कहानी फिर से शुरू होने वाली है।
1: वो तो होने वाली है दादू, आप जल्दी से बताइए ना, आज हम किस संस्थान के बारे में जानेंगे?
2: तो आज हम जानेंगे यही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA की कहानी। एक ऐसी संस्था की कहानी जिसने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम को नई दिशा दी।
1: वाह दादू, यानी आज की कहानी आकाश से जुड़ी है।
2: हाँ बेटा, आज हम धातुओं की दुनिया से निकलकर उड़ान की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं।
1: दादू, वो देखिए, छत पर बैठे कबूतर एक साथ उड़ गए।
2: हाँ बेटा, प्रकृति का ये दृश्य जितना सुंदर है उतना ही प्रेरणादायक भी है।
1: अच्छा दादू।
2: हाँ बेटा।
1: क्या इंसान ने उड़ने का विचार पक्षियों को देख कर ही सीखा था?
2: काफी हद तक। हजारों वर्षों से मनुष्य पक्षियों को उड़ते देखता रहा और उसके मन में भी आकाश में उड़ने की इच्छा जागती रही।
1: मतलब उड़ान का सपना बहुत पुराना है।
2: बहुत पुराना बेटा। पुराने ग्रंथों, कथाओं और लोक कथाओं में उड़ने वाले रथों और आकाश यात्राओं का उल्लेख इन सब में मिलता है। लेकिन सपना देखना और उसे वास्तविकता में बदलना दो अलग बातें हैं।
1: फिर दादू, इंसान ने ये सपना भला कैसे पूरा किया?
2: इसके लिए वैज्ञानिकों, अभियंताओं और आविष्कारकों ने वर्षों तक अध्ययन किया। उन्होंने पक्षियों की उड़ान को समझा, हवा की गति को समझा और फिर ऐसे यंत्र विकसित किए जो हवा में उड़ सके।
1: यानी विमान केवल मशीन नहीं है बल्कि सदियों पुराने एक सपने की पूर्ति है।
2: बहुत सुंदर कहा तुमने।
1: लेकिन दादू, पक्षी तो अपने पंखों से उड़ते हैं, फिर ये विमान आखिर कैसे उड़ता है?
2: ये प्रश्न दुनिया के लाखों बच्चों के मन में आता है। विमान के पंखों का आकार ऐसा बनाया जाता है कि जब वो तेज गति से आगे बढ़ता है तो हवा का दबाव उसके ऊपर और नीचे अलग अलग हो जाता है
1: और उसी से वह ऊपर उठता होगा।
2: बिल्कुल, इसे ही उड़ान का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन इसे समझना आसान है जबकि इसे व्यवहार में सफल बनाना बहुत कठिन होता है बेटा।
1: वो भला क्यों?
2: वो भला ऐसे बेटा, क्योंकि विमान को केवल उड़ना नहीं होता, सुरक्षित भी उड़ना होता है ना। उसे तेज हवा, बारिश, ऊंचाई और अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
1: अब समझ में आया कि विमान बनाना इतना कठिन काम क्यों है।
2: हाँ बेटा।
1: दादू, क्या हर देश अपना विमान बना सकता है?
2: नहीं नहीं बेटा, विमान निर्माण दुनिया की सबसे जटिल तकनीकों में से एक माना जाता है।
1: मतलब इसके लिए बहुत अधिक ज्ञान और अनुभव चाहिए होगा।
2: बिल्कुल चाहिए। विमान बनाने के लिए वायु गतिकी, धातु विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सामग्री विज्ञान और अनेक अन्य क्षेत्रों का ज्ञान एक साथ काम करता है।
1: यानी ये कई विज्ञानों का संगम होगा।
2: बिल्कुल है बेटा।
1: अच्छा दादू, जब विमान बनाना इतना कठिन है तो भारत ने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की शुरुआत कैसे की थी?
2: बेटा, स्वतंत्रता के बाद भारत ने ये महसूस किया कि यदि हमें सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपनी तकनीक विकसित करनी पड़ेगी,
1: और इसमें विमानन तकनीक भी शामिल थी।
2: बिल्कुल, विशेषकर रक्षा क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण था। किसी भी देश की वायु सेना उसकी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार होता है बेटा।
1: तो क्या इसी सोच ने एडीए के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया?
2: हाँ बेटा, जैसे जैसे भारत ने स्वदेशी लड़ाकू विमान विकसित करने का लक्ष्य तय किया, वैसे वैसे एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस हुई जो इस विशाल कार्यक्रम का नेतृत्व कर सके,
1: और तब एडीए की स्थापना हुई होगी दादाजी।
2: हाँ बेटा, वर्ष 1984 में बेंगलुरु में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अर्थात एडीए की स्थापना की गई।
1: और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
2: भारत के हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और उसे तकनीकी दिशा प्रदान करना।
1: यानी एडीए का जन्म केवल एक संस्था के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय सपने के रूप में हुआ था।
2: सही कहा बेटा, ये उस सपने का हिस्सा था जिसमें भारत अपने लिए आधुनिक लड़ाकू विमान स्वयं विकसित करना चाहता था।
1: दादू, क्या ये वही कार्यक्रम था जिससे आगे चलकर तेजस विमान बना?
2: हाँ बेटा, तेजस केवल एक विमान नहीं है बल्कि हजारों वैज्ञानिकों, अभियंताओं, तकनीशियनों और परीक्षण पायलटों की वर्षों की मेहनत, आत्मविश्वास, अनुसंधान, धैर्य और नवाचार की कहानी भी है।
1: दादू, जब एडीए की स्थापना हुई होगी तब क्या किसी ने सोचा होगा कि एक दिन भारत अपना आधुनिक लड़ाकू विमान विकसित करेगा?
2: सपना बड़ा था बेटा, चुनौतियाँ उससे भी बड़ी थी, लेकिन संकल्प उतना ही मजबूत था।
1: दादू, अब तो मुझे तेजस की पूरी कहानी जानना है आपसे।
2: तो तैयार हो जाओ, अब हम जानेंगे कि कागज पर बने एक विचार ने कैसे आकाश में उड़ान भरी और भारत की विमानन यात्रा का नया अध्याय लिखा।
1: दादू, आपने कहा था कि तेजस केवल एक विमान नहीं है बल्कि वर्षों की मेहनत का परिणाम है, लेकिन किसी लड़ाकू विमान की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है?
2: दिलचस्प प्रश्न है बेटी। किसी भी विमान की शुरुआत कारखाने से नहीं बल्कि विचार से होती है। विचार से? हाँ बेटा, सबसे पहले ये तय किया जाता है कि विमान को क्या क्या कार्य करने होंगे, वो कितनी ऊंचाई तक उड़ सकेगा, उसकी गति कैसी होगी, वो कितना भार ले जा सकेगा और उसकी युद्ध क्षमता कैसी होगी।
1: मतलब पहले उसकी आवश्यकताओं की सूची तैयार की जाती होगी?
2: हाँ बेटा बिल्कुल, उसके बाद वैज्ञानिक और अभियंता मिलकर प्रारंभिक डिजाइन तैयार करते हैं।
1: दादू, क्या आज भी विमान केवल कागज पर डिजाइन किए जाते हैं?
2: नहीं बेटा, आज आधुनिक संगणक प्रणालियाँ इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
1: वो भला कैसे?
2: एडीए ने अत्याधुनिक संगणन सुविधाएं विकसित की, वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर आधारित डिजाइन, विश्लेषण और सिमुलेशन तकनीकों का उपयोग किया।
1: सिमुलेशन मतलब?
2: मान लो किसी विमान को वास्तव में बनाने से पहले उसके व्यवहार को कंप्यूटर पर परखा जाए, ये देखा जाए कि उड़ान के दौरान वो कैसा प्रदर्शन करेगा।
1: अरे वाह, यानी पहले आभासी दुनिया में परीक्षण और फिर वास्तविक दुनिया में?
2: हाँ बेटा बिल्कुल।
1: दादू, लेकिन वैज्ञानिक कैसे जान पाते हैं कि हवा में विमान का व्यवहार कैसा होगा?
2: इसके लिए विंड टनल परीक्षण किए जाते हैं।
1: विंड टनल, ये क्या होते हैं?
2: ये बेटा एक विशेष सुविधा होती है जहाँ नियंत्रित गति से हवा प्रवाहित की जाती है।
1: और उसमें विमान को उड़ाया जाता है?
2: पूरे विमान को नहीं बल्कि उसके मॉडल का परीक्षण किया जाता है बेटा, ताकि ये देखा जा सके कि हवा उसके चारों ओर कैसे बह रही है।
1: सच में दादू?
2: इससे वैज्ञानिक ये समझते हैं कि डिजाइन कितना प्रभावी है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है।
1: मतलब विमान की पहली परीक्षा आकाश में नहीं प्रयोगशाला में होती है।
2: बिल्कुल सही कहा बेटा।
1: दादू, एडीए की सुविधाओं में एक नाम आपने बताया था, आयरन वर्ड। ये सुनकर तो किसी विज्ञान कथा की याद आती है मुझे।
2: हाँ, नाम सचमुच रोचक है बेटा।
1: तो बताइए ना, क्या है ये?
2: आयरन बर्ड वास्तव में एक परीक्षण व्यवस्था होती है बेटा। इसमें विमान की विभिन्न प्रणालियों को जमीन पर ही जोड़कर उनकी कार्य क्षमता की जांच की जाती है।
1: यानी विमान उड़ने से पहले उसकी कई प्रणालियां जमीन पर परखी जाती है?
2: हाँ बेटा, इससे संभावित समस्याओं का पता पहले ही चल जाता है।
1: मतलब सुरक्षा की शुरुआत उड़ान से पहले ही हो जाती है?
2: बिल्कुल।
1: दादू, जब इतने वर्षों की मेहनत के बाद कोई विमान पहली बार उड़ान भरता होगा तब कैसा माहौल होता होगा?
2: कल्पना करो बेटा, वर्षों तक वैज्ञानिकों ने काम किया, अभियंताओं ने डिजाइन तैयार किए, तकनीशियनों ने अनगिनत घंटे लगाए, परीक्षण किए गए,
1: और फिर वो दिन आता है
2: जब विमान पहली बार रनवे पर दौड़ता है,
1: और उस समय सबकी निगाहें उसी पर होती होंगी।
2: बिल्कुल, क्योंकि उस क्षण में केवल एक मशीन नहीं बल्कि वर्षों का परिश्रम और आशाएं उड़ान भर रही होती हैं बेटा।
1: दादू, मुझे सुनकर कितना रोमांच हो रहा है।
2: हाँ बेटा।
1: दादू, एक विमान का नाम तेजस भी तो था, वो भला कैसे रखा गया?
2: तेजस संस्कृत का शब्द है बेटा, जिसका अर्थ है तेज, ऊर्जा, प्रकाश और शक्ति।
1: तो ये नाम वास्तव में विमान की भावना को दर्शाता है।
2: हाँ, और ये केवल एक नाम नहीं है बल्कि भारतीय विज्ञान और आत्मनिर्भरता के आत्मविश्वास का प्रतीक भी बन गया है।
1: अब समझ में आ रहा है कि तेजस की चर्चा होते ही लोगों की आंखों में गर्व क्यों दिखाई देता है।
2: क्योंकि ये उस क्षमता का प्रतीक है जिसे भारत ने अपने वैज्ञानिकों और अभियंताओं के बल पर विकसित किया है।
1: अच्छा दादू, क्या एडीए का काम केवल तेजस तक ही सीमित है?
2: नहीं नहीं बेटा, यही तो इस कहानी का अगला और भी रोचक अध्याय है।
1: मतलब एडीए भविष्य के विमानों पर भी काम कर रही है?
2: हाँ, तेजस के बाद तेजस MK2 नौसेना के लिए उन्नत लड़ाकू विमान और भविष्य की अत्याधुनिक विमान परियोजनाओं पर भी लगातार कार्य चल रहा है।
1: यानी एडीए केवल वर्तमान नहीं बल्कि भारत के भविष्य के आकाश की भी तैयारी कर रहा है।
2: हाँ बेटा, और हम उसी भविष्य की कहानी जानेंगे।
1: दादू, जब हम किसी विमान को आकाश में उड़ते देखते हैं तो उसकी चमक और गति दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे चलने वाली वैज्ञानिक दुनिया हमें दिखाई नहीं देती।
2: हाँ बेटा, किसी भी आधुनिक विमान के पीछे हजारों गणनाएं, लाखों आंकड़े छिपे होते हैं।
1: क्या एडीए में भी ऐसी सुविधाएं हैं?
2: हाँ हाँ, एडीए ने समय के साथ अत्याधुनिक संगणन केंद्र विकसित किए हैं, जहाँ जटिल डिजाइनों का विश्लेषण किया जाता है।
1: मतलब वैज्ञानिक कंप्यूटरों की सहायता से विमान के व्यवहार का अध्ययन करते हैं।
2: हाँ, पहले जिन गणनाओं में महीनों लग जाते थे आज उन्हें शक्तिशाली कंप्यूटर बहुत कम समय में पूरा कर सकते हैं।
1: यानी आधुनिक विमान निर्माण में कंप्यूटर भी उतने ही जरूरी हैं जितने हमारे इंजीनियर्स।
2: सही कहा बेटा, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं।
1: दादू, आजकल वर्चुअल रियलिटी की बहुत चर्चा होती है, क्या विमान निर्माण में भी इसका उपयोग होता है?
2: हाँ हाँ बेटा, वर्चुअल रियलिटी वैज्ञानिकों और अभियंताओं को विमान के विभिन्न भागों को त्रिआयामी रूप में देखने और समझने में सहायता करती है।
1: यानी विमान बनने से पहले ही उसके भीतर घूमकर देखा जा सकता है?
2: हाँ हाँ, इससे डिजाइन संबंधी समस्याओं को पहले से ही पहचानना आसान हो जाता है।
1: तो ये समय और संसाधन दोनों की बचत करता होगा?
2: हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने।
1: दादू,
2: हाँ,
1: अब मुझे लग रहा है कि विमान निर्माण केवल धातुओं और इंजनों की कहानी नहीं है।
2: आधुनिक विमानन में सॉफ्टवेयर की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा।
1: वो कैसे?
2: एडीए ने विभिन्न प्रकार के विशेष सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं जिनका उपयोग डिजाइन, विश्लेषण, निर्माण, उड़ान अनुकरण और परीक्षणों में किया जाता है।
1: यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली रेखाएं आगे चलकर वास्तविक विमान का रूप ले लेती हैं।
2: हाँ, कई बार एक छोटी सी गणना भी पूरे विमान के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है बेटा।
1: दादू, अब मुझे समझ में आ रहा है कि विमान निर्माण में गणित और विज्ञान कितना जरूरी है। सही कहा था आपने कि एडीए का काम केवल तेजस तक ही सीमित नहीं है।
2: हाँ बेटा, विज्ञान की यात्रा कभी रुकती नहीं है।
1: तो अब आगे क्या?
2: आगे बेटा, तेजस के अनुभव और सीख के आधार पर और अधिक उन्नत विमान विकसित करने की दिशा में कार्य चल रहा है।
1: तो क्या ये तेजस का नया रूप लेगा?
2: इसे तुम अगली पीढ़ी की प्रगति कह सकती हो बेटा। हर नई परियोजना पिछली उपलब्धियों पर आधारित होती है।
1: यानी हर सफलता अगले लक्ष्य का आधार बन जाती है।
2: एकदम सही।
1: दादू, क्या भविष्य में विमानों की दुनिया और भी बदल जाएगी?
2: निश्चित रूप से बेटा, आने वाले समय में विमान अधिक उन्नत, अधिक सक्षम और तकनीकी रूप से और भी परिष्कृत होंगे।
1: तो क्या अब हमारा भारत भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है?
2: हाँ, इसी उद्देश्य से भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नई परियोजनाओं पर लगातार कार्य किया जा रहा है।
1: मतलब ईडीए केवल आज की जरूरतों के लिए नहीं बल्कि आने वाले दशकों के लिए भी तैयारी कर रही है।
2: हाँ बेटा, यही किसी दूरदर्शी संस्था की पहचान होती है।
1: दादू, आज की कहानी सुनकर मेरे मन में एक नया विचार आया है।
2: वो क्या बेटा?
1: वो ये कि जब मैं अगली बार आकाश में कोई विमान देखूंगी ना, तो केवल उसकी गति नहीं देखूंगी, मैं उसके पीछे छिपे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत को भी याद करूंगी।
2: हाँ बेटा, और यही इस कहानी का उद्देश्य है।
1: दादू, लोग अक्सर उड़ते हुए विमानों को देखते हैं, लेकिन उसे उड़ाने वाले ज्ञान को नहीं देखते।
2: हाँ, बिल्कुल सही बात पकड़ी। लगता है कि आज की कहानी ने तुम्हें फिर एक नई सीख दे दी है।
1: दादू, एक बात बताइए ना।
2: हाँ।
1: आपने BEML, मिधानी और कई अन्य संस्थानों की कहानियाँ सुनाई है मुझे, लेकिन विमान बनाने की बात आते ही हर कोई इसे बहुत बड़ी उपलब्धि क्यों मानता है? क्या ये कार या रेलगाड़ी बनाने से भी अधिक कठिन है?
2: बहुत कठिन है बेटा। सोचो, रेलगाड़ी पटरियों पर चलती है और कार सड़क पर, लेकिन विमान को हजारों फीट ऊपर हवा में उड़ना होता है।
1: और वहाँ तो कोई सड़क भी नहीं होती।
2: हाँ, विमान को अपने संतुलन, दिशा और गति का नियंत्रण स्वयं बनाए रखना पड़ता है।
1: मतलब जरा सी भी गलती भारी पड़ सकती है दादू।
2: हाँ बेटा, यही कारण है कि विमान निर्माण में अत्यंत सूक्ष्मता और सावधानी की आवश्यकता होती है।
1: दादू, आधुनिक लड़ाकों विमानों के बारे में अक्सर एक शब्द सुनाई देता है, फ्लाई बाय वायर। ये क्या होता है?
2: बेटा, पहले के विमानों में पायलट के नियंत्रण सीधे यांत्रिक प्रणालियों से जुड़े होते थे, लेकिन आधुनिक विमानों में कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: कैसे?
2: देखो बेटा, जब पायलट कोई नियंत्रण देता है तो कंप्यूटर उस संकेत को समझकर विमान की विभिन्न प्रणालियों तक पहुंचाता है।
1: यानी कंप्यूटर पायलट का सहयोगी बन जाता है।
2: हाँ, इससे विमान अधिक स्थिर और नियंत्रित रहता है।
1: तो तेजस में भी ऐसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया?
2: हाँ बेटा, यही कारण है कि तेजस भारत की तकनीक क्षमता का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है।
1: दादू, लड़ाकू विमान को मजबूत भी होना चाहिए और तेज भी, तो दोनों बातें एक साथ कैसे संभव होती हैं?
2: यही तो अभियंताओं की सबसे बड़ी चुनौती होती है।
1: कैसे?
2: यदि विमान बहुत भारी होगा तो उसकी गति और दक्षता प्रभावित होगी, यदि बहुत हल्का होगा तो मजबूती कम हो सकती है।
1: तो फिर समाधान क्या है?
2: देखो बेटा, विशेष सामग्रियों और उन्नत डिजाइन का उपयोग।
1: मतलब यहाँ मिधानी जैसी संस्थाओं का योगदान भी जुड़ जाता होगा।
2: हाँ, देखो कैसे देश की विभिन्न संस्थाएं मिलकर एक बड़े लक्ष्य को पूरा करती हैं।
1: दादू, जब कोई नया विमान पहली बार उड़ता है तब उसे कौन उड़ाता है?
2: परीक्षण पायलट।
1: क्या ये सामान्य उड़ान से अलग होता है?
2: हाँ बेटा, परीक्षण उड़ानों में विमान के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पायलटों को अत्यंत प्रशिक्षित और अनुभवी होना पड़ता है।
1: यानी वे केवल पायलट नहीं बल्कि उड़ान के वैज्ञानिक भी होते हैं।
2: ये सही कहा बेटा तुमने।
1: और उनकी रिपोर्ट के आधार पर सुधार किए जाते होंगे।
2: हाँ बेटा, विमान विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
1: और ADA ने इन सब को दिशा दी है।
2: बिल्कुल दी है।
1: दादू, आपने कहा था कि तेजस के बाद भी ADA की यात्रा जारी है, तो अब उसका अगला बड़ा सपना क्या है?
2: देखो बेटा, हर उपलब्धि एक नए लक्ष्य का मार्ग खोलती है। आज ADA भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और अधिक उन्नत विमानों की दिशा में कार्य कर रही है।
1: क्या उनमें से कोई विशेष परियोजना है?
2: हाँ हाँ, ऐसी ही एक महत्वपूर्ण परियोजना है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, अर्थात AMCA।
1: वाह, नाम सुनकर ही लग रहा है दादू कि ये कोई अत्याधुनिक विमान होगा।
2: इसका उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक उन्नत लड़ाकू विमान विकसित करना है बेटा।
1: मतलब विज्ञान और तकनीक की नई पीढ़ी का प्रतिनिधि।
2: हाँ, विमानन विज्ञान लगातार विकसित हो रहा है, इसलिए भविष्य के विमानों में नई सामग्रियां, आधुनिक प्रणालियां और उन्नत क्षमताएं शामिल की जाती हैं।
1: तो AMCA केवल एक विमान नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी है।
2: हाँ बेटा, ये उस सोच का प्रतीक है जिसमें देश केवल वर्तमान की नहीं आने वाले दशकों की आवश्यकताओं की भी तैयारी करता है।
1: दादू, अब तक हम वायुसेना के विमानों की बात कर रहे थे, लेकिन नौसेना का क्या?
2: नौसेना की आवश्यकताएं अलग होती है बेटा।
1: कैसे दादू?
2: देखो, समुद्र में विमान वाहक पोत पर काम करना सामान्य हवाई अड्डे पर काम करने से अधिक चुनौतीपूर्ण होता है।
1: क्यों?
2: क्योंकि जहाज लगातार गतिशील रहता है, समुद्री हवाएं, सीमित स्थान और विशेष परिचालन आवश्यकताएं होती हैं।
1: तो दादू, नौसेना के लिए अलग प्रकार के विमान चाहिए होते हैं?
2: हाँ बेटा, इसी दिशा में TEDBF अर्थात ट्विन इंजन डेक बेस्ट फाइटर जैसी अवधारणाओं पर कार्य किया जा रहा है।
1: मतलब ऐसा विमान जो समुद्र में तैनात विमान वाहक पोत से उड़ान भर सके।
2: हाँ, ये दर्शाता है कि भारत विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए स्वदेशी समाधान विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
1: दादू, एडीए की स्थापना बेंगलुरु में ही क्यों की गई?
2: क्योंकि बेंगलुरु लंबे समय से भारत की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विमानन गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।
1: मतलब वहाँ केवल एक संस्था नहीं है?
2: हाँ, वहाँ अनेक वैज्ञानिक संस्थान है बेटा, अनुसंधान केंद्र हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं और विमानन से जुड़े संगठन कार्य करते हैं।
1: यानी अलग अलग विशेषज्ञ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं।
2: हाँ, इसे ही कभी कभी वैज्ञानिक या तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है।
1: जैसे एक बगीचे में अलग अलग पौधे मिलकर पूरा वातावरण बनाते हैं।
2: हाँ हाँ बेटा, ये उदाहरण बहुत सुंदर है।
1: दादू, तो बेंगलुरु केवल एक शहर नहीं बल्कि विचारों और नवाचारों का भी संगम है।
2: हाँ बेटा।
1: दादू, आपने बताया था कि एडीए का संबंध रक्षा अनुसंधान से भी है।
2: एडीए रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करती है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO से जुड़ी हुई है।
1: तो क्या दोनों मिलकर काम करते हैं?
2: हाँ हाँ बेटा, किसी भी बड़ी परियोजना में अनेक संस्थाएं अपना अपना योगदान देती हैं।
1: मतलब कोई संस्था डिजाइन में योगदान देती है, कोई परीक्षण में और कोई अनुसंधान में।
2: हाँ, आधुनिक तकनीक इतनी जटिल होती है कि इसमें सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है बच्चे।
1: यानी सफलता का श्रेय केवल एक संस्था को नहीं बल्कि पूरी टीम को जाता होगा दादू।
2: हाँ बेटा, पूरी टीम को जाता है।
1: ये कार्यक्रम सुनने वाले बहुत से बच्चे और युवा भी होंगे जो हमें सुन रहे होंगे दादू।
2: होंगे ही।
1: अच्छा, ये बताइए कि यदि कोई छात्र विमान निर्माण या अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काम करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए?
2: अगर विज्ञान के क्षेत्र में जाना है, उसे जानना है, समझना है, तो सबसे पहले जिज्ञासु बनिए।
1: जिज्ञासु?
2: हर वैज्ञानिक यात्रा एक प्रश्न से शुरू होती है।
1: जैसे मेरे प्रश्न?
2: हाँ बेटा, विज्ञान में प्रश्न पूछना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत माना जाता है।
1: और फिर?
2: गणित विज्ञान, अभियांत्रिकी, कंप्यूटर विज्ञान और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में मेहनत करनी होती है।
1: यानी आज का जिज्ञासु विद्यार्थी कल का वैज्ञानिक बन सकता है?
2: क्यों नहीं बन सकता। देश की हर बड़ी उपलब्धि कभी किसी विद्यार्थी के सपने के रूप में ही शुरू हुई थी बेटा।
1: तो हो सकता है दादू कि आज ये कार्यक्रम सुन रहा कोई बच्चा भविष्य में किसी नए विमान का डिजाइन तैयार करे?
2: बिल्कुल तैयार करेगा बेटा, और शायद वो भारत की अगली बड़ी तकनीकी उपलब्धि का हिस्सा भी बने।
1: दादू, अब मैं एक बार फिर वही प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो मैंने मिधानी के बारे में पूछा था।
2: पूछो पूछो बेटा, पूछो।
1: वो ये दादू कि यदि एडीए जैसी संस्था ना होती तो क्या फर्क पड़ता?
2: बहुत बड़ा फर्क पड़ता बेटा।
1: कैसे?
2: कल्पना करो, यदि किसी देश के पास अपनी विमानन डिजाइन क्षमता ना हो तो उसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए बाहरी तकनीकों पर निर्भर रहना पड़ेगा।
1: मतलब केवल विमान खरीदना ही पर्याप्त नहीं होता?
2: नहीं नहीं बेटा, तकनीकी ज्ञान, अनुसंधान क्षमता और डिजाइन कौशल भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं।
1: और एडीए ने भारत को इसी दिशा में आगे बढ़ाया?
2: हाँ बेटा, इसने केवल परियोजनाओं का नेतृत्व नहीं किया बल्कि देश में विमानन अनुसंधान और विकास की क्षमता को भी बहुत मजबूत किया है।
1: यानी ये संस्था केवल विमान नहीं बनाती बल्कि ज्ञान भी विकसित करती है।
2: हाँ, और यही किसी भी विकसित राष्ट्र की वास्तविक शक्ति होती है।
1: दादू, आज मैंने जाना कि उड़ान केवल पंखों की कहानी नहीं होती।
2: तो फिर किसकी कहानी होती है?
1: दादू, ये विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, साहस और सामूहिक प्रयास की कहानी होती है।
2: लगता है आज की चर्चा का सार तुम्हें मिल गया बच्चे।
1: हाँ दादाजी, और एडीए की कहानी बताती है कि जब कोई देश बड़े बड़े सपने देखने का साहस करता है ना, तो वे सपने एक दिन आकाश में उड़ान भी भरते हैं।
2: हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने, और यही भारत की वैज्ञानिक यात्रा का सबसे सुंदर संदेश है।
1: प्रिय श्रोताओं, आज के संक में हमने जाना कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA केवल लड़ाकू विमानों के विकास का संस्थान नहीं है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक दूरदृष्टि, आत्मनिर्भरता और नवाचार का एक सशक्त प्रतीक है। तेजस से लेकर AMCA और TEDBF जैसी भविष्य की परियोजनाओं तक ADA ने भारत को स्वदेशी विमान डिजाइन और विकास की दिशा में नई पहचान दी है।
2: और यदि आप भी विज्ञान, गणित, अभियांत्रिकी या अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखते हैं तो अपनी जिज्ञासा को जीवित रखिए। कौन जाने आने वाले वर्षों में भारत के किसी नए विमान, किसी नई तकनीक या किसी नए वैज्ञानिक आविष्कार के पीछे आपका भी योगदान हो। इसी प्रेरक संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति।
1: अगले अंक में हम जानेंगे कि कैसे भारत के सैन्य उपग्रह धरती से सैकड़ों किलोमीटर

0: देश के संस्थान। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आजाद हिंद।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने। आजाद हिंद।
1: नमस्कार मित्रों, आजाद हिंद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन। आप तो मुझे पहचानते हैं ना, मैं हूं इतिहास।
2: और मैं हूं तारीख। मेरा भी नमस्कार आप सभी आजाद हिंद के श्रोताओं को। इतिहास
1: जी,
2: मेरी तो एक ही जिज्ञासा रहती है, एक ही सवाल होता है
1: कि आज कौन सी शौर्य गाथा है।
2: जी बिल्कुल,
1: है ना,
2: बताइए ना।
1: जी, आज फिर बारी है बंगाल के क्रांतिकारियों की गौरव गाथा की। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में बंगाल और बंगाल के क्रांतिकारियों का कितना बड़ा योगदान है, ये तो आप और हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, पुलिन बिहारी दास और मास्टरदा, ऐसे कितने और भी नाम हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने योगदान से देश को आजादी दिलाई।
2: इतिहास
1: जी,
2: अभी भी आपने नहीं बताया कि वो कौन से क्रांतिवीर हैं जो हमारी आज की गौरव गाथा के नायक हैं।
1: जी, आपके साथ हमारे श्रोता भी जानना चाह रहे होंगे।
2: बिल्कुल,
1: तो आज हम बात करते हैं एक नहीं दो क्रांतिकारियों की, और वो हैं मृगेंद्र कुमार दत्त और रामकृष्ण रॉय।
2: जी हाँ,
1: 1930 का साल, पूरे देश में क्रांति की आग फैली हुई थी। हमारे राजनेता देशभक्त अपने अपने मोर्चों पर लगे हुए थे और हर एक क्रांतिकारी, हर देशभक्त और हर भारतवासी की एक ही अभिलाषा थी, और वो थी भारत की आजादी।
2: आजादी पाने की इसी अभिलाषा ने बंगाल के क्रांतिकारियों में भी जोश भर दिया। बंगाल के बाकी हिस्सों की तरह मिदनापुर भी क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र था।
1: जी,
2: देश के बाकी हिस्सों की तरह मिदनापुर भी ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों का शिकार था।
1: मिदनापुर में उन दिनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे। भारतीय चाहते थे कि अपने देश का ही नागरिक वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने। मिदनापुर के क्रांतिकारियों ने प्रण किया कि हम मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तब तक मारते जाएंगे जब तक उस पद पर कोई भारतीय नियुक्त नहीं किया जाता। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इनकी बातों पर जरा भी गौर नहीं किया।

0: मिदनापुर के एक विद्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। उस प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेम्स पेड्डी को बुलाया गया। 7 अप्रैल 1931 को प्रदर्शनी का उद्घाटन करने शाम 7:30 बजे श्री जेम्स वहां आए। विद्यालय के कई कमरों में प्रदर्शनी लगाई गई थी।
1: विद्यालय के पहले कमरे में जेम्स पेड्डी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद प्रदर्शनी के बाकी हिस्सों को देखने के लिए वो दूसरे कमरे में पहुंचे। वे जैसे ही कमरे में घुसे, एक नौजवान ने रिवॉल्वर निकाली और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही वो वहां से भागे, एक दूसरे क्रांतिकारी ने उनका पीछा किया और उन पर लगातार गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज से पूरे विद्यालय में भगदड़ मच गई। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन के लिए कलकत्ता से खास डॉक्टर भी बुलवाए गए। डॉक्टर आए और ऑपरेशन से जेम्स पेड्डी के शरीर से एक गोली निकाली।
0: अगली सुबह एक ऑपरेशन और किया गया और उनके शरीर से एक और गोली निकाली गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हालत इसके बाद भी लगातार बिगड़ती गई और 8 अप्रैल 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। मिदनापुर के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों को मारने का जो प्रण किया था, उसकी पहली कड़ी में वे सफल रहे।
1: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेम्स पेड्डी की मौत से अंग्रेज सरकार बौखला गई, लेकिन क्रांतिकारियों के आगे वो झुके नहीं। जेम्स पेड्डी की जगह एक और अंग्रेज को इस पद पर नियुक्त किया गया और उनका नाम था रॉबर्ट डगलस।
0: रॉबर्ट डगलस ने मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम संभाल तो लिया, लेकिन वे शुरू से डरे हुए थे
1: जी।
0: उन्होंने अपने भाई और कुछ मित्रों को पत्र भी लिखे जिसमें उन्होंने इस डर का भी जिक्र किया। सरकार ने उनकी सुरक्षा के इंतजाम भी किए, लेकिन क्रांतिकारियों के इन धमकियों से सरकारी कामकाज रोका तो नहीं जा सकता था। 30 अप्रैल 1932 को मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग चल रही थी। श्री डगलस इस बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। मीटिंग में कई सदस्य हिस्सा ले रहे थे। मजिस्ट्रेट डगलस फाइल के कागजातों पर हस्ताक्षर भी करते जा रहे थे। इतने में दो नौजवान डगलस के कमरे में घुसे। दोनों ने एक साथ डगलस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक के बाद एक 8 गोलियां डगलस के शरीर में समा गई।
1: गोलियां चलाकर दोनों नौजवान भागे। पुलिस ने पीछा किया। उनमें से एक पुलिस की गोली से घायल होकर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारी का नाम था प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य। उसकी तलाशी ली गई और जेब से एक पर्चा निकला जिसमें लिखा था, हिजली जेल में कैदियों पर किए गए अमानवीय अत्याचारों का ये हल्का प्रतिरोध है। हमारे बलिदानों से अंग्रेज सरकार को ये सबक लेना चाहिए और भारतीयों को भी इन बलिदानों से जाग जाना चाहिए।
0: हिजली जेल में कैदियों पर 16 सितंबर 1931 की रात जेल के सिपाहियों ने मिलकर लाठियों से प्रहार किया और गोलियां चलाई, जिसमें संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर दत्त नाम के दो क्रांतिकारी मारे गए। इसी घटना के बारे में प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य ने पत्र में लिखा था जो उनकी जेब से बरामद किया गया था।
1: घायल डगलस को अस्पताल ले जाया गया। खड़गपुर से ऑपरेशन के लिए डॉक्टर भी बुलवाए गए, लेकिन डगलस को बचाया नहीं जा सका। प्रद्योत भट्टाचार्य को पुलिस ने बड़ी यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे साथी का नाम नहीं बताया।
0: प्रद्योत भट्टाचार्य पर विशेष अदालत में मुकदमा चला। उन्हें फांसी की सजा दी गई। 12 जनवरी 1933 की सुबह प्रद्योत भट्टाचार्य को फांसी दे दी गई।
1: रॉबर्ट डगलस की मृत्यु के बाद पीईजी बर्क को मिदनापुर का नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया। पिछले दो अधिकारियों की हत्या से नए अधिकारी बर्क घबराए हुए थे और उन्होंने अपनी हिफाजत के और भी कड़े इंतजाम किए थे।
0: 2 सितंबर 1933 को मिस्टर बर्ग की टीम टाउन क्लब और मोहम्मडन स्पोर्ट्स क्लब के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ। श्री बर्ग निर्धारित समय पर मैदान पहुंचे। उनके अंगरक्षक भी उनके साथ थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बर्ग मैदान में उतरे और खेलने लगे। जिस खिलाड़ी से गेंद छीनने के लिए वे आगे बढ़े, उस खिलाड़ी ने रिवॉल्वर निकालकर उन पर गोलियां चला दी। उन पर गोली चलाने वाले क्रांतिकारी का नाम था मृगेंद्र कुमार दत्त। उसके साथ खड़े दूसरे खिलाड़ी ने भी बर्ग पर गोली चला दी। गोली चलाने वाले इस दूसरे क्रांतिकारी का नाम था अनाथ बंधु पांजा। 6 गोलियां खाकर मजिस्ट्रेट बर्ग जमीन पर गिर पड़े और कुछ ही क्षणों में उनकी मौत हो गई।
1: पास में खड़े पुलिस अधिकारी ने मृगेंद्र को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और बर्ग के अंगरक्षकों ने उस पर गोली चला दी। क्रांतिकारी मृगेंद्र नीचे गिर पड़े और गिरफ्तार कर लिए गए।
0: दूसरे क्रांतिकारी अनाथ बंधु पांजा को रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर ने गोली मार दी और मैदान में ही उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन मृगेंद्रनाथ दत्त की मौत अस्पताल में हो गई।
1: इसी बीच खेल के मैदान को पुलिस ने घेर लिया। खेल को रोककर सभी दर्शकों की तलाशी ली गई। तलाशी के बाद 3 और क्रांतिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन क्रांतिकारियों में निर्मल जीवन घोष, ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण रॉय थे।
0: इन 3 पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण रॉय को 25 अक्टूबर और निर्मल जीवन घोष को 26 अक्टूबर 1934 को मिदनापुर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई।
1: अपने 3 अधिकारियों की मौत के बाद अंग्रेज सरकार को मिदनापुर के क्रांतिकारियों से आखिरकार हार माननी पड़ी और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर एक और भारतीय को ही चुना गया।

0: मुकाबला फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: श्रोताओं, हमारी आजाद जमी, आजाद आसमां की दास्तां, हमारे तन और हमारे मन की स्वतंत्रता की कहानी अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद में।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: इस प्रसारण सभा में आज आपके साथ हूं मैं सुनीता सिंह। रेडियो आजाद हिंद से हमारी अगली प्रस्तुति आज की रेडियो रिपोर्ट। इंतजार कीजिए बस जरा सा।

नमस्कार, मैं हूं हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

रेडियो रिपोर्ट में एक बार फिर से हम आपको लिए चल रहे हैं भोपाल के रविंद्र भवन में, जहां 29 अगस्त से 4 सितंबर तक रासलीला समारोह का आयोजन किया गया है।

0: आइए आपको लिए चलते हैं इस समारोह के चौथे दिन में। यह है वासुकी फ्यूजन बैंड की प्रस्तुति।
1: भोपाल की इस पावन धरती पर आज की इस सुरीली शाम का पहला सुर समर्पित है उस देव के नाम जिनके स्मरण मात्र से ही हर विघ्न दूर हो जाते हैं, जिनके हाथ में आशीर्वाद, जिनके नाम में मंगल ही मंगल है। प्रथम पूज्य श्री गणेश महाराज, भोपाल वालों आज एक ऐसी आगाज गणपति बप्पा मोरिया की हो जानी चाहिए जो स्वयं गणपति महाराज हम सभी के बीच उपस्थित हुए।
2: तो आइए सभी मिलके बोलिए गणपति बप्पा
3: मोरिया,
2: मंगल मूर्ति
3: मोरिया।
2: तो ये जोश में ना थोड़ी सी कमी है, मैं चाहता हूँ एक बार फिर से मिलके हम लोग साथ में जयकारा लगाएंगे, गणपति बप्पा
3: मोरिया,
2: मंगल मूर्ति
3: मोरिया।
2: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सो वासुकी फ्यूजन लाइव आप सभी के सामने पेश है और आप लोग तालियों के साथ साथ दे सकते हैं। क्या बात है,

0: गजानन महाराज की। गणपति बप्पा
1: मोरिया,
0: मंगल मूर्ति
1: मोरिया।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हौसला अफजाई के लिए। और तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कलाकार तालियों का ही भूखा है, और आपसे ही कलाकार है, आपकी एनर्जी फ्लो होगी तभी हम लोग आपसे कनेक्ट भी कर पाएंगे। सो आगे चलते हैं।
3: तो आइए अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसमें थोड़ी शरारत भी है, थोड़ी मिठास भी और एक खूबसूरत सा अंदाज भी। तो तालियों के साथ आप सभी तैयार हो जाइए, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे
4: राधे राधे, राधे, राधे।

0: अच्छा मैं चाहता हूँ आप लोग गाएंगे एक बार प्लीज, साथ में गाएंगे आप सभी लोग।
1: जो है मधुनैनो,
0: क्या बात है,
1: जिसकी ब्रिज की हर बाला वो,
0: क्या बात है, कितनी सुरीली ऑडियंस है, क्या बात है, धन्य हो गए हम लोग यहाँ पे आके। एक बार साथ में वो

ये थी रेडियो रिपोर्ट रासलीला समारोह के चौथे दिन की। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आज की इस सभा में आपके साथ हूँ मैं, सुनीता सिंह। फिलहाल आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ कुछ देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कुछ देशभक्ति रचनाएं। उम्मीद है आज के ये गीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

पिछली कड़ी में आपने जाना कि किस तरह स्वामी जी को शिकागो सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति मिली। वे कुछ दिन ही श्री हेल के घर ठहरे और फिर श्री लियोन के घर रहने चले गए, जहां धर्म सभा में भाग लेने आए अनेक प्रतिभागी ठहरे हुए थे। श्री लियोन के घर पर वे उनसे काफी घनिष्ठ हो गए थे, विशेषता लियोन परिवार की पोत्री कार्लिनिया कोंगर के साथ, जो उस वक्त छोटी सी बालिका थी। उन्होंने अपने स्मरणों में उन दिनों की ढेर सारी बातें लिखी है। कॉर्नेलिया के ही विवरण से हमें मालूम होता है

0: संत आया ना, उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा। तो भी माँ को लगा कि वे खुले दिल से नहीं बोल रहे हैं, अतः उन्होंने पूछा, आप क्या सोच रहे हैं स्वामी जी?
1: पहली बात जो मेरी समझ में नहीं आती वो ये है कि कार्य सूची में ऐसा क्यों कहा गया है कि शनिवार की संध्या को भी ठीक यही कार्यक्रम दोहराया जाएगा। देखिए, भारत में प्रातःकाल एक तरह का संगीत होता है, दोपहर का संगीत बिल्कुल अलग प्रकार का होता है, और संध्या के सुर भी पूर्णतः भिन्न किस्म के होते हैं। अतः वो रात हो जाने पर आपके कानों में बेसुरा लगेगा। दूसरी चीज जो मुझे विचित्र लगती है वो है इस संगीत में मूर्छना का भाव तथा सुरों के बीच बड़ा अंतराल था। आप मुझे जो स्वादिष्ट स्विस पनीर खाने को देती हैं, उसी के समान ये भी मुझे छिद्रों से भरा हुआ लगा।
2: है ना मजेदार उपमा? स्वामी जी संगीत के अच्छे ज्ञाता तथा स्पष्टवादी थे, इसलिए उनके आश्रयदात्री को भी उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया था। कॉर्नेलिया आगे हमें और कई जानकारियां देती हैं, जैसे
0: जब उन्होंने व्याख्यान देने प्रारंभ किए तो लोग उन्हें उनके भारतीय कार्य के लिए पैसे देने लगे, परंतु उनके पास कोई बटुआ न था, अतः उन्हें एक रुमाल में बांधकर एक छोटे गर्वीले शिशु के समान ले आते थे। घर में लाकर वे उसे संभाल कर रख देने के लिए नानी की गोद में डाल देते थे। नानी ने उसका विभिन्न सिक्कों के साथ परिचय कराया और ये भी सिखा दिया कि किस प्रकार उन्हें गिन गिन कर अलग ढेर के रूप में सजाया जाता है। उनके अमेरिकी श्रोतागण इतने दूर देश के लोगों की आनंद पूर्वक सहायता कर रहे थे, जिन्हें उन्होंने कभी देखा तक नहीं, और उनकी इस उदारता के बारे में सोचकर स्वामी जी भाव विभोर हो जाते।
2: अंततः दीर्घ प्रतीक्षा का अंत हुआ, धर्म सभा प्रारंभ होने का दिन आ गया। यह महासभा केवल धर्म महासभा ही ना था, कई विषयों का सम्मेलन था यह। आइए इस सम्मेलन के बारे में कुछ और तथ्यों को जानें, इसके आयोजकों तथा उद्देश्यों के बारे में भी जानें।
3: 400 वर्ष पूर्व कोलंबस ने स्पेन से यात्रा कर अमेरिका में पदार्पण किया था। इसी घटना की स्मृति में सन 1893 में शिकागो में जो वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन हुआ, उसका प्रमुख उद्देश्य था मनुष्य ने तब तक भौतिक जगत में जितने प्रकार से उन्नति की थी उन सब का एक साथ प्रदर्शन करना। उसमें पाश्चात्य संस्कृति के नमूनों को तो स्थान मिला ही था, साथ में अविकसित देशों की सांस्कृतिक झांकी भी वहां प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित की गई थी। तथापि ऐसा लगा कि मनोजगत में मानव ने जो उन्नति की है उसे भी प्रदर्शनी में स्थान मिलना चाहिए। सन 1889 में चार्ल्स कैरल बोनी के मन में आया कि विश्व के सभी देशों के प्रतिनिधियों को बुलाकर कुछ ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जाएं जिनमें मानवीय सभ्यता के साथ दृढ़ता पूर्वक जुड़े हुए विषयों पर चर्चा हो सके।
2: श्री बोनी एक प्रतिभावान तथा व्यवहारिक व्यक्ति थे, उनकी परिकल्पना का स्वागत हुआ। 30 अक्टूबर 1890 को वर्ल्ड कांग्रेस ऑक्सिलरी ऑफ कोलंबियन एक्सपोजिशन नामक एक कमेटी का गठन हुआ और बोनी उसके अध्यक्ष नियुक्त हुए। उसके अंतर्गत छोटी कमेटियों की संख्या 20 थी। 15 मई से 28 अक्टूबर 1893 के दौरान उन 200 प्रसंगों का अधिवेशन हुआ। इनमें सामाजिक प्रगति, समाचार पत्र, चिकित्सा तथा सर्जरी, कानून एवं समाज सुधार, अर्थशास्त्र और धर्म आदि विषय थे। इनमें धर्म महासभा ही सबसे महत्वपूर्ण थी और इसी ने जनता का ध्यान सर्वाधिक आकृष्ट किया था।
3: धर्म महासभा विश्व में पहली बार नहीं हो रही थी। बौद्ध कालीन भारत में अनेक धर्म सम्मेलन हुए थे, ईसाई देशों में भी सम्मेलन हुए थे, इस्लाम धर्म के इतिहास में भी ऐसे सम्मेलनों का जिक्र आता है। परंतु विश्व के धर्मों का एक

0: ही मंच पर एकत्रित होकर सम्मेलन करने का ये पहला अवसर था। ऐसी कोई परिकल्पना ही अकल्पनीय थी। प्रारंभ में तो वह असंभव और मनुष्य की क्षमता के परे प्रतीत हुआ, परंतु क्योंकि वह कालखंड जड़वाद के प्राबल्य का दौर था, परंतु स्वामी जी को यह घटना दैव निर्दिष्ट तथा अवश्यंभावी ही लगी। अमेरिका के लिए विदा होने से पूर्व उन्होंने स्वामी जी तुरियानंद से कहा था,
1: हरि भाई, धर्म महासभा मेरे लिए ही हो रही है, मेरा मन ऐसा ही कह रहा है, शीघ्र ही तुम्हें इसका प्रमाण देखने को मिलेगा।
2: स्वामी जी ने बाद में एक पत्र में लिखा था,
1: ईसाई धर्म अन्य धर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, यही प्रमाणित करने के लिए धर्म महासभा का आयोजन हुआ था। मुझे लगता है कि अन्य धर्मों का तमाशा बनाने के लिए ही धर्म महासभा बुलाई गई थी।
0: कुछ लोग सोच सकते हैं कि जिस महासभा ने स्वामी जी को जगत में परिचित करा दिया, उसके विरुद्ध ऐसी टीका करना उचित नहीं था, परंतु जिस प्रकार सभा का आयोजन तथा संचालन हुआ था, उसकी ओर गौर करने से समझ में आ जाएगा कि आयोजकों के मन में अन्य धर्मों के प्रति एक अश्रद्धा का भाव छिपा हुआ था, और वे विश्वास करते थे कि महासभा में ईसाई धर्म की ही विजय होगी, परंतु वहां उदार मनोभाव रखने वालों की भी कमी नहीं थी। सभापति बोनी महोदय ही उनमें प्रमुख थे, परंतु आयोजन का समस्त अधिकार सर जॉन हेनरी बैरोज के हाथों में था, और वे अपनी संकीर्ण मनोवृत्ति के ऊपर उठ ना सके थे। उन्होंने कहा था,
3: विश्वास है कि ईसाई धर्म अन्य धर्मों का स्थान ले लेगा, क्योंकि बाकी धर्मों में जो सत्य है वे सभी तो ईसाई धर्म में है ही, इसमें और भी अधिक सत्य है, क्योंकि यही धर्म एक अद्वितीय मुक्तिदाता भगवान के बारे में बोलता है। ये सत्य है कि प्रकाश के साथ अंधकार की मित्रता संभव नहीं, परंतु अल्प आलोक के साथ उसका सहचर्य अवश्य हो सकता है। ऐसा कोई भी देश नहीं जहां भगवान ने अपने संदेश का प्रचार किया हो और जिन्होंने क्रास के पूर्ण आलोक की उपलब्धि कर ली है, उन्हें चाहिए कि वे अल्प आलोक में भटकने वाले के प्रति भ्रातृभाव का पोषण करें।
2: बाद में महासभा का जो विवरण प्रस्तुत हुआ उसमें ईसाइयों के द्वारा असहमति ही दिख पड़ती थी, उदार मत कम ही दिखता था। सामान्य जन उदार मतावलंबी दिखे, पर धर्माचार्यों का रवैया कट्टर था। वे विश्व भर में ईसाई धर्म प्रचार का सपना देख रहे थे, इसके बावजूद साधारण अमरीकी जनता ने उदारता दिखाते हुए इस महासभा के लिए धन आदि से सहायता की थी और आग्रह पूर्वक इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
0: इस धर्म महासभा में समस्त विश्व से लोग एकत्रित हुए थे, अतः वे विश्व धर्म महासभा कहलाया। इस महासभा का एक और विशेष परिणाम उल्लेखनीय है कि इसके द्वारा पश्चिम की दृष्टि में प्राच्य धर्मों की मर्यादा काफी बढ़ गई थी। महासभा की विज्ञान शाखा के अध्यक्ष श्री मार्विन मैरी स्नेल ने लिखा है,
4: इसकी एक सबसे बड़ी देन तो ये है कि इसने ईसाई समुदाय को और विशेषकर अमेरिकी जनता को ये अमूल्य शिक्षा दी है कि ईसाई धर्म की तुलना में उससे भी अधिक सम्मानीय और भी अनेक धर्म है, जो दार्शनिक चिंतन की गहनता, आध्यात्मिक स्वाधीन विचारधारा के तेज और मानवीय सहानुभूति के विस्तार में ईसाई धर्म को भी पीछे छोड़ जाते हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध, यहूदी, कन्फ्यूशियस, शिंतो, इस्लाम और फारसी, ये 8 गैर ईसाई धर्म महासभा की चर्चाओं में उपस्थित थे।
2: 11 सितंबर 1893 को सोमवार के दिन प्रातःकाल शिकागो इंस्टीट्यूट में महासभा का अधिवेशन शुरू हुआ। विश्व मेला क्षेत्र में आर्ट पैलेस नाम का जो एक अस्थाई विराट भवन बना था वह उससे भिन्न था। ललित कलाओं की स्थायी प्रदर्शनी के रूप में परिकल्पित यह आर्ट इंस्टीट्यूट मिशिगन एवेन्यू पर स्थित था और कला के नमूनों से तब तक सज्जित नहीं हुआ था। इसी के प्रकांड कक्षों में अनेक समितियों के अधिवेशन हुए थे। इसी भवन में हॉल ऑफ कोलंबस में धर्म महासभा का अधिवेशन हुआ था।
0: ठीक 10 बजे वहां उपस्थित 10 धर्म मतों के नाम पर 10 बार घंटा ध्वनि हुई। सभापति बोनी के अनुसार ये प्रमुख धर्म थे यहूदी, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, ताओ, कन्फ्यूशियस, शिंटो, पारसी, कैथोलिक, ग्रीक चर्च और प्रोटेस्टेंट धर्म। उस समय हॉल में 4,000 से भी ज्यादा श्रोता उपस्थित थे। द्वार पर भी बहुत से लोग भीड़ किए खड़े थे, पर लोग इतने शांत थे कि कहते हैं उसी समय एक छोटी सी चिड़िया खुली खिड़की से घुसकर मंच के ऊपर से होकर उड़ गई थी और उसके पंखों की आवाज तक सुनाई दे रही थी।
2: हॉल में बने हुए मंच की लंबाई लगभग 100 फीट तथा चौड़ाई 15 फीट थी। मंच के पीछे हिब्रू तथा जापानी भाषा की 2 उक्तियां लटक रही थी। मंच पर एक दूसरे से लगभग 40 फीट की दूरी पर 2 ग्रीक दार्शनिकों की मूर्तियां स्थापित थी। दोनों दार्शनिकों के बीच एक अद्भुत लोह निर्मित सिंहासन था जिस पर अमेरिका के कैथोलिक संप्रदाय के प्रधान धर्माधिकारी कार्डिनल गिबिन्स बैठे थे। सिंहासन के दोनों ओर प्रतिनिधियों तथा कार्यकर्ताओं के लिए 3 कतारों में लकड़ी की 30-30 साधारण कुर्सियां लगाई गई थी। वहां एक सूचना भी लटकाई गई थी कि नीचे संवाददाताओं के लिए निर्दिष्ट स्थान में बिना अनुमति के प्रवेश निषिद्ध है। यह जरूरी इसलिए था क्योंकि विवेकानंद आदि के वस्त्र स्पर्श करने की इच्छा से मंच के पास श्रोताओं की भीड़ लग जाती थी।
0: ठीक 10 बजे घंटा ध्वनि के साथ प्रतिनिधिगण हॉल में प्रविष्ट होकर मंच की ओर अग्रसर हुए। आगे आगे सभापति बोनी और कार्डिनल गिबिन्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। उनके पीछे थी मेले की महिला कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षा श्रीमती पॉटर पॉमर तथा उपाध्यक्षा श्रीमती चार्ल्स सी हेनेरोटिन। उनके पीछे प्रतिनिधिगण पंक्तिबद्ध होकर हॉल के मध्यवर्ती पथ पर तुमुल हर्ष ध्वनि के बीच अग्रसर होकर मंच पर आसीन हुए। लोह सिंहासन पर आसीन गिबिन्स के दाहिनी ओर बैठे सफेद वस्त्रधारी 5 चीनी धर्मयाजक और बाईं ओर बैठे काले वस्त्रों से सज्जित ग्रीक चर्च के उच्चाधिकारी गण। बाकी सब विभिन्न रंगों के कपड़ों में थे। विवेकानंद अपनी गैरिक अलखला और पगड़ी पहने कुर्सी नंबर 21 पर थे।
2: अचानक ऑर्गन बज उठा और सब मिलकर प्रार्थना करने लगे। उसके बाद महासभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई। 17 दिनों तक सुबह, दोपहर और शाम को 3 सत्र होते थे। श्रोताओं की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही थी। 4th दिन भीड़ इतनी बढ़ी कि पास का हॉल ऑफ वॉशिंगटन भी खोल दिया गया और वहां मुख्य हॉल के समान ही समस्त विषयों को दोहराया जाने लगा।
0: 5वें दिन विज्ञान शाखा का कार्य आरंभ हुआ और श्रोतागण भी सामान्य और विज्ञान दोनों भागों में बट गए। विज्ञान शाखा में भी स्वामी जी को अक्सर व्याख्यान देने जाना पड़ता था। जिस दिन वे विज्ञान सभा में बोलते उस दिन वहां भीड़ ज्यादा होती थी और कोलंबस हॉल की भीड़ हल्की हो जाया करती थी।
2: प्रथम दिन प्रतिनिधियों का सादर स्वागत हुआ। उस दिन कुल 7 ही व्याख्यान हो पाए। प्रथम वक्ता जानतो के आर्च बिशप थे। उन्होंने कहा, समस्त मानव जाति के श्रष्टा एक हैं, अतः एक भगवान ही सबके पिता हैं। उसी दिन भारत के ब्रह्म समाज के प्रतिनिधि श्री प्रताप चंद्र मजूमदार भी बोले। वे 10 वर्ष पूर्व ही अमेरिका आकर के ख्याति अर्जित कर चुके थे। वे प्राच्य देशे ईशा नामक ग्रंथ के लेखक के रूप में वहां परिचित थे। उन्हें भाषण के उपरांत प्रशंसा मिली। फिर चीन के प्रतिनिधि पुंग क्वांग यूं का व्याख्यान हुआ।
0: सभा की कार्यवाही चल रही थी। इधर स्वामी जी मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि इस विराट विद्वत समुदाय के सम्मुख भारत का संदेश रखने की योग्य शक्ति उन्हें मिले। उन्हें कई बार बुलाया गया परंतु हर बार उन्होंने कहा, नहीं अभी नहीं। अध्यक्ष के मन में संदेह हुआ कि आखिर वे भाषण देना चाहते भी हैं या नहीं। स्वामी जी ने अपने समय के मनोभाव का वर्णन करते हुए 2 अक्टूबर को प्राध्यापक राइट को पत्र में लिखा था।
1: विश्व के बड़े बड़े विचारकों तथा वक्ताओं की उस सभा के सम्मुख खड़े होने और बोलने में पहले तो मुझे बड़ा भय लग रहा था। महासभा में मैं बिल्कुल आखिरी समय में पहुंचा और वो भी बिना किसी तैयारी के। ईश्वर ने मुझे शक्ति दी।
2: आला सिंगा को लिखे उनके पत्र में और भी विशद विवरण मिलता है। उन्होंने लिखा था,
1: महासभा के उद्घाटन वाले दिन सुबह हम लोग आर्ट पैलेस नामक भवन में एकत्र हुए। सभी राष्ट्रों के लोग वहां आए हुए थे। भारत वर्ष से ब्रह्म समाज के प्रतिनिधि प्रताप चंद्र मजूमदार महाशय थे। बंबई से नगरकर आए थे। जैन धर्म के प्रतिनिधि वीरचंद्र गांधी थे और थियोसफी के प्रतिनिधि श्रीमती एनी बेसेंट तथा चक्रवर्ती थे। इनमें मजूमदार मेरे पुराने मित्र और चक्रवर्ती मेरे नाम से परिचित थे। बड़े शानदार जुलूस के बाद हम लोग मंच पर बिठाए गए। कल्पना करो, नीचे एक बड़ा हॉल और ऊपर एक बहुत बड़ी गैलरी, जिनमें इस देश के चुने हुए 6-7 हजार सुसंस्कृत नर नारी खचाखच भरे हैं तथा मंच पर संसार के सभी राष्ट्रों के बड़े बड़े विद्वान एकत्र हैं। और मुझे, जिसने अब तक कभी सार्वजनिक सभाओं में भाषण नहीं दिया, इस विराट जन समुदाय के समक्ष भाषण देना होगा। बड़े समारोह के साथ संगीत और भाषणों से सभा का उद्घाटन हुआ। तदुपरांत एक एक कर सभा में आए प्रतिनिधियों का परिचय दिया गया और वे सामने आकर अपने व्याख्यान देने लगे। निसंदेह मेरा हृदय धड़क रहा था और जीभ प्रायः सूख गई थी। मैं इतना घबराया हुआ था कि सवेरे बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। मजूमदार की वाक कला सुंदर रही, चक्रवर्ती की तो उससे भी सुंदर रही। खूब तालियां बजी। ये लोग अपने भाषण तैयार करके लाए थे। मैं अबोध था और बिना किसी तैयारी के आ पहुंचा था।
2: अपरांत में 4 और प्रतिनिधियों के लिखित भाषण हो जाने के बाद उन्हें स्वामी जी को बुलाया गया। उन्होंने लिखा है,
1: देवी सरस्वती को प्रणाम करके मैं आगे बढ़ा और डॉक्टर बैरोज ने मेरा परिचय दिया। मेरे गैरिक वस्त्रों के कारण श्रोताओं का ध्यान किंचित आकृष्ट हुआ था। अमेरिका वासियों को धन्यवाद और भी 2 बातें कहकर मैंने एक छोटा सा व्याख्यान दिया। जब मैंने अमेरिका वासी भाइयों और बहनों कहते हुए सभा को संबोधित किया तो इसके साथ ही 2 मिनट तक ऐसी घोर करतल ध्वनि हुई कि कानों में अंगुली देते ही बनी। तब मैंने बोलना आरंभ किया और जब मैं अपना वक्तव्य समाप्त करके बैठा तो भावावेग से मानो मैं अवश हो गया था। अगले दिन सभी अखबारों में छपा कि मेरा भाषण ही उस दिन सर्वाधिक मर्मस्पर्शी बन पड़ा था। अतः पूरा अमेरिका मुझे जान गया। महान टीकाकार श्रीधर ने सत्य ही लिखा है, मूकम करोति वाचालम, अर्थात जिन प्रभु की कृपा गूंगे को भी धारा प्रवाह वक्ता बना देती है उनकी जय हो। उसी दिन से मैं विख्यात हो गया और जिस दिन मैंने हिंदू धर्म पर अपनी वक्तता पढ़ी उस दिन तो हॉल में इतनी भीड़ हुई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी।
2: श्रोताओं, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 11 सितंबर 1893 को शिकागो शहर के मिशन एवेन्यू पर स्थित हॉल ऑफ कोलंबस में दिए गए उस महान दुर्लभ भाषण के कुछ मुख्य अंश आपको सुनवाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के ही स्वर में। ध्यान रहे, ये दुर्लभ रिकॉर्डिंग लगभग 120 वर्ष पूर्व की है।
5: We now introduce you to Swami Vivekananda from India and request him to address us. Swami Vivekananda?
6: Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I'm proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I'm proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come. And I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal.
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उस महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी के स्वर में उस दुर्लभ रिकॉर्डिंग के मुख्य अंश जो उन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो शहर के मिशन एवेन्यू पर स्थित हॉल ऑफ कोलंबस में विश्व धर्म महासभा के प्रथम वक्तव्य के रूप में दिया था। स्वामी जी के व्याख्यान के आरंभ में हुए हर्ष ध्वनि के विषय में डॉक्टर बैरोस ने लिखा है,
3: श्रीयुत विवेकानंद ने जब श्रोताओं को बहनों और भाइयों को कहकर संबोधित किया था तो उस समय एक तुमुल करतल ध्वनि उठकर कई मिनट तक जारी रही।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: वायदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप ये धारावाहिक सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

0: छेड़ देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, सभा समापन का समय हो चला है, लेकिन हम आपसे विदा लें उसके पहले कल सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको परिचित करवा दें। सुबह 7 बजे आप सुनते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ, उसके बाद अक्षय निधि और फिर आनंद लेते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। सुबह 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे वतन का राग कार्यक्रम, इसमें कल चर्चा होगी सियाराम शरण गुप्त की। आमने सामने ये कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे प्रसारित होगा। 9 बजे वागर्थ कार्यक्रम में आप सुनेंगे अजय विश्वकर्मा और साथियों की प्रस्तुति। आप जानते ही हैं कि कल श्री कृष्ण जन्म का उत्सव है, जन्माष्टमी। हमारे विशेष कार्यक्रम में सुबह 9:30 बजे जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर बातचीत सुनिएगा आचार्य राजेश के साथ। नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा सुबह 10 बजे। 10:30 बजे आजाद हिंद कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। कला कल्लोलिनी ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर पर। और सुबह 11:30 बजे सुनिए धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद की 36वीं कड़ी। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय कल सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। फिलहाल समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल सुबह ठीक 7 बजे आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शुभरात्रि, जय हिंद। सभा का समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम से।